सुप्रभात। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त ईस्वी सन 2026। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाश वाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनिएगा हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गाँव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक

0: युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति की मांग की थी जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में ही समाचार। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में सुनते हैं प्रतिमा वर्मा की पूर्व प्रसारित आलेख की विषय है फसल अवशेषों का प्रबंधन।
3: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें फसल अवशेषों के प्रबंधन की। जी हां ग्रामीण भाइयों, हमारे देश में पहले खेती केवल जीविकोपार्जन के लिए की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे खेती ने व्यवसाय का रूप ले लिया है। किसान अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे मृदा के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। फसल अवशेष का जलना भी पर्यावरण और मृदा प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण है। पिछले कुछ वर्षों में एक समस्या मुख्य रूप से देखी जा रही है कि जहां हार्वेस्टर के द्वारा फसलों की कटाई की जाती है, उन क्षेत्रों में खेतों में फसल के तने के अधिकतर भाग खेत में खड़े रह जाते हैं और वहां के किसान खेत में फसल के अवशेषों को आग लगाकर जला देते हैं। किसान भाइयों, फसल अवशेष पौधे का वह भाग होता है जो फसल की कटाई और गहाई के बाद खेत में छोड़ दिया जाता है। भूसा, तना, डंठल, पत्ते और छिलके वगैरह फसल अवशेष कहलाते हैं। सरसों, गेहूं, धान, ग्वार, मूंग, बाजरा, गन्ना और अन्य दूसरी फसलों से काफी मात्रा में फसल अवशेष मिलते हैं। सबसे ज्यादा फसल अवशेष अनाज वाली फसलों में और सबसे कम अवशेष दलहनी फसलों से मिलते हैं। फसल अवशेषों को खेतों में जलाए जाने से मानव स्वास्थ्य पर हो रहे दुष्प्रभाव की समस्याएं बनी रहती है। वास्तव में ये एक गंभीर समस्या है। इसके साथ ही फसल अवशेष जलाने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव, मृदा में पर्यावरण का प्रभाव, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की कमी, साथ ही साथ जानवरों के लिए चारे की कमी।

0: जी हाँ ग्रामीण भाइयों, यदि किसान उपलब्ध फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनको वापस भूमि में मिला देते हैं तो अनेकों लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फसल अवशेषों के मृदा में प्रयोग से कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता में वृद्धि की जा सकती है। कार्बनिक पदार्थ ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व फसलों को उपलब्ध हो पाते हैं। ये खेत में सड़कर मृदा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करते हैं। जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। फसल अवशेष से बने खाद में पोषक तत्वों का भंडार होता है। ग्रामीण भाइयों, अवशेषों को खेतों में प्रयोग करने से मृदा के भौतिक गुणों में सुधार होता है। मृदा में फसल अवशेषों को मिलाने से मृदा की परत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने से मृदा सतह की कठोरता कम होती है और जल धारण क्षमता और मृदा में वायु संचरण में वृद्धि होती है। अगर हम मृदा तापमान की बातें करें तो फसल अवशेष भूमि के तापमान को बनाए रखते हैं। फसल अवशेष को मृदा मिलाने से फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। भूमि में खरपतवारों के अंकुरण और बढ़वार में कमी आती है। किसान भाइयों, फसल अवशेषों को उचित तरीके से प्रबंधन करने पर फसलों को मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। फसल कटाई के उपरांत खेतों में पड़े पैरा या भूसा वगैरह को गहरी जुताई कर जमीन में दबा देने और उसमें पानी भर देने से फसल अवशेष कंपोस्ट में बदल जाते हैं। ग्रामीण भाइयों, फसल की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेष घास फूस पत्तियां और ठूंठ वगैरह को सड़ाने के लिए किसान भाई 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़ककर कल्टीवेटर या रोटावेटर से काटकर मिट्टी में मिला सकते हैं। इस प्रकार अवशेष खेत में विघटित होना प्रारंभ कर देंगे और लगभग एक माह में स्वयं सड़कर आगे बोई जाने वाली फसल को पोषक तत्व प्रदान कर देंगे, क्योंकि कटाई के पश्चात दी गई नाइट्रोजन अवशेषों में सड़न की क्रिया को तेज कर देती है। फसल अवशेषों को जलाने से इनसे मिलने वाले लाभों से अक्सर किसान भाई वंचित रह जाते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम होती है, क्योंकि भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने वाले जीवाणु आग से जल जाते हैं। फसल अवशेषों को जलाने से नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है, इसलिए इनको जलाना नहीं चाहिए। ग्रामीण भाइयों, फसल कटाई के बाद अवशेषों को खेतों में ही इकट्ठा कर वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे में डालकर कंपोस्ट बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। फसल अवशेषों का प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम अपनी जमीन में जीवांश पदार्थ की मात्रा में वृद्धि कर जमीन को खेतियों के सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में ये हुई बातें फसल अवशेषों के प्रबंधन की। इसके साथ ही कार्यक्रम खेती की बातें से अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे थे प्रतिमा वर्मा की पूर्व प्रसारित आलेख की विषय था फसल अवशेषों का प्रबंधन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, सुनते हैं श्री राम चरित मानस गान।

भरत को श्री राम की चरण पादुका प्राप्त हो चुकी है। सबके चित्रकूट से विदा होने की वेला आ पहुंची है। स्वामी के चरणों की वंदना करके भरत और शत्रुघ्न ने लक्ष्मण को गले लगाया, सीता जी के चरणों की धूलि ली। लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजा जनक के सम्मुख सिर नवाकर उनके वहां आने के लिए कृतज्ञता तथा वन प्रवास के कष्टों के लिए क्षमा याचना की। फिर दोनों भाइयों ने सासु रानी सुनैना के पास जाकर उनका आशीष प्राप्त किया। मुनि विश्वामित्र सहित सभी पूजनीय ऋषि मुनियों, कुटुंबियों, अयोध्या वासियों, मंत्रियों आदि को यथा योग्य विनय प्रणाम करके विदा करने के बाद श्री राम माता कैकेयी के निकट आए। निश्चल हृदय से मिल भेंट कर माता कैकेयी का संकोच मिटाया और सुंदर सजी पालकी में बिठाकर उन्हें विदा दी। उधर सीता जी ने मायके से आए कुटुंबियों, माता पिता और सासुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी माताओं को सुंदर सजी पालकियों में बिठाकर विदा किया गया। जब सब लोग विदा होकर चले तो लगा बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु तथा सभी कुटुंबी मन मारे थके हारे चले जा रहे हैं। पर्णकुटी लौटकर श्री राम और लक्ष्मण का मन अवसाद से भर गया। जड़ चेतन, चर अचर सभी

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुनते हैं हमारा आज का चिंतन। शीर्षक है आजादी का महत्व। संकलन और वाचन स्वर है अनुपमा तिवारी का।

जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ का नारा है, जहाँ मजहब भाईचारा है, वो भारत वतन हमारा है। आजादी का अमृत महोत्सव एक स्वतंत्रता का उत्सव है जो हर 25 साल में मनाया जाता है, ताकि हमारी आज की पीढ़ी के बच्चे यह जान सकें कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को कितने संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस साल आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और इसे धूमधाम से मनाने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। किसी भी देश का भविष्य तभी उज्ज्वल होता है जब वह अपने पिछले अनुभवों और विरासत के गौरव के साथ पल पल जुड़ा रहता है। हम सभी जानते हैं कि भारत के पास एक समृद्ध ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत का एक अथाह भंडार है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना को भारत के घर घर पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त प्रेरणा का अमृत, स्वतंत्रता का अमृत यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। स्वतंत्रता का अमृत एक ऐसा पर्व है जिसमें भारत आत्मनिर्भर होने का संकल्प लेता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी जी की विदेश से वापसी, देश को फिर से सत्याग्रह की शक्ति की याद दिलाना, लोकमान्य तिलक जी का पूर्ण स्वराज का आह्वान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का दिल्ली मार्च और दिल्ली चलो का नारा भला कौन भूल सकता है। इतिहास के इस गौरव को याद रखने के लिए हर राज्य ने इस क्षेत्र में एक दिशा में प्रयास किए हैं। देश ने 2 साल पहले ही दांडी यात्रा स्थल के पुनर्गठन का काम पूरा किया है। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए देश के कोने कोने से पुरुष, महिलाओं और युवाओं ने असंख्य बलिदान दिए। स्वतंत्रता आंदोलन की इस ज्योत को पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हर दिशा में, हर क्षेत्र में निरंतर जगाने का कार्य हमारे संत, महंतों और आचार्यों ने किया।

0: किया। भक्ति आंदोलन ने एक तरह से राष्ट्रव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन की रीढ़ तैयार की थी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रतिमा वर्मा की पूर्व प्रसारित लेख आज़ादी का महत्व। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना।

0: श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे भगवान शंकर और श्री हनुमान जी की स्तुति। कलाकार थे हरिओम शरण और तृप्ति शाकिया। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर रविंद्र अम्बेष्टा से ली गई पूर्व प्रसाद भेंट वार्ता। विषय है मलेरिया कारण और उसका निदान। बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: मच्छर जब आपको काटता है तो आप मलेरिया का शिकार हो जाते हैं, तो मलेरिया होने का कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसका रोकथाम हम किस प्रकार करें, इस विषय पर आज जो बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं रविंद्र कुमार जी। आप मल्टीपर्पज वर्कर हैं। हाँ। रविंद्र जी स्वागत है आपका।
2: हाँ, स्वागत सर, नमस्कार।
1: सबसे पहले तो ये जाने कि मलेरिया होने का प्रमुख कारण क्या है।
2: जैसे कि आप जान रहे हैं कि मलेरिया मच्छर काटने से होता है, तो जिस मच्छर काटने से होता है उसका नाम है मादा एनोफिलेज मच्छर। और वो मादा एनोफिलेज मच्छर, संक्रमित मादा एनोफिलेज मच्छर, संक्रमित मादा एनोफिलेज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और मलेरिया के मच्छर उत्पन्न कहाँ होते हैं, हमारे घर के आसपास गड्ढे हो, झाड़ी हो या फिर गंदगी से मच्छर उत्पन्न होते हैं। और वहाँ से उत्पन्न हो करके जो मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति हैं उसको काटने के बाद में स्वस्थ व्यक्ति को काटने से मलेरिया एक दूसरे में फैलने लगता है, जिस कारण से उससे पीड़ित व्यक्ति की अगर समय से अगर इलाज न किया जाए तो मौत तक भी हो जाती है मलेरिया से
1: जी।
2: तो इसमें हम देखते हैं कि मच्छर के काटने से एक दो दिन अगर रुक रुक के अगर बुखार आता है तो जाहिर सी बात है कि हमें मलेरिया का एक प्रकोप के कारण हो रहा है। तो इसका प्रारंभिक लक्षण में हम देखते हैं कि तेज सरदर्द के साथ बुखार आना, उल्टी होना, जोड़ों पे दर्द होना, जी मचलना, ये सब इसके प्रारंभिक लक्षण हैं।
1: किस प्रकार इसका इलाज किया जाता है?
2: हम ये बता देना चाहते हैं कि इसका डायग्नोस दो तरह से होता है। एक तो होता है आरडीके किट के माध्यम से, जो कि हम उसका ब्लड ले करके उस आरडीके किट में के माध्यम से उसको हम जांच करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि मलेरिया से ग्रसित है या नहीं है। दूसरा है कि हम इसका ब्लड स्मेयर एक स्लाइड के रूप में लेते हैं और माइक्रोस्कोपिक जांच के माध्यम से भी उसको हम पता कर सकते हैं। तो अगर पता चल जाता है कि वो मलेरिया से ग्रसित है, हम लोग उसको इलाज में हम लोग देते हैं। अगर मलेरिया, हम बता देना चाहते हैं सर कि मलेरिया दो तरह का जनरली होता है। मलेरिया का प्रकार तो चार हैं, लेकिन जनरली हमारे पास पाए जाते हैं दो तरह का, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। तो जब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में हम लोग

0: तीन दिन क्लोरोक्विन का डोज देते हैं और 14 दिन तक हम लोग प्रामाक्विन का डोज देते हैं, जिससे पूरी डोज से हम लोग मलेरिया को समाप्त कर सकते हैं।
1: और ये सारी दवाइयाँ सरकार की ओर से दी जाती हैं?
0: जी हाँ सर, जी हाँ सर, ये सरकार के द्वारा चलाई गई योजना में एक मलेरिया का एलिमिनेशन के लिए प्रोग्राम सरकार चला रही है, उसमें से मुफ्त दवा मिलती है स्वास्थ्य केंद्र में, आप वहाँ पर आएँ और जाँच के साथ साथ दवा भी मुफ्त मिलती है।
1: और हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ये सुविधा उपलब्ध है?
0: बिल्कुल सर, हम आपको बता देना चाहते हैं कि सरकार ने हमारे शहर से लेकर के गांव तक को मुफ्त में दवा के साथ साथ जांच के साथ साथ और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में एक मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण किया जाता है सर, जिसमें से गरीबों को कम से कम ये सहायता के रूप में मिले और वो मच्छर से बच सके। सारे जगह तो हम मच्छर को मार नहीं सकते हैं, लेकिन अपना बचाव कर सकते हैं, मच्छरदानी को लगा कर जरूर कर सकते हैं। सरकार के द्वारा तो गाइडलाइन है कि कम से कम एक परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो कम से कम 2 मच्छरदानी उनके घर में हम लोग देने का प्रावधान करते हैं, ताकि एक बेड में 2 आदमी सोते ही हैं, दोनों कम से कम सुरक्षित और संयमित से रह सकें और इससे बच सकें।
1: तो ये सारे सुविधाएं प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है इसका?
0: प्रक्रिया तो सरकारी प्रक्रिया में ऐसा कुछ नहीं सर, हम लोग देखते हैं कि योग्य कौन है और साधन उसके पास देखते हैं कि क्या उसके साथ साधन है। अगर उसको देख लेते हैं कि साधन के रूप में उसका खरीदने का कुछ बेचारे के पास पैसा नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग उस व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं और उसी व्यक्ति को पहला हम लोग देते हैं मच्छरदानी।
1: जी, और ये दवाइयाँ आपको निःशुल्क मिलती है, जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ आप जा सकते हैं और वहाँ सारी जाँचें भी उपलब्ध हैं और दवाइयाँ आपको वहीं दी जाती हैं।
0: जी जी,
1: कैसे इसका फॉलोअप किया जाता है कि जो अमुक व्यक्ति जो मलेरिया से ग्रसित है वो अब ठीक हो चुका है?
0: हम लोग सर बीच बीच में जब उसका जब ट्रीटमेंट पार्ट शुरू करते हैं तो हम लोग बीच बीच में उसका रिव्यू करते हैं। हम स्वास्थ्य केंद्र में हमारे सबसे ग्रास रूट में काम करते हैं हमारे सहिया दीदी लोग, तो अगर ग्रामीण से वो बिलोंग करते हैं तो सहिया दीदी के माध्यम से पता चलता है कि वो अब बीमारी से उबर रहा है, धीरे धीरे वो ठीक क्यों आ रहा है। तो अगर यदि वो अब पता चल जाता है तो हम लोग उसको एक बार जाके रिव्यू कर लेते हैं, अगर उसको डोज बढ़ाने जरूरत होती है तो हम लोग फिर से उसको दवा को रूप में और बढ़ाते हैं सर। तो ये हमें सहिया दीदी के माध्यम से हमको ग्रामीण से हमको सूचना प्राप्त होते रहती है।
1: जी, मलेरिया उन्मूलन के लिए सरकार बहुत सारे एहतियाती कदम उठाती है, घर घर छिड़काव भी किया जाता है और ख़ासकर जहाँ जल जमाव है वहाँ कोशिश की जाती है कि वहाँ पर दवा का छिड़काव किया जाए। तो कौन कौन सी योजनाएँ सरकार के द्वारा चलाई जा रही है ताकि लोग स्वस्थ रहें और मलेरिया से ग्रसित नहीं हों?
0: हाँ, बीच बीच में जब मलेरिया का प्रकोप को देखते हुए सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न योजनाओं को चलाई जाती है, उसमें से एक है सर, एक तो मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण, दूसरा है DDT छिड़काव, और तीसरा है कि जहाँ पर अगर छोटा गड्ढा है तो हम लोग तो उसको अपने स्तर से भर देते हैं, लेकिन जहाँ पर बड़ा गड्ढा है वहाँ पर कम से कम कोशिश करते हैं कि मोबिल तेल डालकर उसको कंट्रोल किया जाए, और नहीं तो एक खास तरह की मछली आती है जिसका नाम है गंबुजिया मछली। गंबुजिया मछली को उस जल जमाव में हम लोग डाल देते हैं ताकि वो उसका जो मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर का लार्वा होता है उसको खत्म नष्ट कर देते हैं, तो मलेरिया आगे फैलने का, मच्छर फैलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसीलिए सरकार के द्वारा ये 2-3 योजना है, और जहाँ तक रही नालियों में तो नालियों में फॉगिंग के माध्यम से मलेरिया को मच्छर के मारा जाता है सर।
1: जी, लोग अब क्या कहना चाहेंगे कि घरों में जो अनावश्यक बर्तने जो टीन पर छप्परों पर फेंका होता है, टायर पड़ी रहती है और बारिश का पानी उसमें जमा हो जाता है, टूटे फूटे गमले पड़े होते हैं उसमें भी पानी जमा रहता है और फिर ये लार्वा उत्पन्न हो जाता है जो आपको परेशान करता है और आपको मलेरिया से ग्रसित कर देता है, तो किस प्रकार अपना हम बचाव करें?
0: बचाव हम तो यही कहेंगे कि बचाव कम से कम जो भी घर में आपके रखे हुए सामान है, जैसे फूलदानी का गमला हो गया, फ्रिज का पीछे एक लगा होता है गमला जिसमें एक सप्ताह में एटलीस्ट उसमें पानी भर जाता है, तो कोशिश यही रहे कि गमला का पानी को एक सप्ताह में हटा दें, फूलदानी का पानी को एक सप्ताह में हटा दें, टूटे फूटे अगर अनावश्यक बर्तन है, अनावश्यक टायर है, उसको हम कोशिश करें कि घर से दूर ही रखें, उसमें पानी जमा न होने दें ताकि मलेरिया उत्पन्न न हो सके।
1: जी, यदि इन सारी बातों का ख्याल रखते हैं और अपने

0: स्वास्थ्य के प्रति यदि हम सचेत होते हैं, जागरूक होते हैं और अनावश्यक रूप से किसी भी बर्तन में पानी बहुत देर तक जमा हो जाता है, जैसा आपने बताया गमले में या टायर में, ट्यूब में या और भी कोई अनावश्यक रूप से कोई बर्तन पड़ा हुआ है बाहर में, तो उसमें जल जमाव जब हो जाता है तो फिर ये बीमारी का कारण बन जाता है।
1: जी जी जी, हम यही कहना चाहेंगे कि सचेत रहें और मच्छरदानी का हमेशा प्रयोग करें, घर के आसपास गंदगी न फैलने दें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अगर मलेरिया से ग्रसित हैं तो हमारे स्वास्थ्य केंद्र में आएँ, निशुल्क इसका जांच भी है और निशुल्क दवा भी है। आप स्वस्थ रहें, सचेत रहें, स्वस्थ झारखंड, स्वस्थ भारत की ओर हम लोग बढ़ते चले जाएंगे।
0: अपना ख्याल रखिए और जागरूक होइए, और इस तरह की चीज़ों से हम अपनी दूरियां बनाते हैं, अपना ख्याल रखते हैं तो मलेरिया जैसी बीमारी से हम ग्रसित नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए। मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। कल एक पुनः एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रविंद्र अम्बष्टा से ली गई पूर्व प्रसाद भेंटवार्ता। विषय था मलेरिया कारण और उसका निदान। बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनिएगा संस्कृत में समाचार, और समाचारों के बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा ठीक 7 बजे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण।

0: विकसित भारत निर्माणस्य स्वप्नं साक्षात्कर्तुम् अग्रसरति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अवोचत् यत् राष्ट्रपतेः स्वतंत्रता दिवसस्य पूर्वसंध्यायाम् एकः शक्तियुतः प्रेरणादायी च सन्देशः दत्तः, यः एकस्य आत्मविश्वासपूर्णस्य प्रवर्धमानस्य जीवन्तभारतस्य च आकांक्षाः प्रकटीकरोति। सामाजिकान्तर्जालीय स्वीय सन्देशे राधाकृष्णन् इत्यनेन प्रोदीरितं यत् राष्ट्रपतेः सम्बोधने यूनाम् आशाः, नारीशक्तेः योगदानं, देशस्य आर्थिकप्रगतिं च संस्पृश्य एकस्य सशक्तस्य समृद्धस्य च राष्ट्रस्य व्यापकं दर्शनम् उपस्थापितम्। तेन अग्रे प्रतिपादितं यत् एते रवाः राष्ट्रयज्ञे नागरिक आहुत्यै दिव्यम् आह्वानं सन्ति। देशः अद्य 80तमं स्वातन्त्र्यदिवसम् आचरति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी दिल्ल्याः ऐतिहासिके रक्तदुर्गे समारोहस्यास्य नेतृत्वं करोति। समारोहस्य अन्तर्गतं भारतीयवायुसेनायाः द्वे MI-17 इत्येते विमाने आयोजनस्थले पुष्पवृष्टिं करिष्यतः। राष्ट्रियध्वजारोहणम् 21 भुशुण्डिकानां निनादेन सह समन्वितं भविष्यति। पुष्पवृष्टेः अनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। प्रशासनेन दूरदर्शनवाहिनीनां कृते 12-निमेषपरिमितां विज्ञापनावधिसीमां निरसितुं निर्णयः कृतः। सूचनाप्रसारणमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् केबल् टेलिविजन् नेट्वर्क् नियम 1994 इत्यस्मिन् संशोधनस्य राजपत्रे अधिसूचना प्रकाशनस्य दिनांकात् एषः निर्णयः प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्रे घटितानां परिवर्तनानां दृष्ट्या विज्ञापनावधि सम्बद्धानां प्रावधानानां पुनरावलोकनस्य आवश्यकता अनुभूता इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
6: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
5: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: आइए लाल किला चलें।
2: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा

0: और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस, नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
1: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की इस सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहां से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहां पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ से।
0: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत

0: पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहां के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियां जो है वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही है और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहां बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहां तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहां पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था। वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहां सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह, सेना की अपनी यूनिफॉर्म में वर्दी में सजे धजे गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहां के कणकण में, यहां के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहां के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहां वंदे मातरम की गूंज यहां पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है उस क्षण की जब पहली बार यहां से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहां पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहां लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं और उसके साथ साथ हमारे माई भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है ज्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहां रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस बार, इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा
1: जी। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आजाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक टक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं, वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन

पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज हिस्सा है। अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है।

0: पंत सेवकों ने जो संरचना बनाई है, हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर बनाई है, हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं, हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक। आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो तीन प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र शोबोर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र, मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान कारक का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है मां भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम मां भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत, माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का

वक्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गार्ड का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है। कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विक्की मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा। माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजू सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड सलामी देगी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।

सहित कमांडर के नेतृत्व में चतुर्थी सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मानगर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सदैव वे कदमों से हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कार्पेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थल सेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में। प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का आभामंडल। देश के वीर सैनिकों के मुख पर विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए। और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है। श्रोताओं, 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर

0: राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला, मैं गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी।
0: निश्चित रूप से, और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण की वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले, जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठकें की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस

0: कि संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है, इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहां चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहां का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे, उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहां उपस्थित जनसमुदाय है, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, प्राचीर की तरफ देखकर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है। और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
1: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है क्योंकि हम जानते हैं, तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आजाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है इस समय ध्वज स्थल पर।

0: Indianapolis Bengals! Bengals! Yes!
1: और इस समय आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर, ये मी 17 हेलीकॉप्टर्स हैं भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटखेलिया करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम, और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहां से हमारी बाईं तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए, बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहां चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं, वहां ठीक सामने उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है, पंखुड़ियां है पीले रंग की, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है।
2: जी, और जैनेन्द्र, किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए, और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये।
1: जी, और राष्ट्रीय सलामी गारद अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी लेने के बाद यहां से प्रस्थान करती हुई सेना के बैंड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहां उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में, या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ, जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए, और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर, जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम।

मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि

जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। अरे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि आप 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। अरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल

ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेज खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में

पांच सात या आठ सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। ये क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने 5 ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था। हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए

आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 70% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां तो नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। इतने दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। देशवासियों,

इतने 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में इतने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। कोरोना से बाहर निकले युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का उस लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरते मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है।

आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास फिर पॉलिटिकल मैंडेट है, फिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे श्रिप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है और इसलिए मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कैटल बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे।

सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे ऊर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहे हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मंडवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए। और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ
सामान उतारना चाहिए।

गुजारने की जगह नहीं, दुनिया के शिफ्ट आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है मेरे प्यारे देशवासियों। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथ ही साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पाकर के रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है तो हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है, हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों न हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की इन सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं,

उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर, और देश के नौजवानों को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है।

स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है, भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिए, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया, उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है, देखिए नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे, बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार 9-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई, मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है, स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है, करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों,

मरे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर मां बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बेटे

भारत का राजगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पी है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत को तिहाई खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हम हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओज ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद, लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया और मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामने

उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है। एक बहुत बड़ा वॉलेंट्री फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही, वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव,

मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 35% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है। और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था, वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाला। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले। और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है,

काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। इस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था। उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उड़ते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
2: और इस समय माननीय प्रधानमंत्री

0: मंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जैनेन्द्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम के समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है, और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है, और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरातफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
0: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हों, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हवा में दोनों हाथ हिला आते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं, और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्जवल भविष्य का प्रमाण हूं, राष्ट्र हित में होने वाला सारा उत्थान हूं, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवान हूं, मैं युवा हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का, नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं, हमारी बाईं तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं, और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहां पर आए हुए हैं, अधिकांशता उसमें से। वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
0: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में

0: जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है। इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, GST हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए वहां थोड़ा अनुशासन बनाते हुए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का सपना डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है गरिमा में मंच है यहाँ से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य है हमारे सामने विकसित भारत का जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
1: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि की राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं, और किसी भी गांव में 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं, और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहां उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहां से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
0: जी बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने

वाहन में सवार हो चुके हैं। वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है, और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबू

0: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
3: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
2: आयुष्मान भारत अब इलाज की चिंता से आजादी।
4: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
3: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
2: आयुष्मान भारत अब इलाज की चिंता से आजादी।
4: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: के घर मुफ्त बिजली योजना, फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। सब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का

0: आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
1: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गति शक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड एरिया घोषित किया जाएगा।
1: हमने समुद्र तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
1: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राण

0: नक्सलियों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
1: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
1: यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपए पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपए में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपए में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। यह श्रृंखला 2025-27 के आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छटा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश को भी मुख पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की हैं। शीर्षक दिया है तिरंगे को दिल दिया देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्ते ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
0: अमरीका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमरीका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने

कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good morning, I'm Sarabjeet Kaur. The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag at Red Fort in Delhi. Addressing the nation, Prime Minister unveils 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up 5 new reactors. Prime Minister says India has rapidly progressed in the last 12 years with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards, including 13 posthumous for defence and Central Armed Police Forces personnel. And in cricket, first test of 2-match series between India and Sri Lanka to begin today at Gale. And now the news in detail. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: Aaj jab hum desh ke log Vande Mataram ke 150 varsh mana rahe hain to isse bada uttam avsar kya ho sakta hai. Pichle dinon देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं, पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं.
0: Prime Minister said a nation becomes great when it moves forward on the strength of its resolve and capabilities.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है. मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं. हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए. जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है.
0: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
1: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है. मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं. और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं.
0: He said India, which was once among the fragile 5 economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे. 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें

0: हासिल करना। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
1: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defense production has increased nearly fourfold.
0: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े।
1: He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times. Mr. Modi said the NDA government has worked with equal seriousness towards the welfare and amenities for the common man. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
0: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
0: देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी, हमारे यहाँ भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में चीप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका।
1: Prime Minister said India must move towards self-reliance and not remain dependent on other countries. He asserted that the country needs to strengthen its own capabilities and protect its national interests.
0: बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
1: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र का प्रसारण। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुनते हैं इसी मौके पर देशभक्ति गाने।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में क्रांति फिल्म का गीत। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कर्मा फिल्म का ये खूबसूरत सा देशभक्ति गीत।

कर्मा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णामूर्ति और साथियों की आवाज़ों में। श्रोताओं, इसी देशभक्ति गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। शामिल होते हैं अपनी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनिएगा दिल्ली केंद्र के प्रसारण।

0: सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हुकूमत ने अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को AI हुनरमंदी की तरबियत देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये तरबियत उन नौजवानों को मस्नूई ज़हानत के आलमी शोबे में क़यादत के काबिल बनाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को 3 चीज़ों, कीमत, मेयार और हुनरमंदी पर तवज्जो मरकूज करना होगी।
0: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
2: कथा आपको कहानी सुनाएगी, करें कहानी शुरू। दोस्तों, मेरा नाम कथा है। मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि किसी आर्मी वाले से शादी करूं। किसी फौजी की फोटो देखते ही एक जोश भर जाता था। ऐसा लगता था बस अब जो कुछ करना है फौज में जाकर ही करना है, फौज के साथ ही करना है। मुझे लगता है ऐसा सिर्फ मेरे साथ तो नहीं होता ना। सेना और शौर्य की बातें सुनकर आप सब भी गर्व से भर जाते हैं ना। एक अलग सा जज्बा, एक जोश, एक ओज हमारे भीतर आ जाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी को जब देशभक्ति के गीत सुनते हैं, अनहद आनंद मिलता है। बहुत से गाने हैं ना, जैसे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ वतन ऐ वतन। तो चलिए ना, क्यों ना आज इस मौके पर फिर से हम उस देशभक्ति के रंग में रंग जाएं और सुने इस सुंदर से गाने को।

दोस्तों, जब वीरगति पाने के बाद शहीद का शव तिरंगे में लिपट कर आता है तो क्या केवल उसके परिवार वाले रोते हैं? ये देखते हुए क्या आप दुखी नहीं होते? आप गमगीन नहीं होते? आपके भी आंसू बहते हैं ना? कितना खराब लगता है जब हम ये देखते हैं कि कुछ वीर शादी के बाद नई नवेली दुल्हन को छोड़कर, कोई छोटे से बच्चे को छोड़कर, तो कोई बूढ़े माँ बाप को रोता छोड़कर शहीद हो जाता है। उनका बलिदान कितना कुछ कहता है। हमेशा हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उस माहौल

माहौल में बहुत कुछ ऐसा होता है जो जुबां के हद से रिहा होकर हमारी आंखों से अता हो जाता है ना? बहते हैं ना हमारी आंखों से आंसू? क्या रिश्ता होता है उनका हमसे? क्यों वे हमारी सुरक्षा के लिए अपनी खुशी, चैन, सुकून सब कुछ बलिदान कर देते हैं? और न जाने क्यों तिरंगे में लिपटे उन वीरों को देखकर हमारी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है तो कुछ रिश्ते यहाँ बन जाते हैं। ऐसा ही रिश्ता है एक देशवासी का अपने फौजी से। कितना दुख होता है ना जब समझ में आता है जाते जाते भी शायद वे हमसे ऐसा कह रहे।

दोस्तों, आर्मी वाले से शादी करने का मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, तो सोचा चलो क्यों ना पत्रकारिता के जरिए उनसे जुड़ जाऊं, उनके लिए कुछ इस माध्यम से कर पाऊं। और अपने इस प्रोफेशन के जरिए अक्सर मैं उनके बीच जाती रहती हूँ, कहीं से आंसू तो कहीं से गम बटोर कर अपनी झोली में भरती हूँ। बहुत सी कहानियाँ हैं उन वीरों की, उनमें से बहुत सी कहानियाँ मेरे दिल के पास हैं, क्योंकि मैं उनके परिवारों में उनके साथ रही हूँ, उनके पास जाकर उनसे बातें की है। आज आपको उन कहानियों में से दो कहानियों से आपको मिलवाती हूँ। जी हाँ, मेजर अर्शदीप चोपड़ा और कर्नल दीक्षित के परिवार से आज आपको मिलवाना चाहूंगी, और मिलवाऊंगी मैं आपको हमारी मन्नू से। मन्नू, मनु, मानविका, मानू, बहुत सारे नाम है उसके, बड़ी प्यारी है वो। हाँ, बताऊंगी आपको उसके बारे में, लेकिन पहले मैं आपको मिला देती हूँ मेजर अर्शदीप चोपड़ा से। एक बार मैं रिपोर्टिंग के लिए कहीं गई थी, वहां मेरा मिलना मेजर चोपड़ा से हुआ। 6 फीट हाइट, गोरे चिट्टे, जिंदा दिल, आकर्षक व्यक्तित्व। उनसे मैं बातें करने लगी, वो भी मुझसे बहुत सी बातें करने लगे। तब मैंने उन्हें कहा, सर, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि बड़ी होकर आर्मी से जुड़ूं, आर्मी ऑफिसर से शादी करूं। सच बहुत प्रभावित होती हूं आप सबके जज्बे से। मैं बातें करती जा रही थी, उनकी तरफ देखा नहीं था। अचानक जैसे ही मैं पलटी, मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा शायद शायद मेरी किसी बात से उनको दुख पहुंचा है। मैंने कहा, सॉरी सर, अगर मैंने कुछ गलत कहकर आपको दुखी कर दिया है तो। नहीं नहीं कथा, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, आज तुमने बात छेड़कर बहुत अच्छा किया। आज तक मैं किसी से नहीं कह पाया, न जाने क्यों तुम मुझे अपनी अपनी सी लग रही हो। मेरी कोई बहन नहीं है, बनोगी मेरी बहन? सर, ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। इस बात पर उन्होंने प्यार से मेरा माथा चूमा, उनकी आंखों के आंसू मेरे माथे पर टपक गए। न जाने क्या था कि मेरी आंखों से भी आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें रुला दिया कथा? नहीं, भाई की आंखें रोएंगी तो बहन की आंखों तक तो आंसू पहुंचेंगे ना सर। कथा, भाई का है तो सर क्यों कह रही हो? अब उनके चेहरे की मुस्कान फिर लौटने लगी थी। तो इस बहन को नहीं बताएंगे ये उदासी किस लिए? शायद मैं किसी काम आ सकूं। अच्छा चलो बताऊंगा तुम्हें सब कुछ। वो देवदार का पेड़ है ना, मुझे बहुत सुकून देता है, वहां चलकर बैठकर बातें करें। जी भैया, जरूर। अच्छा, मेरे थर्मस में कॉफी है, निकाल लेती हूँ। पसंद है आपको कॉफी? हाँ, बहुत पसंद है। कॉफी का मग हाथ में लेकर भी बोले, पता है रूनू को भी मेरे जैसे कॉफी बहुत पसंद है। कहकर वे चुप हो गए, जैसे किसी सोच में डूब गए। लेकिन

कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान और उदासी दोनों एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो गए थे। सर नहीं नहीं भैया, रूनू कौन है? रूनू कथा? रूनू मेरी बेटी है, मेरी और शुभा की बेटी, जो अब 13 साल की हो गई है। मैंने हमेशा चाहा था कि हमारे घर में ना एक प्यारी सी परी सी बेटी आए। वो आई, बहुत खुश थे हम दोनों। मैं उसकी नेपी चेंज करता था, उसे लोरियां गाकर सुनाता था, नन्ही परी सोने चली, ना जाने कितनी लोरियां। उसके उसके लिए मैं एप्पल मैश करता था, क्या क्या नहीं करता था, सब कुछ कितना अच्छा लगता था मुझे। मैं और शुभा साथ में उसका हर काम करते थे, बिल्कुल एंजल सी लगती थी मेरी परी। उसके पास से मुझे हटने का दिल ही नहीं होता था, उसे मैं देखता ही रहता था और इंतजार था कि कब अपनी तोतली जुबान से वो मुझे पापा कहेगी। पर क्या भैया? कथा, आज तक उसने मुझे पापा नहीं कहा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसके समझदार होने पर मैं उसके साथ कभी नहीं रह सका। मेरी पोस्टिंग होती रहती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, और एक बार मैं सरप्राइज देने के लिए उन लोग के सामने यूनिफॉर्म में चला गया। बहुत छोटी सी थी वो, मुझे यूनिफॉर्म में देखकर वो अपनी मम्मा के पीछे दुबक गई। पता नहीं ऐसा उसने क्या देख लिया था, क्या समझ लिया था कि यूनिफॉर्म से डरने लगी थी मेरी परी। मुझे देखकर डर गई थी, डरती है मेरी परी मुझसे। अभी तक मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ, काश कभी तो वो मुझे पापा कहे। ये कहते कहते अचानक एक कॉल भी आ गया था और उन्हें उठकर अचानक जाना पड़ा था, और आंसुओं के बीच इससे ज़्यादा शायद अब वे और कुछ कह भी नहीं पाते। मैं समझ गई थी, उनके भीतर एक ऐसा गम है जिन्हें अंदर ही अंदर दुखी कर रहा है। मैंने एक निर्णय ले लिया था। इसके बाद मैं एक बार उनके कमरे में गई। मेजर चोपड़ा वहाँ नहीं थे क्योंकि उन्हें फ्रंट पर जाना था। टेबल पर एक डायरी रखी थी जिसमें लिखा था, अधूरी कहानियों की डायरी जो तूने कभी नहीं पढ़ी मेरी रूनू। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू टपक गए थे। भाई, इन अधूरी कहानियों को अब मैं मुकम्मल करूंगी, एक बहन का वादा है फौजी भाई से। इस घटना के 3 महीने बाद मेजर चोपड़ा फ्रंट से अभी अभी बंकर में आए थे। गहरे घाव थे, दर्द था। अचानक उन्हें एक वीडियो कॉल आया। उस वीडियो कॉल में ऐसा क्या था कि उनका सारा डर चला गया? जी हाँ, उनकी रूनू कह रही थी, पापा पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। मेजर चोपड़ा को लगा ये तो सपना है, लेकिन दोस्तों वो सपना नहीं, सच था। उनकी बेटी रूनू आज उनसे कह रही थी वो जो मेजर चोपड़ा सुनना चाहते थे, जो पापा सुनना चाहते थे अपनी बेटी से। पापा पापा, इस बार मैंने एनुअल डे पर आप रहेंगे ना हमारे साथ? मेरी मैम ने भी कहा है, दुश्मनों को याद दिला दी तुम्हारे पापा ने। मुझे बहुत अच्छा लगा पापा, सचमुच आप कितने अच्छे हैं पापा। मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनाऊंगी, और ना पापा मुझे एक स्टोरी भी लिखनी है पापा के ऊपर। मुझे पूरा विश्वास है पापा, मेरी स्टोरी फर्स्ट आएगी, क्योंकि मेरे पापा जैसा कोई नहीं है ना। जब मेरी बाकी फ्रेंड्स कहती थी ना अपने पापा के बारे में, पापा ऐसे करते हैं, पापा वैसे करते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं अपने पापा के बारे में क्या कहूंगी, लेकिन अब मैं बताऊंगी, मेरे पापा जैसा कोई नहीं, उनके पापा मेरे पापा जैसे नहीं।

मेरी परी, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है मेरे लिए? आपके मुंह से पापा सुन रहा हूँ। फिर बोलो पापा, बोलो मेरी बच्ची, पापा कहो, कहो मुझे पापा। रूनू ने कई बार कहा पापा पापा।

किया। मेजर साहब समझ गए। रूनू ने कहा, पापा वैसे बड़ी अच्छी बुआ ढूंढी है आपने, बहुत क्यूट है कथा बुआ। कथा बुआ ने मुझे आपके बहुत सारे वीडियोस दिखाए, तब मुझे सब कुछ समझ आ गया। कितना दुख दिया ना मैंने आपको। आई एम रियली सॉरी पापा। नहीं नहीं बच्चे, नो सॉरी। मेरा बच्चा अब तो खाली खुश रहने की बातें कर, मैं जल्दी आऊंगा अपनी परी के पास। अरे कथा, तेरी आंखों में आंसू क्यों बहना? भैया ये आंसू भी ना मौका नहीं देखते, दुख में भी बहते हैं और खुशी में भी। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं कैसे कुछ कहूँ कथा, तुझे क्या कहूँ, तूने क्या कर दिखाया मेरी बहन। सच अब कोई गम नहीं, मैं क्या कर पाऊंगा तेरे लिए, कुछ कर सकता हूँ? भैया रक्षाबंधन पर हिसाब बराबर कर लूंगी बहुत सा प्यार लेकर। सोचता हूँ अब अपनी बहन के लिए आर्मी ऑफिसर ढूंढ ही दूं। क्यों? नहीं भैया आप लेट हो गए, अब मैंने एक जर्नलिस्ट को ही पसंद कर लिया है। तो दोस्तों ये कहानी थी मेजर चोपड़ा की, लेकिन बहुत ही खुशनुमा मंजर था उस दिन। हम सब बहुत खुश थे, मन में गाना जैसे बज रहा था, खुशियां ही खुशियां हो आंगन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। खुशियां

तो दोस्तों, इस कहानी के बाद आपको एक और फौजी परिवार में लेकर चलती हूँ। वहां भी हैं कुछ आंसू, कुछ मुस्कान। आइए, भावनाओं के सागर में डूबते हैं। ये कहानी है कर्नल दीक्षित, उनके प्रिंसिपल पत्नी जानवी और प्यारी सी बेटी मानविका की। मैं उसको आपकी कहानी बताऊं, उससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि मानू, मानविका, मन्नू, जी हाँ, वो खुद आपको अपनी कहानी कहे, आपसे सीधी बातें करे। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि मानविका मुझे मिली कहाँ और कैसे मिली। बात तब की है जब मैं चैनल की ओर से एक इवेंट कवर करने के लिए नैनीताल जा रही थी। काठ गोदाम से बस में नैनीताल की ओर हम जा रहे थे। मैं मेरी सीट पर अकेली बैठी हुई थी, बहुत कम लोग थे उस बस में, और वो मेरी बगल वाली सीट पर अकेले बैठी हुई थी, हौले हौले मुस्कुरा रही थी। कितनी प्यारी लग रही थी वो, न जाने क्या था उसमें जो मैं उसे देखने लगी। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आज के किशोर जब फोन की रील्स बनाने में व्यस्त होते हैं, ये लड़की प्रकृति की खूबसूरती को देखते हुए कितनी खुश हो रही है, कुछ लिख रही है। कितनी सुंदर लग रही है वो प्रकृति को वर्कों में उतारते हुए। उसके सलोने चेहरे पर सपने संजे हुए दो बड़ी बड़ी आंखें थी, गालों में डिंपल पड़ रहे थे। न जाने क्यों मेरा मन उससे बहुत से बातें करने को होने लगा। अचानक उसने मेरी ओर देखा, देखकर मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुरा दी। उसे देखकर मेरे मन में न जाने क्यों ये शब्द

आगे जब बस रुकी, हम नीचे उतरे, उसने जूस लिया और मैंने चाय। पैसे देने के समय उसे पता चला कि उसका वॉलेट किसी ने निकाल लिया है। वो बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा, परेशान मत हो। मैंने उसके रुपए भी दे दिए। फिर हम दोस्त बन गए। हम एक सीट पर साथ में बैठ गए। बातें करते हुए नैनीताल पहुंचे। न जाने कितनी बातें, पहली बार मिले थे पर हमारे बीच इतनी सारी बातें आ कहां से रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। हम उम्र ना होकर भी हम बहुत करीब आ गए। इस बात से शायद और ज्यादा कि वो भी आर्मी बैकग्राउंड से है। जी हाँ, हमारी मानू भी आर्मी बैकग्राउंड से है। कुछ समय पहले तक जो दो अनजाने थे, कितने अपने से हो गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज हम पहली बार मिले हैं। हमें पता चला कि हम तो एक ही शहर में रहते हैं, हमारे घर भी बहुत पास पास में हैं। उसके बाद कई मौकों पर हम मिलने लगे। मानू को मेरी मम्मी के हाथ की खीर बहुत पसंद आती थी, तो जब भी मेरे घर खीर बनती, मम्मी कहती, मानू के घर खीर जरूर जाएगी। और मानू के घर जब भरवा बैंगन बनते, तो आंटी यानी मानू की मम्मा मुझे जरूर बुलाती। मैं मानविका से उम्र में कुछ साल बड़ी हूँ, पर वो अपनी सारी बातें मुझसे साझा करने लगी। मैं उसके लिए दोस्त, बहन, न जाने क्या क्या बन गई। वो कहती, कथा दी, मेरा कोई सिबलिंग नहीं था ना, इसलिए भगवान ने आपसे मिलाया। इसके बाद अक्सर वो कई बार मेरे स्टूडियो आ जाती, कई बार मैं उसे अपने साथ आउटडोर पर ले जाती। कभी कभी मैं भी उसके पापा के साथ आर्मी के किसी प्रोग्राम में चली जाती। जब वो ये कहती ना कि भगवान जी ने मुझे आपसे मिलाया, बड़ी प्यारी लगती। उसकी इस मासूमियत पर मैं उसका माथा चूम लेती। आप उसके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं? तो जानिए भाई, हक है आपका। तो क्यों ना मानू यानी मानविका से ही सुन लें आप कहानी, उसी की जुबानी। मैंने आपको पहले बताया था ना कि डायरी लिखती है मानू, तो अब आगे की कहानी हमारी मानविका और उसके डायरी के पेज ही आपको बताएंगे। मानविका डायरी में लिख रही है, मेरी प्यारी डायरी, तुम्हारे पन्नों पर मेरे सभी जज्बात दर्ज हैं। जब मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आता था, कुछ भी उल्टा सुलटा लिखती थी, तो तुम्हारे पन्नों पर तब भी तो मैं लिखती थी, कभी कुछ ड्रॉ कर देती थी। आज तुम्हारे साथ अपने पापा को एक लेटर लिख रही हूँ। पापा, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आज मेरा मन कर रहा है मैं आपको उसी लेटर पैड पर लेटर लिखूं जो आपने मुझे मेरे सेकंड बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। पिंक बैकग्राउंड, गोल्ड एंड पिंक फेडीज वाला, जिसमें चिड़िया और परियां बनी हुई हैं। आपको याद है ना, मुझे हर चीज पिंक चाहिए होती थी। आइसक्रीम पिंक, ड्रेस पिंक, स्लीपर पिंक, शूज पिंक, हेयर बैंड पिंक। पापा, मेरे भाई नहीं है ना, तो आपको ही तो मैं राखी बांधती हूँ ना। पिछले रक्षाबंधन पर मैं आपसे गुस्सा हो गई थी, आपसे और मम्मा से, पता है ना क्यों? आप लोगों ने मुझे व्हाइट आइसक्रीम जो दे दी थी। लेकिन आप दोनों भी कम नहीं है, कुछ प्लान कर लिया था और आइसक्रीम में पिंक कलर डालकर उसे पिंक कर दिया था और मुझे खुश कर दिया। लेकिन मैं जानकर गुस्सा रहने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे आप लोगों का और ज्यादा प्यार मिलता। और तब आप दोनों मुझे प्यार करते हुए गाने पर मेरे साथ नाचने लगे।

मैं रोते रोते हंस दी थी। मुझे हंसता देखकर आप दोनों कितना खुश हो गए थे, जैसे आपके घर आने से मैं खुश हो जाती हूँ। पापा आपने कहा था ना जल्दी आओगे, कब आओगे पापा? जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पेरेंट्स डे आता है ना, तब मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। सबके पेरेंट्स आते हैं ना, आप नहीं होते। और पापा, हर संडे ना मेरी दोस्त ना अपने अपने पापा के साथ घूमने जाते हैं, मैं नहीं जाती क्योंकि आप हमारे साथ नहीं रह पाते ना। पापा जब आप आएंगे ना, तब हम गार्डन में झूला झूलेंगे, आपके साथ मैं बाइक पर घूमूंगी। मैंने पूरी लिस्ट बनाई है आपके साथ क्या क्या करना है, जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पापा आप जहाँ रहते वहां गुड़िया मिलती है ना, मेरे लिए लाएंगे आप आंख मटकाने वाली गुड़िया? याद है बचपन में हम गाना गाते थे, सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। अच्छा ठीक है ठीक है। पापा मेरा 9th बर्थडे आने वाला है, आपने मुझसे वादा किया था ना आप मेरे बर्थडे पर आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे बर्थडे को केवल कुछ ही दिन तो बाकी हैं। आप तो अपने मन्नू को कभी दुखी नहीं देख पाते ना, याद है ना? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं पापा, आप दुखी मत हो, डोंट बी सैड। हाँ मैं नहीं रोऊंगी क्योंकि ना अब मुझे समझ में आ गया है कि आप जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते हमारे पास। मम्मा ने मुझे बताया कि मेरे जैसे बहुत से मन्नू हैं, अगर मेरे यानी मन्नू के पापा फ्रंट पर नहीं लड़ेंगे तो उन सब मन्नू के पापा उनके पास नहीं रह पाएंगे। कोई बात नहीं पापा, मैं आपको चिट्ठी लिख रही हूँ ना, वो मैं आपको भेजूंगी, वो आप पढ़ लेना। हाँ और मम्मा ने ना मुझे वो गाना दिखाया था जिसमें चिट्ठी पढ़कर ना सारे सोल्जर्स ये गाना गाते हैं।

0: पापा, अब जब मुझे समझ में आया ना कि आप मेरे बर्थडे पर हमारे साथ क्यों नहीं होंगे, तो कहना चाहती हूँ आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। कोई बात नहीं है, मेरा बर्थडे मैं आपको वीडियो कॉल करके मना लूंगी, ठीक है? अच्छा पापा, आपको पता है आपकी मन्नू ने क्लास में टॉप किया है और कथक डांस में भी ना मैंने लेवल 1 कर लिया है। पापा, मैं भी आपके जैसे सोल्जर बनूंगी। और कल हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, अब तो जानते हैं ना आपकी मन्नू हर प्रोग्राम का हिस्सा होती है। आप सोचेंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। पापा, मैं सोल्जर बन के परफॉर्म करने वाली हूँ अपने इस फेवरेट गाने पर, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। अरे पापा, आपको ये भी तो बताना है कि मम्मा ने मेरे ऊपर एक और कविता लिखी है, और जब भी मुझे याद आती है ना आपकी, मैं उदास होती हूँ ना, मम्मा मुझे गले लगाकर बहुत सा प्यार करती है, फिर एक नई कविता सुनाती है और फिर मुझे खुश कर देती है। आपको पता है आपकी मन्नू भी ना मम्मा जैसे थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करने लगी है। आप आएंगे ना तब मैं आपको सुनाऊंगी मैंने क्या लिखा है। लगता है मम्मा कॉलेज से आ गई हैं। मुझे मम्मा से बहुत सारी बातें करनी, वो भी बहुत सी बातें बताएंगी, और मैंने जो कविता लिखी है ना मम्मा को पहले सुना देती हूँ। आप आएंगे तब आपको सुनाऊंगी। सॉरी पापा, चिट्ठी बीच में छोड़कर गई, लेकिन मम्मा को कविता सुनानी थी, मम्मा थक कर आई थी, उन्हें पानी देना था, ग्रीन टी बनानी थी। मैं ना धीरे धीरे किचन का काम सीख रही हूँ, जब आप आएंगे ना आपको कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी, ओके? पता है पापा, मेरी कविता सुनकर मम्मा बहुत खुश हुई और मुझे बहुत सा प्यार किया, मुझे कहा जूही की कली, चांद की किरण, पता नहीं क्या क्या, बहुत अच्छा लगा मुझे। पापा, आज मेरा 9th बर्थडे है, बहुत मिस कर रही हूँ आपको। कोई बात नहीं, मम्मा मुझे आज गर्ल्स ऑर्फनेज लेकर जाने वाली हैं, हम ना गर्ल्स के साथ में वहाँ अपना बर्थडे मनाएंगे। पता है आज मैंने पहली बार नमकीन बिस्किट का स्नैक्स बनाया उन बच्चियों के लिए, और मम्मा ने केक घर पर बनाई है। उन्हें पता है ना मुझे मलाई वाली केक बहुत पसंद है, आपको भी अच्छी लगती है ना। 2 केक बनाई है, एक हम ऑर्फिनेज में काटेंगे और एक हम घर आकर वीडियो कॉल करेंगे आपको, तब काटेंगे। ओके पापा, अभी फिलहाल इतना, फिर बाद में बात करते हैं, बाय। आज 1 महीने बाद आपको चिट्ठी लिखने का फिर से मन कर रहा है पापा। उस ऑर्फिनेज की बच्चियों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा था, उन लोगों ने मेरे लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया, एक प्रेयर भी की थी, हमने उनके साथ बैठकर खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं घर आई मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आपके साथ वीडियो कॉल पर बात करनी थी तो वो एक्साइटमेंट भी था। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी, हमारा ड्राइंग रूम भी सजा हुआ था, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बजने लगा था अचानक। अरे मम्मा तो मेरे साथ गई थी, ये सब पीछे से किया किसने? और तभी सरप्राइजिंगली आप बाहर निकले थे, आपके साथ बहुत सारे आर्मी वाले अंकल भी आए थे। पापा, अपना वो बर्थडे मैं कभी नहीं भूल सकती, मम्मा भी मेरा बहुत ध्यान रखती, लेकिन आपके आने से ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, एक अधूरापन खत्म हो जाता है। आप सबने कितना सुंदर डांस किया था, हम सब कितनी मस्ती कर रहे थे ना, कितना अच्छा लगा था हमें उस दिन।
1: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू

0: पे जैसे अरियल टट्टू
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: सच्ची पापा, आई एम द लकीस्ट डॉटर। आप दोनों मुझे कितना प्यार करते हैं ना। एक दिन की छुट्टी मिली थी, आप मेरे लिए घर आ गए थे। कितना प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए। और आप लोगों ने मेरी गलती के लिए मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। याद है एक बार दादी हुई थी, उस दिन बैंगन की सब्जी बनी थी, मैं मुंह फुलाकर बैठ गई थी और तब आपने मजेदार एक्टिंग करते हुए गाना सुनाया था, आलू कुछ आलू कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। मैं खिलखिलाकर हंस दी थी लेकिन भेल खाने की जिद पकड़ ली। दादी ने कहा, विश्वा बड़ा सिर चढ़ा लिया है तुमने बिटिया को, इसे दूसरे घर जाना, इतने नखरे ना चलने वाले। और तब आपने कहा था, आसमान में उड़ेगी, आसमान की परी है हमारी बिट्टो, शादी करेगी तो करेगी, ना मन होगा तो ना करेगी। अरे अम्मा गुस्सा छोड़ो, चलो मोटर में बैठ के चौपाटी जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे। हम चौपाटी से भेल खाकर आ गए थे, बहुत मस्ती की थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन बहुत उदास हो गया था। मैं 13 साल की हो चुकी थी। दादी की इस बात ने मुझे बुआ की बात याद दिला दी जो कुछ दिन पहले उन्होंने कही थी। भैया भाभी, आपके तो बस एक बेटी है, कैसे वंश चलेगा आप लोगों का। तब आपने कहा था, जिज्जी यही हमारी बेटी है, यही हमारा बेटा है, आप देख लेना जिज्जी, मेरे जैसे देश की सेवा करेगी मेरी बेटी, नाम रोशन करेगी मेरा। इसका नाम मानविका है लेकिन हम मन्नू कहते हैं, लक्ष्मीबाई का नाम मनु था ना, हमारी मन्नू हमारी राजकुमारी है, हमारा राजकुमार भी। मैंने उदास होते हुए पूछा, पापा मैं आप लोग का बेटा बन के पैदा क्यों नहीं हुई। बुआ कह रही थी ना, बेटे से वंश का नाम चलता है। तब आप दोनों ने मुझे प्यार से गले लगाकर नैनी वाली काकी के बेटे के बारे में बताया था। कितनी मन्नत के बाद उनके घर 4 बेटियों के बाद बेटा हुआ था, लाड़ प्यार में ऐसा बिगड़ा कि उसने घर ही बिकवा दिया। पापा आपने मुझे आर्मी में जा रही लड़कियों के बारे में बताया, तो मम्मा ने मुझे वो न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें लड़कियों ने लड़कों को एजुकेशन में पीछे छोड़ दिया था। माँ ने अपनी एक कविता की लाइन के साथ मुझे गले लगाकर कहा था, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह से लगती है। अपने आगोश में समाते हुए आपने मुझे कहा था, मेरा अभिमान है मेरी बेटी। कितना प्यार किया था तुझे।

मैंने आपको सल्यूट करते हुए कहा था, पापा आपकी तरह मैं भी देश की सेवा करूंगी। अगले हफ्ते आपको फ्रंट पर जाना था, 3 साल बाद आप घर आने वाले थे। जब आप आए, एनडीए का ब्रोशर लेकर आए थे, उसे देखकर मैं खुश नहीं हुई थी। बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। आपने एक बार कहा था ना, मन होगा तो शादी करेगी, ना होगा तो ना करेगी। लेकिन अब मैं एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ, साथ में पढ़ने वाला एक लड़का मुझे अच्छा लगने लगा है। पढ़ाई में पहले की जैसे मन नहीं लगता, प्यार के गीत सुनने में अच्छा लगता है। अक्सर ये गाना मेरे दिल में बसता रहता है।

आप पहले आते थे ना, तो मैं आपके आसपास मंडराती रहती थी, लेकिन न जाने अब बहुत कुछ बदल सा गया मेरे भीतर। आप 3 साल बाद आए और मैं कमरा बंद करके बैठ गई, डायरी में रखा हुआ निशीत का कार्ड निकालकर देखने लगी, उसकी बातों को याद करने लग गई, भूल गई कि आप घर आए हैं। निशीत को फोन लगाकर बात करने लगी। मम्मा ने 2 बार आवाज दी। मैंने निशीत से कहा बाद में बात करेंगे, दरवाजा खोला और चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। जल्दबाजी में मैंने डायरी में कार्ड वैसे ही छोड़ दिया। मम्मा कमरे में आई, मैं जब ड्रेसिंग से निकली मैंने देखा वो मेरी टेबल के पास से जा रही हैं, शायद उन्होंने वो कार्ड देख लिया था। मम्मा को चुप देखकर मैंने आवाज दी, मम्मा। उनके हाथ में कुछ पेपर्स भी थे, लेकिन उन्हें वो वैसे ही लेकर चली गई। केवल इतना कहा, पापा खाने पर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। कुछ देर में जब मैं खाने की टेबल पर पहुंची, आप दोनों हमेशा की तरह नॉर्मल नहीं लग रहे थे। मुझे लगा था अब आप लोग एनडीए की बात करेंगे, या ऐसे ही किसी प्रश्न का इंतजार कर रही थी कि आपने कहा था मानविका आप आगे कुछ कहते, उसके पहले ही मैंने कहा था, पापा आपकी मन्नू अब मानविका हो गई। हाँ बेटे, हमारी मन्नू बड़ी हो गई है, हम उसे बच्चा ही समझते थे, लेकिन अब मानविका बन गई है भाई। वो तुम पे कोई प्रेशर नहीं, तुम जो चाहो करियर चुनो। मैं कहना चाहती थी कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहती हूँ, पर कह नहीं सकी। एक उदासी सी पसर गई थी घर में। रात को जब मैं अकेली हुई, मुझे लगा मम्मा कितनी दुखी हुई होंगी, पापा कितने दुखी हुए होंगे मेरे फोकस को हटे हुए देखकर, और वो भी टीनेजर बेटी के फोकस को हटे हुए देखकर। मैं आप लोगों के कमरे में आ गई थी, फिर से वही छोटी सी मन्नू बनकर आपकी गोद में सर रख कर रोने लगी थी, पापा आई एम अ बैड गर्ल। क्यों बेटे, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मैंने आप लोग को दुखी किया है ना, लेकिन अब वही करूंगी जो आप लोग कहेंगे। मम्मा ने लाड़ से कहा, पल्ले मेरा बच्चा बड़ा सयाना हो गया। बच्चू तू हमें दुखी नहीं करना चाहती, पर हम ही गलत थे शायद, तुझे बेटी की तरह देखना ही बंद कर दिया था हमने, बेटा समझने लग गए थे। तेरी अपनी भावनाएं और इमोशंस है बेटी, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तेरी डायरी पढ़ ली थी, कार्ड देख लिया था। तुझे भी तो हक है अपने जीवन में सपने देखने का, अपने राजकुमार के सपने देखने का। कब मिलवाएगी अपने राजकुमार से? ये बातें करते हुए हम कितने भावुक हो गए थे।

मैं आप लोग के साथ वहीं सो गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी 10 बज गए थे, रविवार था। मम्मा ने बैटरी देते हुए कहा, कथा का 2 बार फोन आ चुका है। चाय पीकर मैं अपने कमरे में गई। बालकनी में जाकर मैंने कथा दीदी को फोन लगाया, उन्हें सारी बातें बताई। कथा दीदी ने कहा, मानू मैं तो यही कहूंगी, तू प्रेम वेम के चक्कर में पड़ने के लिए भी बहुत छोटी है, इनफैटुएशन भी तो हो सकता है ना ये, और तेरे आर्मी में जाने के सपने का क्या जो तूने बचपन से पाल के रखा था। निशित अच्छा दोस्त है, उससे बात कर। कथा दी की इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया। पापा अचानक आपको ज्वाइन करने जाना पड़ा था, मैं आपसे कुछ और बात करती उसके पहले ही, मेरे कॉलेज से लौटने के पहले आप चले गए थे। मैंने जब निशित से कहा, उसने कहा था, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ। आपका लाया हुआ एनडीए का फॉर्म हाथ मिले मैं कुछ सोच ही रही थी कि अचानक मम्मा की चीख सुनी, उनके हाथ से फोन लिया। ज्ञानी अंकल कह रहे थे, भाभी तुरंत आप लोग पहुंचे। मन में बहुत सारी शंकाएं लेकर हम हॉस्पिटल पहुंचे, पर बहुत सुकून मिला था जब आपको पूरे होश में बात करते देखा। बाद में पता चला आतंकी हमले में आपका दायां हाथ घायल होकर बेकार हो चुका है। मैं लगातार रोती गई थी। आपने मुझे खुश करने की कोशिश में कहा, निश्चित कैसा है? जवाब में मैंने एनडीए का फॉर्म आगे कर दिया। पापा मेरा सपना तो ये है अब, मेरी मनु कहकर आप अपने कटे हुए हाथ का गम भूल गए थे, इस बात

को 6 महीने बीत गए। अगर मैं कभी उस आतंकी घटना का जिक्र करती, दुखी होती, तो आप कहते, क्या हुआ, फ्रंट पर नहीं लड़ सकता, ट्रेनिंग तो दे सकता हूं ना। और आपने सीना चौड़ा करते हुए कहा था, बेटा सैनिक की जिंदगी में तो ये सब चलता रहता है, मैं कम से कम तुम लोग के साथ तो हूं, और पुरानी बातों को लेकर दुखी नहीं होते। याद है ना वो गाना।

हाँ पापा, जो बुरा है उसे याद नहीं रखना, जो अच्छा है उसे जीना है। आप लोगों ने कहा ना, मेरा सपना है आसमान में उड़ना। जी हाँ, अब मैं जूंगी अपने उस सपने को। समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया, पता ही न चला मेरा सिलेक्शन एनडीए में हो गया। जिस दिन मेरा सिलेक्शन एनडीए में हुआ, आप कितने खुश थे, मम्मा कितनी खुश थी। मम्मा ने नारियल की बर्फी बनाई थी, वो एल्बम निकाले थे जिसमें मैं पंछी बनी हूँ, परियों जैसे उड़ रही हूँ। मैं बचपन में कहती थी ना, मुझे भी चिड़ियों जैसे उड़ना है, परियों जैसे उड़ना है। उसके बाद मैं देवलाली ट्रेनिंग पर गई थी। पापा, मैंने आपको बताया था ना, देवलाली ट्रेनिंग से लौटते वक्त मैं ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी रिमझिम बारिश को देख रही थी, कसारा घाट को देख रही थी, नीचे ट्रैक पर काम करते लोगों को देख रही थी, दरवाजे पर खड़ी सांप के जैसे मुड़ती हुई ट्रेन को देख रही थी, कैमरे में उस खूबसूरती को कैद कर रही थी। तभी अचानक अंदर से तेज आवाजें आने लगी थी। अंदर कुछ गुंडे पैसेंजर्स को परेशान कर रहे थे, सब डर कर चुप बैठे थे। मुझे अचानक लगने लगा ये वही आतंकवादी जिनके कारण आपको अपना हाथ गंवाना पड़ा था। मेरे अंदर की झांसी की रानी ने कहा, अगर आज मैं चुप रह गई तो आपका विश्वास टूट जाएगा और मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला सकूंगी। आपकी झांसी की रानी मन्नू ने तब सचमुच में झांसी की रानी बन करके वो लड़ाई लड़ी थी। उन गुंडों को मैंने छठी का दूध याद दिला दिया था। 1 महीने आप सबके साथ रहने के बाद मुझे ज्वाइन करने जाना था। प्लेन उड़ाते हुए मैं आपके सपने को जी रही थी, अपने सपने को जी रही थी, सोच रही थी अगर मैंने इस सपने को छोड़ दिया होता तो कितना कुछ मिस करती मैं, कितना अधूरा सब कुछ रह जाता है ना। अब तो बस इंतजार है कि देश सेवा का बड़ा मौका मुझे मिले। मुझे और उड़ने जाना है तो मेरे साथ मेरी डायरी भी जाएगी, इसलिए मैं अब उड़ने जा रही हूँ। कथा दीदी से आगे आप कहानी सुने। जय हिंद।

अब गम नहीं। ये थी अलका अग्रवाल सिकतिया की कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग सौरव घारू का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब आज का गीतों भरी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रस्तुत है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: प्राचीन काल से हिंदुस्तान में भाषा, धर्म, आहार विहार और भौगोलिक परिस्थिति में विविधता पाई जाती है। ब्रिटिश काल में भी राजकाज की सहूलियत को देखते हुए प्रांत रचना सीमित संख्या में थी। फिर भी सार्वजनिक रूप से आम जीवन में बोली जाने वाली 15 से अधिक ऐसी भाषाएं तो थीं जिनकी अपनी अधिकृत लिपि थी।
1: वंदे मातरम, इस रचना की और उसके रचयिता की बात करें तो मातृभाषा बांग्ला और अंग्रेजी के ज्ञाता तो वे थे ही। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय गीर्वाण भाषा संस्कृत के भी अध्येता थे। संस्कृत साहित्य का प्रभाव उनके साहित्य पर था। वंदे मातरम गीत का निर्माण एक सहज उमंग से हुआ था, इसलिए उसे भाषा के बंधन स्वयं बंकिम चंद्र भी नहीं लगा सके। यह गीत बांग्ला और संस्कृत भाषा का मिश्रण है, पर इसमें हर वाक्य में एक शब्द बांग्ला और एक शब्द संस्कृत ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ वाक्य पूरे पूरे बांग्ला हैं। ऐसा होने पर भी इसकी प्रभावकारिता कहीं भी खंडित नहीं होती। वंदे मातरम का पहला अनुवाद बंकिम चंद्र जी के जीवन काल में ही हुआ और यह अनुवाद संस्कृत में किया गया था। विजयलाल दत्त द्वारा रचित जागो माँ आमार इस कविता में शुरुआत की कुछ पंक्तियों को जोड़कर वंदे मातरम का संस्कृत अनुवाद लेकर और फिर अंत में उन्होंने वंदे मातरम के महत्व को बताने वाली पंक्तियां जोड़ी। मूल गीत में जो पंक्तियां या शब्द बांग्ला के हैं केवल उन्हीं पंक्तियों को संस्कृत में बदला गया था। उदाहरण के लिए के बोले माँ तुमी अबले, इसकी जगह कोह भिदंते मातर बले। उसी प्रकार बाहुते तुमी माँ शक्ति के स्थान पर भुजयो स्तबम मसी शक्ति चेतसी त्वमसी भक्ति ही सृजामिते प्रतिमूर्ति ही मंदिरे मंदिरे, ऐसी पंक्तियां आई हैं। ऋषि बंकिम चंद्र द्वारा लिखे गए वंदे मातरम गीत में अधिकांश शब्द रचना संस्कृत में ही है, इसलिए इस अनुवाद में सभी पंक्तियां संस्कृत भाषा में रूपांतरित हो गई हैं और इसीलिए इसे पूरी तरह से स्वतंत्र पहला अनुवाद नहीं माना जा सकता।
2: ১৮৭৫ में ऋषि बंकिम चंद्र जी ने बंगाली मिश्रित संस्कृत में वंदे मातरम की रचना की, लेकिन उसमें निहित आशय के कारण मात्र बंगाल तक सीमित न रहकर वो काव्य पूरे देश का गीत बन गया। मूल गीत तो लोकप्रिय हुआ ही, परंतु अनेक भाषाओं के कवियों ने ये महसूस किया कि ये गीत उनकी अपनी प्रांतीय भाषा बोलने वाले सामान्य जनों तक पहुंचना

0: चाहिए। अतएव उन कवियों ने अपनी अपनी भाषा में इसका अनुवाद भी किया।
1: गुजराती, तेलुगु और उर्दू जैसी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी 9 से अधिक अनुवाद हुए। हर भाषा की अपनी विशेषता, अपना निरालापन होने पर भी बंकिम बाबू के मूल गीत की मधुरता बनाए रखने का प्रयास सभी ने किया।
2: आश्चर्य की बात यह है कि वंदे मातरम का पहला अनुवाद 1888 में यानी बंकिम चंद्र जी के जीवन काल में ही श्री अरविंद के दादा राज नारायण बसु ने अंग्रेजी में किया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसी अनुवाद के कारण वंदे मातरम के भाव पर शंका जताई गई। अंग्रेजों ने वंदे मातरम का संज्ञान इसी अंग्रेजी अनुवाद के कारण लिया। बाद में लगभग 17-18 साल बाद राज नारायण बसु के ही नाती क्रांतिकारी अरविंद घोष ने वंदे मातरम के 2 अंग्रेजी अनुवाद किए।
3: उसके बाद 6 और अनुवाद प्रकाशित हुए। उनमें से एक अनुवाद बंगाल के विभाजन की पृष्ठभूमि में 11 दिसंबर 1905 के इंडियन मिरर के अंक में प्रकाशित हुआ। उस पर कवि का नाम नहीं था। एक और अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट्समैन के 1905 के अंक में प्रकाशित हुआ और उस पर ट्रांसलेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल काउंसिल इन अमेरिका ऐसा छपा था।
2: इन अंग्रेजी अनुवादों की एक विशेष बात यह है कि इनमें से एक अनुवाद ब्रिटिश अधिकारी W.H.L. लेफ्ट ने किया था, जिसमें विंध्य, दुर्गा, लक्ष्मी और वाणी इन शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग उल्लेखनीय है।
4: My motherland, I sing. Her splendid streams, her glorious trees, they zephyr from the far-off Vindhya Heights. Her fields of waving corn, the rapturous radiance of her moonlit nights, the trees and flowers that flame afar, the smiling days that sweetly vocal are, the happy blessed motherland, her will by 70 million arms upheld, her strength no man scorn, thou art my head, thou art my heart, my life and soul art thou, my song, my worship and my art. Before thy feet I bow, as Durga, scourge of all thy foes, as Lakshmi, bowered in flower that in the water grows, as Vani, wisdom and power, the source of all our might, our every temple doth thy form uphold, unequaled, tender, happy, pure, of splendid streams, of glorious trees, my motherland, I sing. The stainless charm that shall endure, and verdant banks and wholesome breeze, that with her praises sing, my motherland.

0: साहित्यकारों पर भी वंदे मातरम का प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध हिंदी कवि मदनलाल वर्मा कांत और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सुंदर अनुवाद किए हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी वंदे मातरम के कोटि कोटि कंठ वाले छंद का अनुवाद सुंदर हिंदी में करते हैं।
1: 30 कोटि लोगों की कलकल सुनी जहां पर जाती है, उसकी दुगुन खड्ग धारा की द्युति विकास जहां पाती है, तिस पर भी तू अबला है, ये बात व्यथा उपजाती है। हे तारिणी, हे बहुबल धारिणी, रिपु तू काट गिराती है, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: उर्दू भाषा में भी वंदे मातरम के 3 अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनमें से पहला काजी अब्दुल गफ्फार द्वारा किया गया अनुवाद दैनिक पयाम के उर्दू अंक में 7 अक्टूबर 1937 को प्रकाशित हुआ। प्रसिद्ध उर्दू शायर सीमाब अकबराबादी तथा कवि भानु ने भी उर्दू में अनुवाद किए हैं। उनमें से भानु द्वारा किया गया अनुवाद ये रहा।

तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। विख्यात कवि सुब्रमण्यम भारती ने दक्षिण में वंदे मातरम शब्दों का प्रचार अपने काव्य और कार्य से किया। भारत रत्न एमएस सुब्बलक्ष्मी ने भारती द्वारा किए गए अनुवाद को अपने मधुर स्वरों से सजाया।

संध्या दीक्षित के कन्नड़ अनुवाद में मूल वंदे मातरम की नाद मेहता बहुत सुंदर ढंग से प्रकट हुई है। तुमी विद्या तुमी धर्म का अनुवाद करते हुए वे लिखती हैं, नी विद्ये नी ने धर्म, नम हृदय दी नी ने मर्म।

बड़ौदा के सावरकर अध्येता और युवा लेखक चिरायु पंडित ने मूल वंदे मातरम के समवृत्त में ही गुजराती अनुवाद अभी हाल ही में किया है। गायक जयदीप बेहरे, संगीतकार निखिल पालकर।

0: अंग्रेजी अनुवाद के बाद सबसे अधिक यानी 5 अनुवाद मराठी भाषा में हुए हैं। विष्णु रंगाजी शेरडेकर जो गोवा के प्रसिद्ध कवि थे उनके द्वारा किया गया अनुवाद संभवतः 1910 से पहले का है। वहीं पर वंदे मातरम के 125वें वर्ष के अवसर पर डॉक्टर प्रदीप आगाशे ने मुक्त छंद में वंदे मातरम का अनुवाद किया।
1: वंदितो माते तुलामी मातृभूमि आमुची, वर्णिता शब्द ही सुचेना ही अवस्था आमुची, पाणी आणि धान्य विपुल ही देसी सततची तू आम्हा, वायु लहरी शीतल अशा मलय शिखरा वरुणी ज्या, विपुल शेती शीतलहरी यामुळे श्यामल अशी, वंदितो माते तुलामी मातृभूमी आमुची।

वंदे मातरम के इन अनुवादों के अलावा वंदे मातरम से प्रेरणा लेकर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, कविवर बीनी माधव, क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र कवि इंद्र, सरला देवी चौधरानी, मराठी में ग दी माडगुलकर, गुजराती कवि नानालाल और महाकवि वल्लतोल नारायण मेनन ने भी वंदे मातरम से प्रेरित होकर मातृवंदना करने वाले गीत लिखे हैं। उनमें से मलयाली कवि महाकवि वल्लतोल का ये गीत

और अब वंदे मातरम का वो हिंदी अनुवाद संवित स्वरों में प्रस्तुत है जो रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष के इस विशेष संस्करण के लिए रचा गया है। अनुवादक कवि जयंत पात्रिकर, संगीतकार अजय पराड़।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम के विषय में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा है,
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम एक गान नथी, आ शान बान अने आन आपणी, आजादीना महायज्ञनी आहुति आ, राष्ट्रभक्तिनी आहले का, गणतंत्रना उरतंत्रनो महामंत्र आ, विकासनी आ सतत धबकती अननम ओळख रहे आपणी, 1857 नो प्रकाश पुंज आ, सत्य काजे रक्तनो अभिषेक अविरत, वंदे मातरम ए शब्द नहीं, आ मंत्र आपणो, आजादीनी ऊर्जानो धबकार आपणो, विकासनो आ राजमार्ग छे, संकल्पित आ राष्ट्र जीवननो महामार्ग छे, प्रजा जीवननी प्रत्येक प्रत्येक प्रभातनी प्रत्येक प्रबुद्ध चेतनानो स्वर आछे, वंदे मातरम।
2: आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर, ममता सिंह, मंदाकिनी जोशी और यूनुस खान। अंग्रेजी, उर्दू और तमिल अनुवादों के रिकॉर्डिंग स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित जन गर्जय इस एल्बम से साभार। हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ अनुवादों के संगीतकार अजय पराड़, हिंदी अनुवाद के गायक भाग्यश्री अभ्यंकर, मानसी दीक्षित, ऋषिकेश केलकर और धनंजय पवार, तेलुगु अनुवाद गायिका अपर्णा केलकर, कन्नड़ अनुवाद गायिका अनुष्का आपटे। तकनीकी

सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल और समृद्धि नाइक। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार

0: वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
0: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता से अधिक विकसित, समृद्ध और उज्जवल पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेबनान और इसराइल में इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिणी लेबनान के इसराइली सैनिकों को लौट जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरबिंदो की जयंती पर स्मरण किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अरबिंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। गाल में श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

विविध भारती से लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विविध भारती परिवार की ओर से हमारे सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: शंकर जयकिशन की तर्ज थी शैलेंद्र का लिखा गीत, आपने सुना मुकेश की आवाज में, फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: पुजारी फिल्म का ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।

0: साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
0: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहत नामा।

उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान फूटी जो कहर की नजर उस न...

आप सुन रहे थे शहीद फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया, प्रेम धवन की रचना थी और संगीत भी था प्रेम धवन का ही। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

अपना प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में।

0: जागृति फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में प्रदीप की रचना थी, श्रद्धा और हेमंत कुमार की तर्ज थी ये।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: गंगा की सौगंध फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आरती मुखर्जी, मोहम्मद रफी, अमित कुमार और साथियों की आवाजों में। अनजान के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं, यादों की महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जय हो।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान है।
5: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी

0: प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वीं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। चेन्नई में 80वें स्वाधीनता दिवस पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सेंट जॉर्ज किला पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जनता के लिए लाभकारी योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र के साथ सहयोग बनाए हुए है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने कहा है कि राज्य संतुलित और समावेशी विकास की ओर अग्रसर है। आइजोल में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री लाल दोहोमा ने कहा कि उनकी सरकार आत्मनिर्भर और विकसित मिजोरम बनाने तथा जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यरत है। त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराजा वीर विक्रम महाविद्यालय में विशेष देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदे मातरम इन 1000 वॉयसेज नामक इस कार्यक्रम में 1300 से अधिक विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इसराइली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल शुरू करनी थी। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें भी ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने चायकाल तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। फिलहाल वर्षा के कारण खेल रुका हुआ है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at the Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of Young India in building a Viksit Bharat by 2047. Addressing the nation, Prime Minister Modi said, "This is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort."
1: Aaj jab hum desh ke log वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
0: मिस्टर मोदी

0: तथा एक अन्य के फंसे होने की सूचना। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत व पुनर्वास कार्य तेज। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, सोच और काम की गति को बदलना होगा। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का आह्वान किया।
1: दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के लिए कई परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी।
1: डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया, दुनिया में नौजवानों को नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं। विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है, पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में झंडोत्तोलन किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। राज्यपाल ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक, कदाचार या किसी भी प्रकार की परीक्षा अनियमितता स्वीकार नहीं की जा सकती और ऐसी घटनाएं युवाओं के भविष्य तथा उनके विश्वास को प्रभावित करती है। उन्होंने राज्य सरकार से परीक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा कर कमियों को दूर करने और अनुचित साधनों पर प्रभावी रोक लगाने की अपेक्षा जताई। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।
2: से नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। युवाओं, किसानों तथा वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है।
0: राज्यपाल ने इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया एवं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी मैदान में तिरंगा फहराया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के युवाओं की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और उनके भविष्य को किसी माफिया, भ्रष्टाचार या अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि JPSC, JSSC समेत अन्य भर्ती एजेंसियों के माध्यम से आने वाले समय में बड़ी संख्या में नियुक्तियां समयबद्ध तरीके से की जाएगी और रोजगार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
3: झारखंड के लाखों युवा आज अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए यह हमारा सर्वोच्च जिम्मेदारी है उनकी मेहनत का सम्मान हो और उनकी प्रतिभा को न्याय मिले। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठे हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का विकास प्रभावित होता है। मैं आज झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकाशवाणी रांची के कार्यालय परिसर में उप महानिदेशक DC हेम्ब्रम ने झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर सभी कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।

0: अंसारी और बोकारो के सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी साझा की। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने मुख्य झंडोत्तोलन समारोह स्थल कर्जन ग्राउंड हजारीबाग में झंडोत्तोलन कर देश की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी। मौके पर उन्होंने वीर सपूतों को नमन किया। इधर सिमडेगा, पाकुड़, कोडरमा, सरायकेला समेत कई जिलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्वाचन सदन में झंडोत्तोलन किया। जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ रांची में आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा से पहले छात्रों ने स्टेडियम परिसर में जलेबी बनाई और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड सरकार के साथ जारी गतिरोध पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि इस विधेयक से राज्य को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन से डरी हुई राज्य की वर्तमान सरकार मुद्दे को दूसरी तरफ मोड़ना चाहती है।
1: भारत सरकार ने एक सामितिक निर्णय लेते हुए राज्यों के इंटरेस्ट को खराब किए बिना एक प्रकार का जो है टैक्स रॉयल्टी ये लागू होगा। इससे पूरा देश प्रगतिशील होगा, राष्ट्रीय भावना को मजबूती मिलेगी कि ये जो स्टूडेंट आंदोलन जो अभी चल रहा है इससे सरकार बैकफुट पर है। उस आंदोलन से लोगों का मन भटकाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो है इस मुद्दे को हवा दिया जा रहा है।
0: उत्तराखंड के चामोली जिले में निर्माणाधीन सुरंग में गुरुवार को हुए हादसे में झारखंड के भी 7 श्रमिक प्रभावित हुए हैं। इनमें एक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य के फंसे होने की सूचना है। दुर्घटना में राज्य के कुल 5 श्रमिक घायल हुए हैं, जिनका इलाज निकटवर्ती अस्पतालों में चल रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत और पुनर्वास कार्य तेज कर दिया गया है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,44,000 प्रति किलो है। राज्य में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में जश्न आजादी की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 2047 तक विकसित भारत निर्माण का दोहराया संकल्प। केंद्र सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास युवाओं को मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में फहराया तिरंगा। अपने संबोधनों में युवाओं, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर दिया विशेष जोर। रांची में आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकाली तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस पर बनाई जलेबी, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। और चामोली सुरंग हादसे में झारखंड के 7 श्रमिक प्रभावित, एक की मौत तथा एक अन्य के फंसे होने की सूचना। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत व पुनर्वास कार्य तेज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

फिल्म में जो आपको बताने हैं। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप जरूर बताएं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा देश मेरा है, मेरा स्वाभिमान सम्मान है, आज भी सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। देश के सम्मान को आंच लगे ऐसा होने न दें, मान सम्मान मिला है उसे टिकाना है। देश भक्ति गीत बहुत हैं, लेकिन सुंदर हमारा वंदे मातरम है, हमारी धरोहर है भारत माता का, हमें रक्षण करना है, माँ है तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जय हो, ऐसा ये लिखते हैं। और हमारे कुछ श्रोता जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने देश प्रेम में कुछ न कुछ इबारत या कविता जरूर लिखी होगी, तो कुछ पंक्तियों में जो कविता आपने लिखी है वो आप हमें जरूर भेज सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज हम सुबह से ही देशभक्ति गीत सुन रहे हैं और कुछ ऐसे गाने जो हमारे भीतर साहस जज्बा हौसला मजबूती के साथ जो है इरादे हमारे उत्पन्न करते हैं। और अपने देश भारत के गायक गायिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने लगन और भाव से इन गानों को गाया है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पता नहीं लिखते हैं कि आज तमाम सारे शब्द जो हैं वो इबारत में हैं, बसंती दुल्हन विजय विश्व तिरंगा ब्रह्मा वतन पैगाम तूफान जानो तन और तमाम शब्दों के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि भारत भूमि के वीर सपूतों के बलिदान को शत शत नमन, हजारों बरस आपको सच्ची आंखों देखी कहानियों में गाथाएं आने वाली पीढ़ी को सुनाई जाएगी, सरहद के जांबाज सैनिकों को नमन जो देश की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और सब देशभक्ति गीत मुझे पसंद है, मेरा रंग दे बसंती चोला, इंसान का इंसान से हो भाईचारा और किसी की मुस्कुराहटों पर, तमाम गीतों के बारे में इन्होंने लिखा है। आप ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए जो हमने आपसे पूछा है कविता के बारे में, अपने स्कूल के समय के बारे में, आज आपने किस खास अंदाज में स्वतंत्रता दिवस को मनाया या मना रहे हैं, और क्या कभी आपका सपना रहा भारतीय फौज में जाने का।

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है, शहीद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी मन्ना डे और राजेंद्र भाटिया की आवाजें थी, यानी तीन स्वर थे श्रोताओं और तीन कलाकार भी थे।

प्रदीप की ये रचना आपने सुनी हेमंत कुमार की तर्ज से, जागृति फिल्म का ये गीत था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि भारतीय स्वाभिमान, मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम और त्याग की वो पावन ज्योति है जिसने गुलाम भारत के प्राणों में स्वतंत्रता की अद्भुत और अमिट अलख जगाई थी, ऐसा हमारे ये श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रक्त प्रवाह तप्त और तीव्र हो जाती है ये गाना सुनकर, बहुत हुवी रसपूर्ण गीत है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि न जाने कितने ही वीर शहीद हुए तब जाकर हम आजाद हुए, हंसते हंसते जान लुटा दी, भारत माँ को खुश कर दिया, तिरंगा लहराए हर घर में गूंजे जय हिंद, और अपनी तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है, वंदे मातरम उसी उपन्यास से लिया गया है। जी हाँ, ये सवाल हमने आपसे पूछा था। एक और सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, क्या कभी भारतीय फौज में जाने का सपना आपका रहा, तो आप जरूर हमें बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस बचपन में स्कूल में मनाते थे, वो राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रध्वज को सलामी देना, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का मजा, और पूरे गांव में रैली में निकालना, और फिर खाने को मिश्री चीनी मिलती थी, बहुत ही मजा आता था। आज तो बस मोबाइल पर ही मना लेते हैं, ऐसा नहीं है, आप बाहर निकलकर देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, देश वही और राष्ट्र वही, हमारा तिरंगा वही गुरूर से फैल रहा है। और आपको ये बताना है श्रोताओं कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर जो थे वो मनाए जाते थे और बच्चे उसमें भाग लेते थे, तो क्या आपने भी कभी भाग लिया है ये आप बताएं। और एक सवाल जो हमने आपसे पूछा है, भारतीय फौज में जाने का आपका सपना, ये आपको जरूर बताना है। और स्कूल में क्या क्या मिठाइयाँ मिलती थी, बहुत सारे स्कूल में तो चॉकलेट्स भी मिलती थी, तो आपके यहाँ क्या मिलता था, क्योंकि लड्डू तो बहुत मिलते थे। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज देशभक्ति के गीतों से सराबोर रहेगा और जिन वीरों ने इस देश के लिए बलिदान दिया उनको सादर नमन, और अब हमारी जवाबदारी है कि इसको सहेज कर रखना। एक और श्रोता लिखते हैं कि अभी स्कूल से लौटा हूं, देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस बच्चों के बीच मनाया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी, कितना गौरवशाली दिन है आज, दिलों में जोश है, चारों ओर हवा में नई ऊर्जा, नए प्राण की अनुभूति हो रही है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुल्हन चली, पहन चली, तीन रंग की चोली,

और क्रांति फिल्म के गीत को इन्होंने याद किया है। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत शामिल हैं कार्यक्रम में। वो कौन से कलाकार हैं श्रोताओं जिन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता है?

इस गीत के साथ आपकी क्या यादें हैं श्रोताओ, आप हमसे बता सकते हैं। क्या ये फिल्म आपने देखी है तो उसकी यादें भी आज आप ताजा कर सकते हैं।

0: भारत कुमार किन अभिनेता को कहते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। जी हाँ, मनोज कुमार, बिल्कुल ठीक आपने बताया है श्रोताओं। और फौज का जो सवाल हमने आपसे पूछा था, सपना क्या आपने सजाया था, तो हमें जरूर बताएं। और फौजियों का एक खास ड्रेस कोड होता है श्रोताओं, यानी वर्दी जो उनकी होती है वो आपको कितना प्रोत्साहित करती है देश सेवा के लिए, ये आपको बताना है। एक हमारी श्रोता ने कविता की तरह से लिखा है कि नमन करूं वंदन कर लूं मैं, ये माटी है वीर वीरांगनाओं की, इसे माथे से लगाकर चंदन कर लूं मैं, सदा सर्वदा अटल रहे मेरे भारत की प्रतिष्ठा, केसरिया श्वेत हरित वर्ण से सुशोभित ये तिरंगा प्यारा, गौरवान्वित इन क्षणों में इस ध्वजा को लहराकर अभिनंदन कर लूं मैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। और बड़ी ही सुंदर एक कविता की तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने बनाया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मनोज कुमार पर फिल्माया गया, उपकार फिल्म का बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आजादी का मतलब केवल राजनीतिक रूप से देश को अंग्रेजी या किसी बाहरी शासन के से मुक्त कराना नहीं, इसका वास्तविक अर्थ बहुत ही व्यापक है, जिसमें वैचारिकता, स्वतंत्रता, मानसिक मुक्ति और संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, ताकि हर नागरिक बिना डर के सम्मान से जी सके। जी हाँ, और संविधान का हम सभी को भी जो है बहुत बहुत सम्मान रहे। और एक और श्रोता लिखती हैं कि जब भी इन देशभक्ति गानों को सुनते हैं तो बचपन में वो स्कूल का नेशनल त्यौहार और स्कूल में दिखाई जाने वाली फिल्मों की याद आ जाती है। जी हाँ, स्कूल में तो बहुत सारी फिल्में दिखाई जाती थी श्रोताओं, और स्वतंत्रता को लेकर जो फिल्में बनी हैं हमारे देश में, उनमें सबसे ज्यादा पसंदीदा आपकी कौन सी फिल्म है, ये आप बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि अब की बार हमें मौका मिला भारत भूमि का ताज श्रीनगर कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक और बलिदान स्तंभ पर मेरी धर्मपत्नी और मैंने स्वयं तिरंगा को सलामी दी, तिरंगा वहां फहराया, वंदे मातरम गीत गाया, वहां तैनात सुरक्षा फौजी जवानों को जय हिंद और जय बाबा अमरनाथ कहा, और वीडियोज भी और फोटोज भी हैं इसके। एक और श्रोता ने लिखा है कि स्कूल के समय मूल राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने का सौभाग्य सदैव मुझे प्राप्त रहा, आज भी सुबह पुणे में अपनी सोसाइटी में ध्वजारोहण भाषण में व्यस्त रहा और दिन भर रहेंगे। इस गीत को आप पहचानिए श्रोताओं।
1: करता नहीं

ये रचना किस फिल्म से है और किन की है ये आपको बताना है श्रोताओं। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन के उत्साह का तो कहना ही क्या, उस दिन स्कूल की तरफ जाने वाला रास्ता कुछ अलग ही लगता था, सब कुछ नया धुला धुला, और फिर उस दिन मिलने वाले लड्डुओं का अनोखा स्वाद, क्या फिर कभी जीवन में दुकान से खरीदने पर मिला वो स्वाद। आज के दिन उन वीरों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपनी शहादत से देश की रक्षा में अपने को तज दिया, उन वीर सैनिकों को सलाम जो कड़ी गर्मी, ठिठुरती ठंड और बारिश में सीमा पर प्रहरी बनकर खड़े रहते हैं, सबको मेरा नमन, ऐसा ये लिखती हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आजादी के जश्न में सबसे अधिक कोई इठलाता है तो वो है गोल गोल जो जलेबियां हैं वो, और तनु जलेबी जो है वो जगह जगह, यानी बिहार के बारे में खास इन्होंने लिखा है कि बिकी होगी, ऐसा होता होगा वहां, और सोसाइटी की तरफ से केसरिया रंग वाली घी की जलेबी ही आई। जय भारती इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन भोर की बेला में बचपन में एक अलग ही उमंग लेकर आती थी, सुबह सुबह जल्दी जागना, साफ सुथरे स्कूल ड्रेस को पहनना, सीने पर तिरंगे का बैच लगाना और प्रभात फेरी में गूंजते वंदे मातरम के नारे अपने स्कूल के दोस्तों के साथ लगाते, और आज भी मन को पुरानी यादों से भर देती हैं ये सभी बातें। और बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं कि स्कूल के सहपाठियों के साथ हाथ में राष्ट्रीय झंडा लेकर पूरे जोश और जुनून के साथ देशभक्ति के का नारा लगाना। एक और श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढाई महीने अमेरिका में बिताने के बाद आज इस पावन पर्व पर ही घर वापसी हुई है, तो बहुत बहुत आपको भी बधाई। और हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी बधाइयां दी हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था देशभक्ति कविताएं सुनाता था, मैं 15 अगस्त के पर्व पर स्कूल के हर प्रोग्राम में भाग लेता था, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 15 अगस्त का दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता था, सुबह सुबह स्त्री की हुई स्कूल ड्रेस पहनकर हम हाथ में तिरंगा लिए बेहद उत्साह से

स्कूल पहुंचते प्रभात फेरी में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने का मजा ही अलग था। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान के समय गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था। देशभक्ति गीत, पीटी परेड और अंत में मिलने वाले जो समोसे थे वो बूंदी के लड्डू उस खुशी को दुगना कर देते थे। तो आज आप बताइए कि आज ये जो मिठाइयाँ हैं वो किस तरह से आप खा रहे हैं और क्या यादें हैं आज खास? क्या आज वापस बूंदी के लड्डू और जलेबियां मिली?

लीडर फिल्म का ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है श्रोताओ, ये आपको बताना है, और किन्हीं तीन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आप बताएं, और उनका नाम तो अवश्य बताएं जो 1857 में शहीद हुई और जिन्होंने झांसी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो ये नाम आपको बताने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज स्वतंत्रता दिवस पर बस इतनी सी इच्छा है कि हमारा देश यूं ही प्यारा, भाईचारे और खुशियों से भरा रहे, और छोटे छोटे काम हम अपने देश के लिए करते रहें, थोड़ा और सुंदर इसे बनाएं और कोशिश करते रहें, और सिर्फ सलाम नहीं करना है बल्कि हर दिन अपने हिस्से का प्यार और जिम्मेदारी निभाना है, और देश के लिए अच्छे अच्छे काम करें, कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक आध कमेंट्स की और गुंजाइश बाकी है। तो ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है स्वतंत्रता दिवस की हमारे जितने भी साथी हैं उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मनोज कुमार वाली फिल्म शहीद मुझे स्कूल में दिखाई गई थी जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था। फिल्म का एक दृश्य आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है। जागृति फिल्म के बारे में हमारे कुछ एक श्रोताओं ने जो है वो कमेंट किया है कि बहुत अच्छी फिल्म थी।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उपकार फिल्म बचपन में सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से रोड पर सफेद पर्दा लगाकर दिखाई जाती थी, जिसे सड़क पर बैठकर घर से ही देखा जा सकता था। आज वो सब याद आ रहा है।

एक श्रोता ने प्यारा सा कमेंट लिखा है कि मैं एनसीसी में थी और बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा है, मेरा सपना था मेरे घर के बच्चे फौज में जाएं और मैं अपने पापा के साथ झंडा फहराने जाया करती थी।

शुभता से भरा स्वतंत्रता दिवस का ये खूबसूरत दिन आप सबको मुबारक हो। श्रोताओं, तिरंगे को हम एक बार फिर सलाम करते हैं।

मोहम्मद रफी के गाय फिल्म हकीकत के इस गीत के साथ ही सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, आप सभी को एक बार फिर विविध भारती परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

0: For the first time, national song Vande Mataram was rendered during the Independence Day celebrations at the Red Fort. After the flag hoisting, flower petals were showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. Cadets of Army, Navy and Air Force and My Bharat volunteers participated in the celebrations. Around 5,000 special guests from different walks of life witnessed the celebrations at Red Fort today. These include artisans under PM Vishwakarma scheme, women entrepreneurs under PM Mudra Yojana, street vendors under PM Swanidhi, taxi drivers of Bharat Taxi, urban sanitation workers under Swachh Bharat Mission and youth innovators under National Innovation Programs. With Anand and Dipendra, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: Addressing the nation from the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi described the chanting of Vande Mataram at the Red Fort as a historic moment. He noted that the nation is moving forward with great zeal and new resolutions.
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है? पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: Prime Minister Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold, khadi and village industries production grew by nearly fivefold, electronic manufacturing nearly sevenfold, modern railway coach manufacturing 21-fold and mobile phone manufacturing increased by 33-fold. He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions 100 times.
2: हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
1: Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He said this is a revolutionary step towards making quality education accessible to everyone, led by top teachers. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: The Prime Minister said, government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
2: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying the modern technology depends entirely on critical minerals and India is actively working to secure its position in this sector. He said India has launched the National Critical Minerals Mission and announced the Critical Mineral Corridor. Mr. Modi added that agreements are being signed with several countries and nations around the world are increasingly placing their trust in India. Prime Minister Modi said that India has successfully overcome several unprecedented crises while progressing towards the goal of a developed nation by 2047. He recalled the challenges posed by the COVID-19 pandemic and subsequent conflicts in Ukraine and West Asia. The Prime Minister said every nation

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है।

0: लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहाँ अब समुद्र के भीतर कई संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
0: हमने समुद्र तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, PM मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, PM स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन

0: गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्रध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
1: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गयी जिनमें पीएम सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
2: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
3: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
4: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्ची में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथि एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कुलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक

0: क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: एन दत्ता की तर्ज, राजा मेहदी अली खां के बोल, आशा भोसले और साथियों की आवाजें। फिल्म थी भाई बहन, इसी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय कहा हुजूर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
4: पगड़ी संभालो

दीदी फिल्म का ये दो गाना आपने सुना, आशा भोसले मोहम्मद रफी का गाया, शायद जाह्नवी के बोलों को सुरों में ढाला एन दत्ता ने। फिल्म सीमा का ये गीत है मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। देश आज हर्ष और उल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान श्री मोदी ने शक्ति की सप्तधारा के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत का स्पष्ट रोड मैप रखा।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: झारखंड में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर ओर उमंग और उत्साह दिख रहा है। राज्य में मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद ध्वजारोहण किया। परेड में पहली बार ओडिशा की टुकड़ी भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए राज्य में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। उन्होंने विकसित झारखंड के निर्माण के सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। श्री सोरेन ने कहा कि युवाओं के समग्र विकास पर भी सरकार ध्यान दे रही है। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के उपरांत ध्वजारोहण किया। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य के सभी क्षेत्रों की विकास की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि संथाल परगना के सभी जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

0: स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चायबासा स्थित पुलिस लाइन मैदान में मंत्री दीपक बिरुवा ने झंडोत्तोलन किया, जबकि लोहरदगा के बलदेव साहू स्टेडियम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्किक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी और बोकारो में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में चल रही विकास योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी साझा की। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने कर्जन ग्राउंड हजारीबाग में झंडोत्तोलन किया। इधर सिमडेगा, पाकुड़, कोडरमा, सरायकेला समेत कई जिलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष NS राजा सुब्रमणि, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को लेकर राज्य सरकार के बयान की आलोचना की है। उन्होंने हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस विधेयक से राज्य को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन से डरी हुई राज्य की वर्तमान सरकार मुद्दे को दूसरी तरफ मोड़ना चाहती है।
1: भारत सरकार ने एक सामितिक निर्णय लेते हुए राज्यों के इंटरेस्ट को खराब किए बिना एक प्रकार का जो है टैक्स रॉयल्टी ये लागू होगा। इससे पूरा देश प्रगतिशील होगा, राष्ट्रीय भावना को मजबूती मिलेगी कि ये जो स्टूडेंट आंदोलन जो अभी चल रहा है इससे सरकार बैकफुट पर है। उस आंदोलन से लोगों का मन भटकाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो है इस मुद्दे को हवा दिया जा रहा है।
0: मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

लीजिए, आ चुका है आपके रेडियो सेट पर विविध भारती का कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हवाओं में खास रवानी है, आज दिलों में खुशियों का रंग है और आपके भेजे पत्रों में भी मन चाहे गीत का कुछ ऐसा ही इंद्रधनुषी रंग नजर आ रहा है। ये गीत आपकी पसंद के यकीन मानिए श्रोताओं, रंग भरते हैं हमारे मन चाहे गीत कार्यक्रम में। तो देखते हैं आज हमारे किन श्रोताओं की पसंद मन चाहे गीत कार्यक्रम में झलकती है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये दो गाना था लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। और फरमाइश भेजने वाले हमारे ये श्रोता हैं जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से चंदू हातोले और सीमा हातोले की ये फरमाइश है। हमारे ये श्रोता हैं एम फारूख, पप्पू शेख और अल कुमार अफसानो महजमी मिर्जा, इनकी फरमाइश आई है गणेशपुर गंज डुंडवारा से। और सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा।

निशा चौधरी ने कोलकाता से इस गीत को सुनना चाहा था। महावीर जैन, रूपाली, प्रीति, निधि और परी और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश आई है जैन गली कसूना से, और इस गीत को सुनना चाहते हैं, पुरानी सुनना चाहते थे। पुरानी बस्ती ब्राह्मण पारा से चिंतामणि शुक्ला।

शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया लता मंगेशकर ने। आप सुन रहे थे झुक गया आसमान, फिल्म का गीत शैलेंद्र का, लिखा श्रीनगर से सहारनपुर से ये पत्र है श्रोताओं। उत्तर प्रदेश से सुरेश नारंग, आशु नारंग, प्रतीक और सोनाली ने ये पत्र भेजा है। और धमनी मनोरा से हमारे श्रोता हैं तुलसीराम, संदेश, किरण, मायावती, आदेश और प्रज्वल डेरे की फरमाइश है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने पत्र लिखा है। वरोरा चंद्रपुर से हमारे श्रोता हैं लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत खाडिलकर और चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम और सावित्री की ये फरमाइश आई है धमतरी छत्तीसगढ़ से। और शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा ने इसी गीत को सुनना चाह रहा। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

प्रेम धवन की रचना आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज में फिल्म काबुलीवाला के इस गीत को सुनना चाहा था बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, निखत परवीन, शहनवाज फद्दीन और आफान अब्बासी की फरमाइश थी। बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र, सुभाष, दिगंबर राजेश और शुभांग की फरमाइश ये है। श्यामनगर दुर्ग से प्रदीप खांडेलवाल और नीता खांडेलवाल इस गीत को सुनना चाहते थे। सुलेमान भाई, खलील इकबाल और महबूब ये हमारे श्रोता हैं चलाला कठियावाड़ के, और इसी गीत को सुनना चाहा गुरप्रीत सिंह तंगोरी जसवीर कौर ने, ये हमारे श्रोता हैं तंगोरी, अच्छा ये जगह का नाम है तंगोरी मोहाली पंजाब से हमारे ये श्रोता हैं गुरप्रीत सिंह और जसवीर कौर। और ये एक और इस गीत की फरमाइश है कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर और श्रीमती रजनी मलमकर की फरमाइश।

ये गीत आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, मुकेश की आवाज थी, संबलपुर कांकेर से फागुन राम और ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और ईशिका यादव ने इस गीत को सुनना चाहा था। अलीवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवीराम इनवाती और दामिनी इनवाती की फरमाइश आप सुन रहे थे। जमशेदपुर से चिन्मयी महतो, रेखा महतो ने इस गीत को सुनना चाहा और ये हमारे श्रोता हैं लोहारा बालोद के अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तमूरिया, राधिका प्रभा देवी और ये हमारे श्रोता हैं हिच्छा महासमुंद से, अदालत दास मानसी, शांति ऋचा गायत्री

खानदान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर का गाया, नक्शलालपुरी के बोल थे, खयाम का संगीत था, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, अभिषेक नायडू की फरमाइश आई, इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर ने इस गीत के लिए पत्र लिखा। लोहेड़ी महोबा के हमारे श्रोता हैं उत्तर प्रदेश से, जयपाल यादव, इंद्रपाल, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, देव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव ने इस गीत को सुनना चाहा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं शिवचंद्राकर भगवान और पार्वती राधा चंद्राकर भी यहीं से, और इस गीत के लिए एक और पत्र भेजा अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, शालराज और वंशराज ने। ये हमारे श्रोता हैं गर्ल्स स्कूल रोड बनिहारी से।

चिराग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। रिधौरा से बाबूलाल बुराखड़े, गोकुला बुराखड़े, मंगेश की फरमाइश थी। अकोले महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा नैन्सी, सुमित की फरमाइश थी। लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति और अनल साहू की फरमाइश ये थी। और हमारे डव्वाली हरियाणा के श्रोता हैं जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, मीनू बकोलिया और जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति शुभम और भावना, ये हमारे श्रोता हैं मोटक्का मूर्ति जिला खंडवा के। और इन्हीं गीतों के साथ संपन्न होता है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। भेजते रहिए अपने पत्र श्रोताओं, क्योंकि आपके पत्रों का रहता है हमें इंतजार। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ लेते हैं इजाजत इस कार्यक्रम से। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।

आज की नाट्य तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक लगन। इसके लेखक हैं रोमी सिराज, निर्देशन किया है मुद्रा राक्षस ने। तो आइए सुनते हैं नाटक लगन।

0: भाई भाई शेखर, ये सर्दी तो लगता है फिर से पलट गई है। इतनी ठंड तो दिसंबर में भी नहीं थी।
1: कल रात से रुक रुक कर पानी बरस रहा है, बाहर निकलने की तो हिम्मत ही नहीं पा रही है। मिस्टर निगम, आप एक कॉफी और लेना पसंद करेंगे?
0: क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। लेकिन सुनिए, बस दूध की कंजूसी मत कीजिएगा। आई लाइक कॉफी विद लॉट ऑफ मिल्क, कॉफी और लै।
1: मतलब
0: कॉफी विद मिल्क। आई सेड इट इन फ्रेंच।
1: फ्रेंच। अच्छा एक बात बताइए, ये फ्रेंच पढ़ना छोड़ क्यों दिया आपने?
0: जब मेरी जगह उस थुल थुल बनर्जी को फ्रांस भेजा गया तो फ्रेंच पढ़ना तो छोड़ना ही था।
1: ये लीजिए गर्मा गर्म अपनी कॉफी और ले।
0: थैंक यू वेरी मच। भाई लगता है कि मौसम इस बात से बहुत नाराज है कि आखिर हम इस ठंड को चुपचाप सहने की बजाय

0: कॉफी के प्याले को हथियार बनाने पर क्यों तुले?
1: निगम साहब, प्रकृति ने जब चाहा बेरहमी से कुचला ही है हमें।
0: नो मिस्टर शेखर, हियर यू आर रॉन्ग। कितनी बेरहमी आदमी ने प्रकृति पर दिखाई है तो क्या कम है? जस्ट फॉर सम बक्स वी हैव वर्चुअली रेप्ड एनवायरनमेंट। पहाड़ों पर पूरे के पूरे जंगल काट डाले, पूरे के पूरे जंगल। बरसात का पानी है कि रुकता ही नहीं। बाढ़ आने का एक बड़ा कारण है ये, और उधर जंगलों में पूरा का पूरा मैदान साफ कर दिया। तुम्हें याद है ना वो क्या नाम था उसका, वो सिन्हा के लड़के प्रदीप का केस?
1: हाँ, वो फॉरेस्ट ऑफिसर
0: जी, वो इस सब के खिलाफ था, रोकना चाहता था ये सब। मगर जब एक बार उसने अवैध लट्ठों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा तो जानते हो क्या हुआ? न जाने लट्ठों को बांधने वाली रस्सी कैसे खुल गई और लट्ठे भारी आवाज के साथ उसे रौंदते हुए आगे तक फिसलते चले गए। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, यू नो, ही वॉज किल्ड।
1: पुअर चैप। निगम, ये जो डेजर्ट है ना अफ्रीका का, सहारा, इसके बारे में भी कहते हैं कि यहां पर पहले मीठे पानी का सोता था, हरा भरा जंगल था।
0: ये सब बातें सुन करके तो ऐसा लगता है शेखर, मानो हम सब मेज कुर्सी पर नहीं, हड्डियों को छील कर बनाए गए ढांचे पर बैठे हो।
1: एक बात कहूं, प्रदीप की बीबी सोनाली के साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया सिन्हा ने।
0: अरे भाई, सास ससुर थे नवे, और प्रदीप का मरना तो मानो सोनाली की मर्जी से हुआ।
1: अब तो सोनाली ने शादी कर ली।
0: उसका हस्बैंड एक्सपोर्टर है, अच्छा काम है उसका दिल्ली में, और भाई वो भी बहुत खुश है। लेकिन एक बात बताऊं शेखर, वो प्रदीप को भूल नहीं पाई।
1: प्रदीप ऐसा था ही नहीं जिसे भूला जा सके। अरे कौन है बाहर?
2: कौन है बाहर? ए कौन है बाहर? अरे कौन है बाहर? देखे, मैंने पूछा कौन है भाई, बोलता क्यों नहीं है?
3: अरे हाँ, मैं बाबूजी, बरसात से बचे के खातिर।
2: अरे हद होती है, बरसात से बचना है तो कहीं और जाओ भाई, और साथ में कौन है तुम्हारे?
3: चलो यहाँ से चलो। हजूर, हमारे घर के ही बच्चे हैं।
2: अरे भाग जाओ तुम लोग, चलो भागो यहाँ से।
3: हजूर, तेरी बरसात खत्म हो।
2: मैं कहता हूँ अभी बाहर जाओ, इडियट्स, निकलो बाहर।
0: अरे अरे भाई शेखर, जरा बरसात तक।
1: अरे नहीं यार, तुम समझते नहीं हो, बरामदे में तमाम तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ये लोग। अरे देखो तो, इनकी हिम्मत तो देखो, गेट खोलकर अंदर आ गए।
0: अरे भाई दरअसल ठंड इतनी ज्यादा है बाहर की।
1: करते हो निगम, तुम भी ठंड है तो कहीं और जाएं।
2: अरे सुना नहीं तुम लोगों ने, कुत्ता है घर में, छोड़ो क्या?
3: जाते हैं बाबूजी, जाते हैं, चलो कहीं और।
2: बताओ भला, गेट खोलकर अंदर घुस आए थे? कम से कम आठ तो बच्चे होंगे साथ में, वो क्या पता बच्चे चुराने वाला ही हो।
1: लो अब इन चक्करों में आग ही बुझने लगी, एक दो लकड़ियां और डालनी पड़ेंगी। निगम, ये क्या बजाने लगे तुम?
0: क्यों, उस खांसने वाले आदमी की तरह ये भी तुम्हें नापसंद है क्या?
1: अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हो, वाकई ये तो बड़ा खूबसूरत म्यूजिक है।
0: शेखर, मैं जब मध्य प्रदेश में था तो वहां के आदिवासियों का लोक संगीत टेप किया था मैंने।

0: भाई गाना बजाना इन आदिवासियों के जीवन का सबसे चटक और पक्का रंग है।
1: निगम, इन लोगों को देखकर हमेशा हमेशा मुझे ऐसा लगा मानो आज भी इस देश का एक टुकड़ा आदिम युग में जी रहा हो।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं शेखर, ऐसा नहीं है। हर जगह एक वर्ग जरूर अपनी सोच और मानसिकता की वजह से आदिम युग में ही है। अब सोनाली के सास ससुर सिन्हा को क्या कहोगे तुम? बोलो, विल यू कॉल देम मॉडर्न?
1: नो, कम से कम मैं तो नहीं कहूंगा।
0: अरे ये क्या हुआ?
1: लगता है इस तूफान की वजह से कोई पेड़ गिरा है।
0: हाँ, ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रक या बस खड्डे में गिर गई हो?
1: वैसे आवाज तो बहुत भीषण थी, अब इतनी बारिश और तूफान में जाकर देखना भी असंभव है। अब छोड़ो यार, सुबह पता चल जाएगा।
0: मामला तो कुछ सीरियस लगता है यार।
1: वो कोयला खदान में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई?
0: नहीं नहीं, फॉर गॉड सेक, ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। अरे भाई इंजीनियर मैं हूं, मुझे ही धरा जाएगा।
1: शोर तो बढ़ता ही जा रहा है।
0: वैसे खदान में अगर कुछ होता तो
2: शाम, शाम, शाम,
0: मर गए।
2: शाम, क्या बात है बहादुर? शाम,
0: हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बहादुर? क्या क्या हुआ, क्या बहादुर? अरे भाई बहादुर, इतने घबराए हुए क्यों? कुछ बोलो भी।
3: शाम, शाम, शाम, वो
0: क्या क्या वहाँ वहाँ कहा? अरे भाई रो क्यों रहे हो, हुआ क्या? अरे कुछ बोलोगे भी?
3: शाम, शाम,
0: कहाँ बहादुर?
3: अरे शाम, शाम, कोयला खान में। शाह
0: खान में क्या हुआ? कोयला खान में
3: शाह, कोयला खान में अंदर की दीवार से पानी आ गया साहब।
0: पानी आ गया,
3: मजदूर लोग वहाँ अंदर फंस गया है साहब।
0: कितने होंगे
3: साहब? बहुत साहब, मर गया होगा साहब।
0: अरे मरेंगे तो अब हम
3: क्या बोले साहब?
0: नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुम चलो, मैं भी आता हूँ।
3: चलो जल्दी आ जाओ,
0: चलो वहाँ लोगों से कहो मैं भी फौरन ही पहुँच
3: जाऊँ। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ।
0: गॉड, जो सोचा था वही हुआ।
1: मेरे ख्याल से बरसात की वजह से कोई खान ढह गई है।
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है, हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर किसी दीवार को फाड़ कर खान में घुस आया हो। मेरे ख्याल से तो हम शायद ही अब बचा पाए किसी को। रेनकोट भी नहीं है यहाँ पर।
1: ये लो छाता, मैं भी साथ आऊँ?
0: नहीं नहीं, रहने दो, मैं चलता हूँ। लेकिन इस आधी तूफान में बाहर निकलना, जिसका डर था वही। हजार बार मना किया था कि इस खान में काम बंद कर दो, बंद कर दो, पानी भरने का खतरा है। लेकिन जब तक कोई मरे नहीं, किसी के कानों में जूं तक नहीं देखती। और अब सब मुझे ही नोच डालेंगे। खैर, जाना तो पड़ेगा ही। अरे साहब आ गए।
4: अरे मनोहर, अरे भाई मनोहर, कैसे हुआ ये सब?
5: अरे क्या बताएं साहब, खान नंबर 3 में पानी भर गया है, बगल की दीवार ढह गई, वहीं से जमा पानी अंदर आ गया साहब। अच्छा? हम तो पहले ही कहते थे साहब, दीवार से पानी रिश्ता दिख रहा है, खतरा है।
4: अच्छा ये बताओ, कुल कितने लोग फंसे?
5: अरे साहब होंगे करीब 35।
4: 35?
5: साहब कुछ कीजिए। हाँ साहब कुछ कीजिए, नहीं तो एक नहीं बचेगा अंदर।
4: अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ये बताओ चीफ साहब को खबर की कि नहीं?
5: जी साहब, वो शंकर गया है।
6: अरे निगम साहब, कहाँ गए आपके सेफ्टी मेजर? धान में पानी भर चुका है, कैसे निकालेंगे उन्हें बाहर?
4: देखिए देखिए।

0: में
1: इतनी बार आपसे कह चुका हूँ कि इस खदान के बगल में पानी भरा है, यहाँ पर काम बंद करवाइए। सुना
2: देखिए, वो मेरी भी कुछ मजबूरी
1: है। हमारा एक भी आदमी मरा तो हम दिखाएंगे आपको कि मजदूर की ताकत क्या
2: है। अरे भाई देखिए देखिए, काम बंद करना है न करना चीफ साहब के ऊपर था।
1: अरे तो आप किस लिए है, चीफ कभी नजर आते हैं?
2: भाई देखिए देखिए, मेरी एक बात सुनिए।
1: देखिए क्या देखे, तो रहे 35 लोग फंसे पड़े, उनको निकालने का कोई साधन किया है आपने?
2: मैं पूरी कोशिश करता हूँ।
3: मनोहर जी साहब, भाई लिफ्ट का क्या हाल है, चालू हालत में है कि नहीं?
4: साहब लिफ्ट है तो चालू हालत में, मगर मुसीबत यह है कि मजदूर काफी अंदर फंसे हैं साहब, और आगे की सुरंग काफी नीची है, वहाँ पानी छत तक भर गया है। ऐसे में साहब लिफ्ट तक उन लोगों को कैसे लाएंगे?
3: क्या पानी अभी भी अंदर आ रहा है?
4: जी इस तरफ का पानी तो खान में उतर चुका है, पर लगातार बरसात से अगर मिट्टी पोली पड़ गई तो बगल के ताल का पानी भी अंदर आने लगेगा। साहब तब किसी को भी बचा पाना बहुत मुश्किल होगा।
3: क्या करूं? अच्छा सुनो, कितनी गहराई पर होंगे ये लोग?
4: होंगे यही करीब करीब 450 फीट पर। ये शंकर आ गया साहब।
5: नमस्ते साहब।
3: नमस्ते शंकर, वो तुमने चीफ साहब से बात की कि नहीं?
5: जी चीफ साहब ने कहा है कि आप उनसे बात कर लें।
3: मैं बात कर लूं?
5: जी।
3: अच्छा ठीक है, वो आने के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने? मतलब आ रहे हैं या नहीं?
5: जी नहीं, अभी तो घर ही पर है।
3: अच्छा मनोहर, मनोहर तुम जाओ और 4 जनरेटर और पानी निकलवाने के लिए पंप और पाइप गोदाम से निकलवाओ जल्दी। और सुनो शंकर, तुम भी मनोहर के साथ जाओ, मैं चीफ साहब से फोन पर बात करता हूँ।
1: शायद ऊपर तक जानी चाहिए।
3: कमाल है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और चीफ यहाँ तुरंत आने की बजाय कह रहे हैं बात करो। पता नहीं बात क्या करनी है।
6: लीजिए साहब, चीफ साहब से बात कीजिए।
2: हेलो हेलो सर, सर मैं निगम, मैं यहाँ पर सर खदान नंबर 3 से बोल रहा हूँ। सर खदान में पानी भर गया है, करीब 35 लोग अंदर फंस गए हैं।
7: कब हुआ ये
2: सर? करीब आधा घंटा पहले।
3: सर यहाँ पर लोग बुरी तरह से एजिटेटेड हैं, मुझे तो लगता है कि ऑफिशियल्स का घेराव करने वाले हैं।
7: अंदर फंसे सब जिंदा हैं या मर गए?
3: मर गए सर? मतलब
7: निगम मरने से बेकार का पकड़ा खड़ा होगा।
3: सर वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन आप यहाँ सर तुरंत पहुँच जाइए प्लीज।
7: निगम डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई डोंट थिंक आई नीड एडवाइस फ्रॉम यू।
3: आई एम सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, पर सर मेरा मतलब था इतनी बड़ी दुर्घटना सर, अगर अगर आप होते सर तो
7: निगम ये सब हुआ ही करता है, कोई नई बात नहीं है। उनको निकालने का कोई इंतजाम वगैरह करो। बस कोई मरे नहीं, यू गॉट दैट? आई वोंट बियर एनी कैजुअलिटी निगम।
3: बट सर सर सर, हेलो हेलो हेलो हेलो, नो फोन भी रख दिया। आई वोंट बियर एनी कैजुअलिटी, नॉनसेंस, जैसे जैसे मरना जीना भी मेरे हाथ में है। गॉड, इन लोगों के परिवार वाले भी पहुंच गए लगते हैं। अब तो लगता है पुलिस बुलवानी ही पड़ेगी।
4: सर चीफ साहब आ रहे हैं ना?
3: आने की सोच रहे हैं अभी। जनरेटर वगैरह मिला?
5: सर सर वहाँ गोदाम में ताला पड़ा है।
3: What?
5: जी चौकीदार के पास चाबी है, दो लोगों को भेजा है चौकीदार को बुलाने।
3: ओ, अब ये चौकीदार कहाँ गायब हो गया इस समय?
5: अरे सर बरसात की वजह से शायद अपने क्वार्टर में हो, मनोहर भी गया है उसे लेने।
3: देखो देखो यहाँ तो भीड़ बहुत बढ़ने लगी है, अब तो मुझे लग रहा है कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
5: सर सर मैंने मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी।
3: पुलिस?
5: जी।
3: अच्छा ठीक है, अच्छा चलो हम लोग चलते हैं।
5: चलिए।
8: अरे भेजे,
9: अरे अरे बचा लो मेरे बच्चे को, कोई बचा लो रे, कोई निकालो उसे, मेरे बच्चे को कोई निकालो, मेरे बच्चे को कोई निकालो रे।
2: देखिए देखिए, आप लोग बड़ा शांत रहिए भाई, आप लोग शांत रहिए, देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं।
3: हंगामा शुरू हो गया आखिर, और ये चौकीदार भी चाबी लेकर पता नहीं कहां मर गया है। आने दो, सस्पेंड कर दूंगा बदमाश को। बदमाश अब तक तो काम शुरू भी हो गया होता। इधर ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।
5: वो देखिए साहब।

0: दोनों वगैरह आ गए।
1: अरे भाई मनोहर, वो क्या हुआ, चाबी अभी मिली?
2: अरे साहब, वो चौकीदारी का पता नहीं चल पा रहा है,
1: उसके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक गया साहब।
3: माय गॉड, लेकिन भाई जनरेटर वगैरह तो निकालना ही पड़ेगा ना। मनोहर तुम ऐसा करो, जा करके गोदाम का ताला तोड़ दो।
1: ताला तोड़ दे?
3: हाँ हाँ भाई, तोड़ दो उसे।
1: अरे मगर साहब, गोदाम की बाकी माल की गारंटी?
2: साहब अगर आप साथ चले तो ठीक रहेगा। देखिए साहब, हम तो मामूली कर्मचारी हैं साहब। आप
3: भाई, अब मैं यहाँ देखूँ या वहाँ चलूँ?
2: साहब चले चलिए।
3: अच्छा ठीक है, और चलो चलता हूँ मैं।
4: इन लोगों को तो शोर शराबे के अलावा और कोई काम ही नहीं है।
5: सुनो
4: जी,
5: हथौड़ा वगैरह तो है ना पास में?
6: हाँ साहब है।
4: साहब, ये जो आदमी आपसे बहस कर रहा था ना, लक्ष्मण है, एक नंबर का बदमाश है। दो तीन बार तो साहब इसे कोयला चुराते मैंने खुद पकड़ा।
5: हाँ साहब। अच्छा, तो मुझे बताया क्यों नहीं?
4: अरे क्या बताएं साहब, रोने गिड़गिड़ाने लगता है, और फिर इसके साथ साथ बच्चे, और इसकी जोरू बहुत भली है साहब।
5: क्या, सात बच्चे?
4: जी सात बच्चे। वो जो जूट मिल है ना साहब, भवानीपुर वाली, वही पहले वॉचमैन था, वहीं से निकाला गया है। चुराया होगा कुछ वहां भी। लो शंकर, चलो ऊपर से हथौड़ा निकालो तो भाई।
6: अच्छा
4: आइए साहब। अरे ये तो काफी मोटा ताला है, और कमबख्त ये पाजी चपरासी इसी वक्त गायब होना था इसे। शंकर यार लगाओ तो चोट पे।
6: हाँ।
4: लीजिए लीजिए साहब, टूट गया।
3: अच्छा चलो जल्दी से फाटक तो खोलो।
4: हाँ सर।
0: अरे यहाँ तो बत्ती भी नहीं आ रही, यहाँ तो कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा।
4: हाँ कुछ।
0: अरे मनोहर,
4: हाँ
0: टॉर्च है तुम्हारे पास?
4: टॉर्च मेरे पास तो नहीं है, देखें शायद इस अलमारी में।
0: हाँ ढूंढो। मिल गई, मिल गई, टॉर्च मिल गई।
4: अच्छा साहब, टॉर्च मिल गई।
3: देखो वो रहा जनरेटर। शंकर तुम पाइप उठाओ
4: जी। अच्छा।
3: अगर दो चार लोग और होते तो सहूलियत रहती। शंकर
4: जी,
3: अभी देखो अगर दो तीन लोग और अगर मिल जाए तो जरा सा बुलाओ तो उन्हें।
0: जी अच्छा जी अच्छा। अरे ओ बाबू
3: हर्षोक, जरा जनरेटर और मोटर बाहर निकलवाने में हमारी मदद तो कर दो।
0: आप रहने दें, हम निकाल लेंगे।
3: नहीं नहीं कोई बात नहीं। बाबू बाबू तुम पाइप ले चलो। लगाओ तो
5: ये तो घूमता ही नहीं है।
3: शंकर अरे भाई देखो, ये पहिए के नीचे पत्थर तो हटाओ। मैं भी कहूँ कि जनरेटर आगे खिसक क्यों नहीं रहा। हाँ लगाओ जोर, चलो शाबाश।
5: अरे अब ये नारे क्यों लगने लगे साहब? लगता है चीफ साहब आ गए।
7: लोग तो बेकाबू होते जा रहे हैं। अगर कोई मर गया तब तो लोग मरने माने पुतारू हो जाएंगे।
5: अरे मनोहर जल्दी जल्दी पाइप बिछाओ।
7: चीफ तो आए नहीं लगते।
5: हाँ सर वो तो नहीं आए। तो क्या सर चीफ साहब के आने तक इंतजार करें?
3: नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है। मनोहर तुम मिलकर पाइप नीचे उतारो।
5: जी अच्छा।
3: शंकर चलो जल्दी खींचो पाइप।
5: जी
3: समझो। मनोहर जल्दी करो, पाइप नीचे लटकाओ। और सुनो, कम से कम चार पाइप का इंतजाम और करना होगा।
4: ठीक है सर, मैं और बाबू जाकर इसका इंतजाम करते हैं।
3: शंकर शंकर पाइप नीचे लटकाना शुरू करो।
5: ये लीजिए सर, पाइप छोटा ना पड़ जाए।
3: सुनो कितने कितने फीट नीचे होगा पानी?
0: अरे साहब करीब 400 फुट तो होगा ही।
5: 400 फुट?
0: पाइप 600 फुट लंबा है।
5: अच्छा
0: छोटा नहीं पड़े साहब। अरे बाबू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
6: अरे निगम साहब, जब लोगों की जान चली जाएगी तो
3: अरे भाई, अरे भाई अब क्यों शोर कर रहे हैं आप लोग? देखिए पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
5: शाबाश शाबाश मैंने, और तेजी से नीचे पहुंचाओ।
4: जी सर, जी सर। सर, लगता है पाइप पहुंच गया नीचे तक।
5: वेरी गुड, वेरी गुड। चलो और थोड़ी सी मेहनत और करो।
3: अरे अरे अरे अरे भाई, अरे अरे ये पत्थर कौन देख रहा है?

0: अरे भाई पत्थर क्यों चला रहे हैं आप लोग? अरे पागल हो गए क्या?
1: अरे देखिए बस आधे घंटे की बात है, पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
2: अरे पागल हो गए क्या?
1: जाने कौन भड़का रहा है
2: साहब।
3: मुझे लगता है लोग बढ़ते जाएंगे। आइए इधर आइए।
1: वो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पुलिस ने हल्का सा भी लाठी चार्ज कर दिया तो ये लोग तो और भड़क जाएंगे। सुनो तुम लोग पानी निकालते रहो, मैं जाकर के समझाता हूँ।
3: नहीं साहब, नहीं साहब, अरे हम जाइए साहब।

0: अरे कितना मना किया था साहब को,
1: भीड़ तो जैसे बेकाबू हो गई थी।
0: डॉक्टर कह रहा था खून बहुत निकल गया है।
1: उनके बेहोश होकर गिरने के बाद भी लोग उन्हें पांव से ठोकर मारते रहे। बच जाएं बस, और क्या चाहिए।
0: हम उन्हें चाहकर भी भीड़ से नहीं निकाल पाए।
2: डॉक्टर क्या कह रहा था?
1: सीरियस बता रहा था, सिर पर गहरी चोट है। अरे डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आ रहे हैं।
3: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
4: ये मनोहर और शंकर कौन है?
0: हम हैं डॉक्टर साहब।
4: आप मनोहर हैं?
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, और ये हैं शंकर
4: जी। देखिए उन्हें होश आ रहा है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
0: अच्छा, होश आ गया?
4: मगर ध्यान रहे
0: जी,
4: ज्यादा बात मत कीजिएगा
0: जी। जी जी जी,
4: आइए
0: चलिए जी, आइए आइए।
4: निगम, मिस्टर निगम, देखिए आपसे मिलने कौन आया है।
0: साहब, साहब, नमस्ते साहब।
3: नमस्ते साहब।
0: तबीयत कैसी है साहब?
3: मैं शंकर साहब। शंकर? हाँ साहब।
5: शंकर?
3: हाँ साहब।
5: शंकर
3: जी।
5: मनोहर?
3: हाँ साहब।
5: कौन?
3: यहाँ पर सब ठीक हो गया साहब।
0: हाँ साहब, सब ठीक हो गया।
3: पानी निकाल दिया गया साहब। सब सब आपकी तारीफ कर रहे हैं साहब। वो जिन्होंने आप पर हाथ उठाया था ना साहब, वो भी शर्मिंदा है
0: जी। बहुत शर्मिंदा है साहब।
5: कोई कोई कोई
3: नहीं साहब, कोई नहीं मरा, सभी को बचा लिया गया।
2: हाँ निगम, निगम, ये क्या हो गया है तुम्हें? हाँ निगम, निगम, तुमने तो हद कर दी उन लोगों के लिए अपनी जान।
5: शेखर, तुम समझते नहीं हो शेखर। शेखर, शेखर, तुम समझते नहीं हो शेखर। रामदे में तरह तरह के गुलाब लगा रखे मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ना, सब तोड़ ले जाएंगे।
2: निगम, I am sorry यार, मैंने तो यूं ही कह दिया था। Really, I'm very sorry.
5: ठंड है तो कहीं और जाए ना।
2: निगम,
5: कहीं
4: अब आप लोग इन्हें आराम करने दें, इनकी हालत अच्छी नहीं।
3: ओह गॉड,
4: नर्स, इंजेक्शन।

डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, मेरे साहब को बचा लीजिए, मेरे साहब को बचा लीजिए, डॉक्टर साहब मेरे साहब को बचा लीजिए, मेरे साहब को बचा लीजिए, डॉक्टर साहब मेरे साहब को बचा लीजिए।

अभी आप सुन रहे थे नाटक लगन। इसके लेखक थे रोमी सिराज, निर्देशन किया मुद्रा राक्षस ने। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त।

0: रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। देश आज हर्ष और उल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक के दौरान देश की उपलब्धियों और विकसित भारत निर्माण की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। उन्होंने विकसित भारत के लिए सप्तधारा का रोड मैप भी प्रस्तुत किया। झारखंड में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर ओर उमंग और उत्साह दिख रहा है। राज्य में मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद ध्वजारोहण किया। परेड में पहली बार ओडिशा की टुकड़ी भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए राज्य में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। उन्होंने विकसित झारखंड के निर्माण के सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के उपरांत ध्वजारोहण किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। राज्य के विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा परिसर में राष्ट्रध्वज फहराया। उधर प्रमंडलीय मुख्यालयों में प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला मुख्यालयों में उपायुक्तों ने ध्वजारोहण किया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान सम विश्वविद्यालय में हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। संस्थान के कुलपति अरुण कुमार झा ने रांची के हटिया स्थित कैंपस में ध्वजारोहण किया। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 22वां दिन है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में धरनास्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम देश प्रेम का संदेश देता दिख रहा है। राज्य सरकार तक संदेश पहुंचाने के लिए छात्रों और अभ्यर्थियों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो इस सब में आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस के लिए काम किया है, इवन एक्ट्रेस को भी डांस करवाया है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम हमने पढ़ा था, नाम था अमिताभ बच्चन।
2: बिल्कुल।
0: और उनके साथ कुछ तो बहुत अच्छे डांसर्स हैं जो अच्छा करते हैं, उनके नाम हमने पढ़े थे, पर उन नामों में कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें डांस करते हुए शायद हम देखते भी हैं तो उतना समझ में भी नहीं आता है।

0: उनसे भी आपने डांस करवाया है, सनी देओल हैं, संजय दत्त हैं, या और भी बहुत सारे, अनुपम खेर को भी आपने डांस करवाया है, ये बहुत सारे नाम है, इमरान हाशमी को आपने डांस करवाया है,
1: बोमन ईरानी,
0: बोमन ईरानी को,
1: डैनी डांस
0: जी डैनी को कैसे, मतलब वो तो बड़े,
1: हमारी फिल्म थी ऊंचाई सूरज बड़जात्या जी की,
0: बहुत प्यारी फिल्म,
1: बहुत प्यारी फिल्म,
0: बहुत प्यारी फिल्म है,
1: नेशनल अवार्ड मिला है उनको एज ए डायरेक्टर उस फिल्म पे, एज ए कोरियोग्राफर मेरा नाम भी गया था जो मुझे नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, मुझे रिवॉर्ड मिल गया।
0: नहीं वो फिल्म ही इतनी खूबसूरत है,
1: खूबसूरत फिल्म बनाई थी, जो सोच थी उस फिल्म के पीछे,
0: वो सूरज उस उम्र के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत है,
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये था सवाल कि इनका एक गाना है, ये इतनी उम्र में पहुंच चुके हैं और उस उम्र में ये गाना अपने दोस्त को बर्थडे सेलिब्रेशन में ये गाना कर रहे हैं, जिसका नाम है केटिको, केटिको सॉन्ग। केटिको का मतलब होता है लड़की,
0: अच्छा
1: हाँ, नेपाली
0: नेपाली शब्द
1: लड़की जी, जी। तो फिर वो गाना की और पता चला कि ओ डैनी सर को करना है, डैनी सर को डांस करवाना है, अनुपम जी को डांस
0: जी भाई।
1: अच्छा अब इनका सबका जो लेन देन था अमिताभ बच्चन के साथ था, जो इतने ग्रेसफुल डांसर साबित कर चुके अपने आप को, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी जी, तीनों कह रहे हम कैसे करेंगे फिर उनको रिहर्सल करवाया। मैं एक चीज और करती हूँ, एक अपने असिस्टेंट्स को वो कैरेक्टर बना देती हूँ, उनको कहती हूँ आपको उनकी तरह जीना है,
0: अच्छा
1: रिहर्सल हॉल में हम ये प्रैक्टिस करते हैं। मेरा एक असिस्टेंट अमिताभ बच्चन बन गया, एक डैनी बन गया, एक अनुपम खेर बन गया,
0: इम्प्रोवाइजेशन चलता रहता है।
1: इम्प्रोवाइजेशन, अब आप अपने कैरेक्टर के साथ जब हम एक्टर को करके दिखाएंगे उनको अपना आप दिखना चाहिए उनके अंदर। फिर ये कहानी शुरू हुई और फिर हमने ये गाना किया और बहुत लोगों ने सराहा और शूटिंग के दौरान भी बहुत मजा आया इन दिग्गज कलाकारों को।
0: हम वो मजा जो है ना वो सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी पसंद का दे दें, और तो इस गीत के बाद हम बताएंगे कि मजा क्या आया।
1: तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तरफ से एक मेरा फेमस गाना जो मुझे बहुत पसंद है, अमिताभ बच्चन, डैनी डेंजोंगपा, बोमन ईरानी साहब के साथ, अनुपम खेर जी, केटिको,
0: केटिको, तो ये गाना हम सुनते हैं, लेकिन इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि मजा क्या आया। हमें भी उस मजे को, उस मजे वाली जिंदगी को जीना है।
1: बिल्कुल बताऊंगी, हर एक कैरेक्टर के साथ आपको थोड़ा एक उस सफर पे ले जाऊंगी।
0: जी जी चलिए, तो सुनते हैं ये प्यारा गाना केटिको, और केटिको का मतलब होता है लड़की,
1: बिल्कुल पहाड़ी लड़की,
0: बहुत बढ़िया। चलिए सुनते हैं ये गाना।

गाना तो सुन लिया, बहुत मजा आया, लेकिन इस गाने की जो बात आप हमारे यहाँ कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस वचन को पूरा कीजिए और बताइए कि मजा

0: क्या आया था?
1: तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी से शुरू करते हैं। अमित जी के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया हुआ है।
0: हाँ।
1: मुझे गुड्डी बुलाते थे सेट पर।
0: अच्छा।
1: उन्हें लगता था मैं जय बहादुर जैसी थोड़ी लगती हूँ, तो बोलते थे गुड्डी इधर आओ। मेजर साहब फिल्म का एक गाना था
0: जी,
1: जो हम मैंने असिस्टेंट में किया था या नहीं। तो जब वो इस सेट पे आए
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा हम तो काम कर चुके हैं साथ में, तुम बहुत छोटी सी होती थी, बड़ी हो गई।
0: गुड्डी बड़ी हो गई।
1: तो मैंने याद दिलाया कि सर मैंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी शुरू की तो आपके साथ भी एक गाना किया है। वो रामगोपाल वर्मा का एक गाना था, कम्मो कम्मो।
0: हाँ, एक गाना सुना हुआ है जी।
1: अमिताभ बच्चन और संजय दत्त वगैरह। तो अरे अरे हाँ, तुम्हारे साथ तो काम किया है, बताओ बताओ क्या करना है। मास्टर जी, अब वो मुझे मास्टर जी बुलाने लगे।
0: गुड्डी से मास्टर जी।
1: वो अपनी दो कुर्सी लेकर बैठ जाते थे पैर पे पैर चढ़ाकर। अमिताभ बच्चन जब आपके सामने बैठा हो और आपने उनको करके दिखाना है, आप दिखाओगे मास्टर जी? ऐसे जी सर मैं करके दिखाऊंगी। तो मैं क्या लड़कों का डांस भी कर लेती हूँ, लड़कियों का भी कर लेती हूँ। जब मैं लड़कों का करती हूँ तो उसी अंदाज में करती हूँ, पूरा लड़का बन जाती हूँ। मैं उनको कर दिखाई और वो खड़े हो गया, बोले इस साला, अपने कमर पे हाथ रख दिया और मुझसे कहे हम। तो मैंने कहा मुझे लगा कुछ गलती हो गई, मैं भागती भी गई। सर क्या हुआ, कुछ स्टेप चेंज करना है, कुछ भी आप बताइए जो करना है। मैं नहीं नहीं। फिर वो चलकर आए मेरे साथ सेंटर ऑफ द स्टेज और कहने लगे मैं सर प्लीज बताइए क्या किया मैंने। कुछ तुमने इतना बढ़िया किया, मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। सोचिए उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया। ये है लेजेंड अमिताभ बच्चन,
0: ये बड़प्पन है।
1: आप सिखाओ मुझे। और फिर उन्होंने मुझसे सीखा। अब बोले डैनी और अनुपम तुम सब आ जाओ, देखा तुमने? हाँ सर हम तो रिहर्सल कर रहे हैं 3 दिन से। तो ही सेड हाँ मैंने भी कल रात घर पे रिहर्सल किया था। उन्होंने एक दिन रिहर्सल किया था घर पे। सोचो इस उम्र में उन्होंने घर बुला के हमें रिहर्सल किया
0: जी।
1: और सेट पे आके वो एकदम ऐसे हो गया और मेरा एनर्जी बूस्ट कर दी उन्होंने। कि जब अमिताभ बच्चन आपको ये कहता है, क्योंकि वो उनका तरीका है अपने मास्टर्स को डील करने का, उसी
0: वो परंपरा है।
1: हाँ,
0: गुरु को गुरु बनाने
1: हाँ,
0: की।
1: और वो मुझे मास्टर जी कहते थे। तो सेट पे सब ऐसे परेशान, क्योंकि मास्टर जी आजकल कोई नहीं कहता कोरियोग्राफर्स को, बहुत कम लोग कहते हैं जो जानते हैं कि मास्टर क्यों कहते हैं मास्टर को। फिर उन्होंने एक अपना व्लॉग लिखते हैं वो, उन्होंने अपने व्लॉग में मेरे बारे में लिखा।
0: अच्छा।
1: और उस वक्त लिखा कि एक नन्ही सी बच्ची थी जो मुझे सिखाती थी और आज वो मेरी मास्टर बन गई। और आज वो एक फीमेल जो पूरे सेट को चला रही है, 1000 लोगों के सेट को, और वो मुझे भी ऑर्डर दे रही है। मुझे बहुत पसंद आता है जब ऐसे हमारी हमारी बेटियां यहाँ तक पहुंच जाती है।
0: क्या बात।
1: तब वो मेरे एक असिस्टेंट ने कहा कि सर ने लिखा, और मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई, मैं बहुत रो पड़ी, क्योंकि यही अचीवमेंट होती
0: वो
1: है।
0: चीज आपकी आंखों में अभी भी दिख रही है
1: कि मैं बहुत खुश हो गई। ये थे अमिताभ बच्चन और फिर आते अनुपम खेर जी।
0: हाँ, उनका तो जानना है।
1: उनका जो कॉमिक टाइमिंग है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। वो इतने कमाल के एक्टर है और उसके वो रुला भी देते हैं, वो हंसा भी देते हैं कि
0: पल में
1: पल में वो है। अब उनके लिए जो असिस्टेंट करके दिखा रहा था वो उस दिन आया नहीं, और मेरी एक लड़की असिस्टेंट थी एकता। और मैं अपनी लड़कियों को तैयार करती हूँ कि तुम्हें ये करना है, जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी करोगी। और उसने वो कर लिया। वो आई सेट पे, सर मैं अमित जी का करूँ तो उनका कर। और उस लड़की ने जब अनुपम खेर बन के दिखाया पूरा सेट, ताली बजाया, अनुपम जी सिटी बजाने लगे। बहुत खुश हुआ, बोले बस कमाल, अब मैंने ये करना है। और वो उछल उछल के सेट पे अपने स्टेप करते थे और पूरा सेट। उस गाने में ऐसा होता था कि एक भी जूनियर और एक भी डांसर, जब शॉट खत्म होता है ना तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, डांसर निकल जाते हैं, हाँ सेट में आ जाएंगे, जूनियर निकल, जूनियर्स बाहर ही नहीं जाते थे,
0: सब वहीं रहते
1: वहीं रहते थे। मतलब कि 500 लोग वहीं खड़े हैं, 100-150 डांसर वहीं खड़े हैं और एक्टरों की रिहर्सल चल रही है, और हर बात पे वो हंस भी रहे, वो ताली भी बजा रहे। और बूढ़े डांसर्स थे हमारे पास, हमारे पास 60-70 के डांसर्स भी थे। और वो आगे आते थे और इनके साथ नाचने लग जाते थे। तो एक अलग माहौल था उस सेट
0: जी, जी, जी।
1: और उसके बाद डैनी सर,
0: हाँ उनका भी जाना है, वो तो बड़े अलग टाइप का किरदार है।
1: वो सीधा बोल देते थे आके कि देखो बेटा मैं भूल जाऊंगा, मुझे नहीं पता, तुमने करना है मेरे साथ। तो कैमरा के पास हम लोग उनके लिए डांस करते रहते थे
0: और वो कॉपी करते थे।
1: बोमन ईरानी भी, इतने बड़े कलाकार हैं, उनका भी एक अलग कॉमिक टाइमिंग चल रहा होता था। और वो बोलते थे, उनका एक पोर्शन था जिसमें उन्हें लड़की बनना था, तो मैं जो बोलते थे तुम करके दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें कॉपी करूंगा। और फिर उनको केटी को ये दोनों इनको बोलते हैं, और ये लड़की की तरह अदायगी दिखाते हैं और फिर मैं उनको करके दिखाती। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं ना ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कलाकारों के साथ काम करके, वो शायद मैं इतना बोलूं तो आप इमेजिन नहीं कर पाओ जो हमने जिया है।
0: फिर भी हम कुछ प्रतिशत तक तो पहुंच गए।
1: और फिर हमारे एक प्यारे से शर्मीले से डायरेक्टर साहब जो सूरज बजातिया जी है,
0: बड़ी सॉफ्टली बोलने वाले,
1: बहुत ही सॉफ्ट, और वो जब आते इन सबको देखते।

0: करते भी, और वो मुझे ऐसे गले लगाते हैं, बहुत असर पे हाथ रखते हैं हर बार। बहुत अच्छा किया शबीना। तो ये कहानियां हैं जिनको हम जीते हैं, जिनके साथ हम सीखते हैं कि इस उम्र में भी उनकी जो एनर्जी थी, जो सीखने की, बच्चों की तरह वो उछलते थे रिहर्सल पे। अरे एक बार एक बार एक बार एक बार, अरे मैं गलत कर दिया, अरे मैंने ये, वो भूल जाते थे कि उनकी उम्र क्या है।
1: जी
0: मैं कहती थी सर आराम से, नहीं नहीं करना है। वो जो
1: बहुत मजा आ रहा
0: बचपना,
1: होगा ना
0: बहुत मजा
1: जी,
0: हमने उनसे सीखा कि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती,
1: कलाकार कभी बूढ़ा नहीं
0: बूढ़ा नहीं
1: होता।
0: होता कभी, वो
1: हाँ
0: हमेशा एक छोटा बच्चा ही होता है। तो आप गाना देखिए, आपको पता चले उसमें।
1: हाँ उस गीत को देखने के बाद मजा हमको भी आया था, हम सब
0: या
1: भी उसके साथ थोड़ा डांस किए थे कि जब ये डांस कर सकते
0: तो
1: हैं तो हम
0: हम
1: तो
0: क्यों नहीं
1: कर ही
0: कर
1: नहीं
0: सकते
1: सकते। मैंने आपसे बात कर ली एक्ट्रेसेस के बारे में, यानी अभिनेत्रियों के बारे में, आपने हमारे पुराने जो दिग्गज हैं उन अभिनेताओं के बारे में भी बता दिया। एक अभिनेता है जिनकी हर फिल्म में शबीना का नाम लिखा ही हुआ है, साथ में शुरुआत कहाँ से हुई उनके साथ, और उसके बाद फिर शायद कोई फिल्म बीच में ऐसी थी ही नहीं जिसमें आप नहीं
0: बिल्कुल
1: थी। तो आप समझ गई हैं मैं किसके
0: समझ
1: किस
0: गई,
1: विषय पे बात कर रही हूं, तो मैं चाहती हूं वो विषय आप खुद ही शुरू
0: बिल्कुल
1: करें
0: समझ गई।
1: और हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: सबसे पहले मैं ये बताऊं, आप बात कर रही हैं मेरे, जिसे मैं जिंदगी में, मैं कुछ लोगों को अपना मेंटोर गुरु मानती हूँ
1: जी
0: और मेरी जिंदगी की हर एक सफलता का जरिया मानती हूँ। उनमें अगर सूरज बड़जात्या है तो उसमें एक बड़ा नाम है सलमान खान ऑल्सो,
1: जी
0: जिन्हें मैं भाई बुलाती हूँ
1: जी
0: बहुत मोहब्बत से, और बहुत जब हाथ उठाती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ।
1: जी
0: क्योंकि आज भी जो आप उनका रूप बाहर देखते हैं,
1: जी
0: वो 5% भी नहीं है जो वो दुनिया के लिए करते हैं,
1: जी
0: 5% भी नहीं है। तो सलमान भाई का और मेरा काम जो शुरू हुआ, मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी खामोशी, गणेश हेगड़े के साथ।
1: हाँ, खामोशी द म्यूजिकल जर्नी।
0: यस, जो मैंने पहले कहा आपसे कि स्टेज के बाद जब मैं कोरियोग्राफी में आई, जो मुझे गणेश आचार्य जी ने डांस करते हुए देखा, हमारा एक हॉल होता था मंगला हॉल, वहां पे जो डांस करते हुए देखा वो गणेश हेगड़े साहब के ही गाने का डांस कर रही थी मैं।
1: अच्छा।
0: गणेश हेगड़े की जो पोनी वर्मा, जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, वो उनकी असिस्टेंट होती थी उस वक्त, वो मेरी सीनियर है और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। उनके एग्जाम्स होते थे तो गणेश हेगड़े साहब को ये फिल्म मिली थी खामोशी, जिसमें वो कोरियोग्राफी कर रहे थे, उनकी पहली फिल्म थी, मतलब स्टेज करते थे वो, और
1: जी
0: संजय लीला बंसाली थे और ये एक लड़की असिस्टेंट ढूंढ रहे थे। तो उस फिल्म में पोनी वर्मा जी ने भी एज एन असिस्टेंट किया और फिर मुझे भी मौका मिला
1: जी
0: एक स्केड्यूल करने का,
1: जी
0: और मेरे पहले हीरो थे सलमान खान,
1: ओके
0: जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ये सलमान खान है, क्योंकि उस वक्त घर में टीवी नहीं होता था, हम फिल्में नहीं देख रहे होते थे, हमें इतना पता नहीं था,
1: हाँ,
0: स्कूल में थे हम,
1: आप उस चीज को इतना समझते भी नहीं थे।
0: एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, सीख
1: जी
0: रहे थे, और
1: जी
0: फिर उस फिल्म को करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ठीक है, पर डे इतना पैसा मिलेगा, हम गोवा चले गए।
1: हम पैसे के लिए गए थे।
0: चलो वही मास्टर है जिन्होंने स्टेज पे मेरे साथ किया है,
1: हाँ
0: कंफर्टेबल है, हम मास्टर जी समझते हैं, गणेश हेगड़े साहब,
1: कोई दिक्कत
0: कोई
1: नहीं है,
0: दिक्कत
1: रिस्क
0: नहीं है,
1: नहीं
0: मम्मी ने
1: है।
0: कहा बेटा चलो करते
1: हाँ
0: हैं, देख लो
1: हाँ
0: क्या है। तो हमने गाने उनके साथ में किए और मेरा पहला हीरो सलमान खान, और उसमें नाना पाटेकर जी भी थे और मनीषा कोराला थी, तो वो
1: बहुत
0: मेरी
1: प्यारी
0: पहली,
1: फिल्म है, बहुत
0: बहुत
1: प्यारे
0: प्यारी
1: गाने
0: फिल्म।
1: हैं जी।
0: वो फिल्म के बाद मैं 6 महीना एग्जाम्स के लिए वापस आ गई, मेरे एग्जाम्स हुए और उसके बाद स्टेज करने लगी, और फिर गणेश आचार्य जी के साथ फुल फ्लेज में फिल्म में शूट किया। तो
1: ये
0: वो मेरे,
1: खामोशी में जब सलमान खान को पहली बार आपने डायरेक्ट किया, तो व्हाट यू रियलाइज कि वो बहुत अच्छे डांसर हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं?
0: ही वॉज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी ऑन सेट फॉर मी,
1: हाँ, भारत की बहुत
0: जो
1: सारी लड़कियां 90 के दशक में सलमान खान का पोस्टर अपने कमरे में लगाती थी।
0: जो मुझे, मतलब छोटी है लड़की, तो मुझे बड़े प्यार से बिहेव करते थे कि आ
1: जी
0: जाओ बता दो क्या करना है,
1: जी
0: वो भी बड़े यंग ही थे,
1: हाँ
0: बट वो
1: हाँ
0: बड़े ही सूदिंग पर्सनालिटी थी मेरे लिए
1: जी
0: उस वक्त, कुछ भी, सब कुछ नया था,
1: हाँ
0: कैमरा पहली बार देखा, अच्छा ऐसे शॉट होता है, अच्छा ये कभी नहीं देखा था
1: वही सीख
0: जिंदगी।
1: रहे थे, वही कर रहे
0: तो वो जब
1: थे
0: देख रही थी, मेरे लिए था कि ये तो बड़ा अच्छा हीरो है, बड़े प्यार से बात करता है, मनीषा करोला
1: जी
0: बड़ी अच्छी है, इसको बताना है।
1: जी
0: संजय लीला भंसाली से डर जाती थी मैं सेट पे कई बार,
1: हाँ,
0: नाना पाटेकर जी से डर जाती थी, बट काम
1: बढ़िया
0: करने आए थे, बस इतनी समझ तो थी नहीं।
1: जी।
0: सिर्फ सलमान खान इसलिए याद है कि ही बिहेव रियली वेल विथ मी।
1: हाँ, वो शायद उम्र का भी ऐसा था कि वो आपसे उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे,
0: हाँ, और
1: बहुत
0: वो
1: ज्यादा गैप
0: समझते थे कि,
1: नहीं
0: वो समझ रहे थे कि अच्छे बच्ची नहीं है
1: था।
0: अभी आई है, और उस वक्त वो तो बड़े स्टार हो चुके थे,
1: जी
0: वो उनकी
1: बिल्कुल
0: बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी।
1: जी
0: उसके बाद मैं वापस आ गई, उसके बाद में सलमान भाई का, अब उसके बाद जब मैं कोरियोग्राफर बनी तो काफी वक्त

0: तक मेरी मुलाकात नहीं हो, क्योंकि मैं जब कोरियोग्राफर बनी, एक नियम होता है कि आप जाके सबसे मिलते हो जिनके साथ आपने काम किया है, कि गोविंदा से मिली मैं, सलमान से मिली, क्योंकि मैं उनके असिस्टेंट डेज में कर चुकी थी,
1: तो
0: मतलब
1: बताने तो
0: खामोशी
1: जाना
0: के
1: पड़ेगा।
0: बाद मैं गणेश आचार्य जी के असिस्टेंट बनी, तो सारे गाने सलमान खान के किए मैंने।

0: था मास्टर जी के बाद शबीना है जो अच्छा करती है उनका स्टाइल,
1: हाँ
0: तो तू सिखा। सनी
1: हाँ
0: देओल बोल रहे तू सिखा, संजू बाबा बोल रहे तू सिखा,
1: हाँ
0: गोविंदा जी बोल रहे तू सिखा,
1: हाँ
0: तो लड़कियों को भी सिखा रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, तो एक वो एक चलन आ
1: रेपो बन
0: गया।
1: गया था
0: तो वो
1: इधर।
0: सलमान भाई के साथ रेपो बन गया जब उन्होंने पहली बार मुझे अपनी फिल्म के लिए बुलाया, वो थी दबंग में बुलाया था सबसे पहले,
1: जी
0: पहली दबंग, मस्त मस्त दो
1: जी
0: नैन गाने किया
1: जी
0: था वो, बुलाया। उसके बाद में एक गैप आया, उसके बाद में फिर जय हो में बुलाया उन्होंने, जय हो का गाना जय जय जय हो क्या करियो आजा जय हो करो, तो वो गाना हिट हो गया।
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद में सूरज बड़जात्या जी की फिल्म आई, शायद आगे पीछे दबंग थ्री, सूरज बड़जात्या की फिल्म 2014, उनके साथ काम किया। सूरज जी ने बोला मेरे गाने तो शबीना ही करेगी, फिर सलमान भाई से मुलाकात हुई, तो एक
1: जी
0: रैपो बनता था ही मेरा पहले से उनके साथ, तो आसानियां बढ़ गई क्योंकि ही न्यू दैट ओके शबीना इज देयर, चलो करेगी। वो पिक्चर मेरी जो पहली हिट हुई वो भी सलमान खान की फिल्म थी, जो प्रेम रतन धन पायो,
1: जी बिल्कुल
0: उसके पहले आशिक बनाया आपने,
1: जी
0: उसके पहले नाच आई मेरी, काफी फिल्में चली, मुझे कभी किसी के पास जाके काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। माधुरी दीक्षित फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री का चलन था,
1: हाँ,
0: मुझे बुलाने
1: डांस बहुत
0: लगे
1: ज्यादा था
0: बहुत ज्यादा,
1: उसमें।
0: रामगोपाल वर्मा अपनी सारी फिल्में मुझे दे रहे हैं, तो ये चलता रहा चलता रहा। फिर सलमान भाई की फिल्म आई, पहला गाना मेरा हिट हो गया आशिक बनाया, उसके बाद सलमान भाई का गाना जिसने मुझे नाम दिया, जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी डीवीडी नहीं भेज रहे हो, पहले डीवीडी भेजते थे प्रोड्यूसर के पास के, सर देखिए मैंने ये काम किया है,
1: अब इसके बाद डीवीडी नहीं भेजनी
0: अब
1: पड़ी।
0: मैं प्रेम रतन के बाद डीवीडी नहीं भेजना पड़ा, इंडस्ट्री में सबको पता चल गया शबीना खान कौन है, बिकॉज मेरा वो गाना प्रेम रतन धन पायो हिट हुआ, जबकि वो गाना सोनम कपूर की स्टेप्स थी, लेकिन सलमान खान हर जगह जा रहे थे और वो स्टेप कर रहे थे सोनम के साथ। ये पहली बार हुआ था
1: हाँ
0: कि सलमान भाई बोलते थे अरे लड़की का स्टेप मुझसे करा रहे हर जगह, ही यूज टू डू ऑल्सो बिकॉज ही वॉज डूइंग इट, वो हिट, वो
1: ऑरा क्रिएट हो गया था
0: ऑरा
1: उस चीज
0: क्रिएट हो गया,
1: का।
0: और वो स्टेप आज भी यूट्यूब में वो गाना
1: हाँ,
0: सबसे ज्यादा
1: कई
0: सीन
1: लोग
0: है,
1: रील्स भी उस पे बहुत
0: उसी पे
1: बनाते
0: रील
1: हैं।
0: बनी,
1: हाँ
0: दब स्मैशेस
1: हाँ
0: बने, मैं हिट हो गई,
1: जी
0: मेरा करियर चल पड़ा, तो वो सलमान खान थे। फिर दबंग, हुड़ हुड़ दबंग जब आया,
1: हाँ
0: उन्होंने जो
1: वो
0: मेरे,
1: पैंट की जेब में उंगली डाल के
0: वो
1: कमर
0: तो गणेश
1: हिलाना
0: आचार्य जी ने किया
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: दो गाने उन्होंने किए, जब तीसरी दबंग का आया तो उन्होंने मुझे
1: अच्छा
0: दिया ये गाना कि
1: अच्छा
0: शबीना करेगी तुम करो ये गाना,
1: अरे वाह,
0: फिर वो स्लीव्स के साथ में मोमेंट हिट हुआ।
1: अच्छा
0: तो फिर उन्होंने एक चलन हो गया कि वो, उन्होंने कभी मुझे फीमेल कोरियोग्राफर की तरह देखा ही नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे एक सेंसिबल कोरियोग्राफर देखा,
1: मतलब मेल फीमेल से परे
0: परे
1: एक कोरियोग्राफर।
0: एक कोरियोग्राफर है जो जज्बात समझती है, जो फैमिली बैकग्राउंड से आती है ये फैमिली समझती है। तो मुझे ट्यूबलाइट का गाना दिया उठा के, कबीर खान को बोला ये गाना तो नाच मेरी जान शबीना करेगी उसको दो, तो वो मुझे हमेशा एक ऐसा गाना अपनी फिल्मों में दे देते हैं बुला के जो उन्हें लगता है शबीना करेगी।
1: तो ये बहुत अच्छी बात है ना, साथ
0: बिल्कुल
1: लेके चल रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: और साथ सिर्फ इसलिए नहीं लेके चल रहे कि करना है, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि
0: कि ही नोज
1: कुबत है,
0: यस,
1: काबिलियत है।
0: काबिलियत को देख के उन्होंने मुझे बुलाया, राधे में उन्होंने गाना दिया,
1: जी।
0: उसके बाद
1: राधे का कौन सा गाना था आपका?
0: जो परदेसिया सॉन्ग का रिमिक था जैकलिन का और सलमान
1: हाँ
0: खान
1: हाँ
0: का,
1: हाँ हाँ वो बहुत खूबसूरत है
0: वो
1: जी
0: गाना मुझे दिया बुला के, तो एक
1: जी
0: बेस्ट गाना वो मुझे बुला के दे देते हैं। और उन्हीं की वजह से आई थिंक जब एक मेगा स्टार आप पे भरोसा करता है ना तो आपके लिए आसानियां हो जाती है,
1: जी
0: बाकी लोगों को लगता है और सलमान खान की कोरियोग्राफर, तो वो एक चलन चल गया, मुझे बोलने लगे सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान
1: हाँ,
0: की कोरियोग्राफर।
1: तो ये गीत जो आपने और सलमान खान ने साथ में किया है, यानी शबीना खान और सलमान खान का साथ का गाना है, वो कोई एक गीत जो आप कहेंगे वो हम हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहेंगे, आपकी पसंद का, आपकी ख्वाहिश से?
0: सलमान भाई का एक हमारा साथ में किया हुआ गाना जो मुझे बहुत पसंद है, सभी गाने पसंद है मुझे वैसे, नाच मेरी जान एक गाना है, बहुत पैपी नंबर है,

0: श्रोता हमारे साथ हैं शबीना खान, जो कि एक बहुत बहुत बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। और अगर मैं कहूं कि आज तक की जो लिस्ट बनी है, ऐसा कोई अभिनेता या अभिनेत्री या कोई दिग्दर्शक या कोई निर्देशक कोई नहीं बचा है जिसके साथ शबीना खान ने काम नहीं किया है, और जो भी किया है उम्दा किया है, परफेक्ट किया है और अब तक का बेस्ट किया है। हमने जब तक इनके बारे में इनके जाना या इनसे बात की है, जो अब तक उस सब में इतने सारे गाने आए हैं और हर गाना अद्भुत है, ऐसा लगता है कि वो अपने उत्कृष्टतम उत्कृष्ट पर बैठा हुआ है। तो उन्हीं में से एक और फिल्म आई थी जिसने अपना नाम पूरी दुनिया में बना लिया था, और उस फिल्म में हैंडपंप भी उखाड़ा गया, भारत के बारे में भी बात की गई। और ये फिल्म है ना, जो अपना एक कहा जाता ना, एक स्थान बना चुकी है, और कई सालों बाद वापस वो फिल्म आती है। और शायद जब ये फिल्म आई थी तब शबीना खान बहुत छोटी सी रही होंगी, और जब ये दोबारा ये फिल्म आई तब शबीना खान जो है वो कोरियोग्राफर बन चुकी हैं, और ये फिल्म इनके हाथ में आती है। फिल्म का नाम है गदर 2। ये फिल्म कैसे आपके हाथ में आई, और जो गाना अपने आप को पहले ही स्थापित कर चुका है, उस गाने को फिर से नए कलवर के साथ प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस गाने को हमने देखा था एक स्कूल के बड़े से ऑडिटोरियम में मंच पे नाचते हुए। अब उस गाने को आप सड़क पे, यानी एक स्थान पे, एक आंगन में नृत्य करवा रही हैं, तो थोड़ा सा अगर वहां तक हमें ले जाए तो।
1: सो पहले सवाल का जवाब ये है कि गदर, हाँ, जब गदर रिलीज हुई थी 2020-21 में, तब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी गणेश मास्टर जी के साथ।
0: जी,
1: इस फिल्म को किया था जय बोराडे साहब ने। जय बोराडे हमारे बहुत फेमस कोरियोग्राफर, जो सूरज बरजाते की सारी फिल्म,
0: बहुत बड़े कोरियोग्राफर,
1: बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे।
0: हम साथ साथ हैं भी उनकी,
1: हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, उनकी लास्ट फिल्म थी विवाह,
0: हाँ,
1: उसके बाद मैंने ज्वाइन किया सूरज बरजाते,
0: विवाह है, सभी विवाह के पास आया था जी।
1: उसके बाद से मैंने राजश्री प्रोडक्शन को ज्वाइन किया। तो जब गदर 2 कैसे आई, अनिल शर्मा जी जो हमारे बहुत ही दिग्गज, बहुत ही माने हुए डायरेक्टर है, उनकी बेटी की एक फिल्म आई थी जीनियस, उसमें उन्होंने मुझे दो गाने दिए थे।
0: अच्छा।
1: जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि बड़ी फिल्म करेंगे साथ में।
0: अच्छा।
1: और जब गदर फिल्म आई तब उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहा ये फिल्म तुमने करनी है।
0: अच्छा।
1: तो उन्हें लगा था दो तीन गाने देंगे, मैंने कहा सर मैं पूरी फिल्म करूंगी, अब पूरी फिल्म एक ही फिल्म करूंगी। ऊंचाई की शूटिंग चल रही थी मेरी, आई सेड ऊंचाई पूरी फिल्म मैंने अकेले खुद की है, ये फिल्म भी पूरी करने दो मुझे, और मेरा पूरा वक्त आपका, आप जब बुलाओगे सुबह शाम 3 बजे रात को 4 बजे सुबह जब बुलाओगे मैं आपके साथ करूंगी, पूरी फिल्म करूंगी।
0: मतलब उतने दिनों में मैं कुछ और नहीं,
1: कुछ और काम नहीं करूंगी, क्योंकि इस फिल्म की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी, 22 साल बाद रिलीज हो रही है, यू नो। और चैलेंज ये था इस फिल्म के साथ कि 22 साल के बाद आज की ऑडियंस सोशल मीडिया को लेकर बहुत अलग है। अगर 40% पुराने लोग ये फिल्म देखेंगे तो 60% आज के लोग देखेंगे, जो उस वक्त पैदा हुए होंगे और आज 22 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, या 27-28 साल के होंगे, तो ये ऑडियंस तो यही मेन है अपनी, 65-70%। तो मैंने काम तो बहुत मेहनत की इस फिल्म पे, एक एक गाने को तराशा, और सवाल ये था कि आज की ऑडियंस को, पिक्चर बनी है हमारी 1970

0: के ऊपर,
1: बहुत पुराने समय की बात है,
0: 70s के ऊपर फिल्म बनी है, अंदाज 70s का है, कैरेक्टर 70s के, गाने 70s के अंदाज में,
1: खुशबू उसी समय की है,
0: सब कुछ उसी समय का, लेकिन दिखाना आज की ऑडियंस को है, और पुरानी ऑडियंस भी डिसअपॉइंट नहीं हो कि अरे यार ये क्या कर दिया नहीं कोरियोग्राफर ने,
1: हाँ हमारा पुराना वाला अच्छा था।
0: तो ये जो ख्याल थे ना, ये मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, और मैंने इतनी मेहनत की इस फिल्म को लेके कि हर एक गाना मोती के दाने की तरह निकल कर आए। मैं निकला गड्डी लेके, जो आपने कहा आंगन के अंदर किया, वही चैलेंज था। सनी देओल उस वक्त, सनी देओल इस वक्त,
1: उम्र का भी अंतर
0: है, उम्र का भी अंतर है, लेकिन क्योंकि सनी सर के साथ मैंने असिस्टेंट डेज में काम किया है, हमारी एक रेपो थी, और मैंने उनसे कहा कि सर ये सिग्नेचर मूवमेंट, सबने कहा सिग्नेचर मूवमेंट अलग करते अलग करते अलग करते हैं, सर नहीं सर सिग्नेचर मूवमेंट वो मत करे, कोई और कोरियोग्राफर बोलता मैं करता हूँ मेरी स्टेप, यहाँ पे आपकी अना, आपका ईगो नहीं आना चाहिए। अच्छा जय मास्टर जी को एक मुझे श्रद्धांजलि देनी है, उन्होंने जो बनाया था स्टेप हाथ का, गड्डी लेके वही स्टेप रखेंगे, उनके बेटे का जो रोल अभिनय निभा रहे थे उत्कर्ष शर्मा, जो अनिल शर्मा जी के बेटे, उनको मैंने अलग स्टेप दिया। मैंने कहा कि आप वो 70s का बच्चा है, तो उनको मैंने स्टेप दिया राजेश खन्ना वाला, क्योंकि वो बच्चा होता है राजेश खन्ना का और उसका दीवाना, और फिर वहां जाके ये गाना बना। और अगर आप पूरी फिल्म के गाने देखो, उसमें दो गाने नए एक्ट कलाकारों के साथ निभाए गए थे जो सबसे बड़े हिट हुए, एक गाना था चलते रे इश्क में,
1: चलते रे इश्क में बहुत पसंद किया यूथ ने,
0: उसमें ये दिखाया है कि वो लड़की पाकिस्तान की मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखती है, ये बच्चा हिंदुस्तान से जाता है, उनका अफेयर होता है, और लड़की पाकिस्तान की ईद के दिन डांस कर रही है, तो हमने चिलमन बनवाई क्योंकि मुझे पता है ना
1: बहुत खूबसूरत सेट था वो,
0: चिलमन बनवा के चिलमन के अंदर वो लड़कियों के साथ नाच रही है, चिलमन के बाहर लोग ईद, और पाकिस्तान के अंदर ये गाना हो रहा है ऐसा दिखाया है, और हिंदुस्तान की ऑडियंस उसको देख रही है, तो वो गाना इतना सुपरहिट हुआ कि लोग आज गदर के बाद फौरन चलते रे इश्क में कहते हैं गाना, इतना खूबसूरत। और उत्कर्ष शर्मा का एक गाना हिट हुआ था जो झूम झूम गाना था, तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, पूरी दुनिया के लोगों ने, तो मैं ये कह रही हूँ फिर से कि मेहनत ही मेहनत, कंसिस्टेंसी, लगन, और बार बार एक चीज को सोचना, करते रहना, रातों की नींद गवाना, बेचैन रहने से ही आप गदर 2 जैसी फिल्म को दर्शा सकते हो।
1: फिर से वही बात, मेहनत तो करनी पड़ेगी,
0: करनी पड़ेगी,
1: बिना
0: आपको
1: मेहनत के
0: हर बार साबित करना पड़ेगा, आप बैठ नहीं सकते पीछे।
1: यानी कि आपने इतनी बड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट दे दी, बहुत सारे अवार्ड्स आपने ले लिए, लेकिन जब गदर 2 सामने आई, ऊंचाई में इतने सारे बुजुर्ग वय लोगों को भी आपने काम करवा लिया, यानी वो बुजुर्ग वय नहीं बोलना चाहिए, वो दिग्गज बोलना चाहिए,
0: दिग्गज
1: भारत के वो सबसे बढ़िया कोहिनूर हैं,
0: कोहिनूर
1: आपने काम करवा लिया, और उसके बाद क्योंकि इन्होंने उस समय जो काम करके दिया है 70-60 से लेके 80-90 के दशक तक, और उसके बाद भी वो करते ही जा रहे हैं, पर वो जो किया है वो तो खैर बात ही अलग है, और उनसे काम कराने के बाद गदर 2 में भी वही पसीना बहा रहे हो, एसी कमरे में बैठे हो लेकिन पसीना तो आ रहा है,
0: बिल्कुल।
1: तो हमें मेहनत करनी चाहिए, ये बात, ये सीख हमारे छोटे छोटे जो श्रोता
0: बिल्कुल
1: हैं उन तक बात पहुंचनी चाहिए और पहुंचती है। इतने सारे लोगों के साथ डांस किया, इतने सारे लोगों को काम कराया, राजपाल यादव एक नाम आता है,
0: मेरा पहला हीरो। मेरी पहली फिल्म का पहला हीरो।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं हीरो तो राजपाल यादव ही थे
1: जी,
0: तो मैं तो उनके जिंदगी भर अभी भी मिलती हूँ तो बोलती हूँ मेरा पहला हीरो।
1: हाँ, तो हमारा प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है कि वो तो कॉमिक साइड में जाते हैं, कॉमिक साइड को डांस में या कोरियोग्राफी में कैसे कन्वर्ट कर पाते हो, क्योंकि कोरियोग्राफी में भी वो जो कॉमिक टाइमिंग है या वो जो मजाक मस्ती है या वो जो हल्की सी एक छोटी सी बात ही होती है, राजपाल यादव के साथ जो उनका अभिनय है वो एक हल्का सा किरदार थोड़ा सा घूमता है, उतने में भी जनता जो है जो देख रही होती है वो हंसना शुरू कर देती है।
0: बिल्कुल,
1: तो उनके साथ कैसे आपने काम किया?
0: मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग एन एक्टर माई सेल्फ, मैंने एक्टिंग सीखी है
1: जी,
0: तो सबसे मुश्किल काम होता है हंसाना लोगों को,
1: रुलाना आसान है,
0: हंसाना बहुत मुश्किल है, और वही काम मैंने कहा ना, जैसे ऊंचाई में केटी को मैं अनुपम खेर के बारे में कह रही थी मैं, वैसे ही राजपाल यादव है, जितना बंदा उछल उछल के हंसाता है वो उतना रुला भी देता है आपको एक मिनट के अंदर, और जिसके अंदर ये एक रिदम है, जिसके अंदर कॉमिक टाइमिंग होती है उसके अंदर रिदम होता है, तो डांस करना तो बाएं हाथ का खेल है।
1: अच्छा,
0: उसके बाद मैंने उनके 2-3 गाने किए जिनमें उन्हें नचाया है, और वो बराबर टाइमिंग पर डांस करते हैं।
1: क्या बात
0: है, बिल्कुल।
1: तो ऐसे बढ़िया बेहतर

0: अभिनेता अभिनेत्रियां भी हमारे यहाँ पे हैं। आपने कुछ साउथ के डांसर्स के साथ भी काम किया,
1: काफी काम किया
0: है ना,
1: साउथ में।
0: साउथ के अभिनेताओं के साथ, अभिनेत्रियों के साथ काम किया, तो क्या अंतर है बॉलीवुड और दक्षिण भारत की काम में?
1: जिस वक्त मैंने काम किया, मैं बात कर रही हूँ 2012-13 की, मैं इतना काम करती थी वहां पर कि मुझे मुंबई आने का वक्त नहीं मिलता था।
0: जी
1: तमन्ना, कार्तिक, सूर्या, पवन कल्याण, ऐसे कई नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया। एक चीज जो मैं उस वक्त वहां देखती थी, डिसिप्लिन। अगर वो 7 बजे की शिफ्ट रखते हैं तो 7 बजे पहला शॉट होना चाहिए। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ।
0: 7 बजे रखते हैं तो 7 बजे शॉट होता है, मतलब उसके पहले लोग आते हैं।
1: उसके पहले 6 बजे सब आके सेटअप करके रेडी होके एक्टर शुड टच द सेट एट
0: मतलब
1: 7।
0: एक्टर 5 बजे आके मेकअप करा के तैयार होकर बैठा होगा।
1: अगर आप वो डिसिप्लिन देखा है कि मैंने डायरेक्टर को पैकअप करते हुए देख लिया कि एक एक्टर सिर्फ 10 मिनट लेट आया तो ही कॉल्ड मी असिस्टेंट के साथ, मैंने एक्टर के साथ रिहर्सल किया, शॉट दिखाया डायरेक्टर को और डीओपी को, शॉट की रिहर्सल हो गई, बस टेक बोलने वाले है, हीरोइन ने गाउन उतारा, बोला पैकअप। बड़ी हीरोइन, मैं नाम नहीं लूं, क्यों? ही सेड अम्मा यू एंटर्ड इन द सेट एट 7:10, सो टुमारो वी रोल दिस एट 7।
0: 7 मीन 7
1: 7 पैकअप। शी स्टार्टेड क्राइंग, ही सेड नो प्रॉब्लम। सो ये एक, इसे आप रूडनेस नहीं बोलते हो, इसको कहते हो कि आपको कभी कभी जब चीजें सीधी करनी होती है तो थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाना होता है। वही किया। नेक्स्ट डे 6:30-7 में लड़की बैठी हुई थी वहां पे, जबकि उसकी गलती उस दिन भी नहीं थी, लेकिन ये एक तरीका है उनका काम करने का। लेकिन अब हमारे यहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि हम वक्त पे काम शुरू कर देते हैं।
0: अच्छा, तो
1: और कहते हैं ना कुछ एक्टर बहुत लेट आते हैं,
0: हाँ,
1: बट लोगों को ये नहीं पता कि वो लेट आने के बाद भी 8 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म करके देके निकल जाते हैं।
0: निकल भी जाते हैं क्योंकि वो इतना क्विक है।
1: एब्सोल्युटली।
0: हाँ, तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो एक गाना और बनता है, क्योंकि हम तो इंफोटेनमेंट वाले हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
1: मेरा बहुत फेवरेट गाना गदर 2 का, चल तेरे इश्क में खो जाते हैं।
0: क्या बढ़िया, बहुत खूबसूरत सा गीत है, तो ये गीत हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और हम आपके काम के इश्क में खो जाते हैं उतनी देर के लिए। बहुत खूबसूरत काम किया शबीना जी, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं इस गीत की तरफ।

0: हालांकि शबीना जी, हमने आपसे बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी देर में आपको समेट पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने आपसे बहुत सारी बातें कर लिया, ऐसा हम मान रहे हैं खुद से। हालांकि हम भी जानते हैं कि अभी बहुत सारे गानों की बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपसे सुनी जा सकती हैं, और रोचक तथ्य और रोचक बातें आपकी सुनने को मिलेंगी, और हम चाहेंगे कि सुने भी एक आध। लेकिन उसके पहले एक बात बनती है कि शमीना खान यानी छोटी सी 7वीं 8वीं की लड़की आई थी इंडस्ट्री में, उसने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी बन गई। अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले, फिल्म फेयर मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो हम चाहते हैं कि वो अवार्ड्स जब आप ले रहे थे, कैसा लग रहा था? कौन था जो आंखों के सामने आया था कि यार थैंक यू, तेरे कारण मुझे ये मिला है?
1: मेरी अम्मी, मुझे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला
0: जी।
1: तो मैं मुंबई में थी नहीं। प्रेम रतन धन पायो के लिए मुझे इनविटेशन आया, मैं मुंबई में थी नहीं। तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी चल नहीं पाती थी उस वक्त, उनका बैक का ऑपरेशन हुआ था।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा, अम्मी तुमको जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा अवार्ड है। क्योंकि जिंदगी भर से मैंने सोच के रखा था कि जब भी अवार्ड मिलेगा मैं अकेले नहीं जाऊंगी स्टेज पर,
0: माँ को साथ लेके
1: अम्मी को
0: जाएंगे
1: ले जाऊंगी, क्योंकि ये उनका अवार्ड है। हर एक
0: जी।
1: कदम चली मैं थी,
0: जी।
1: बट दिल और दिमाग उनका था। मुझे इतनी तरीके से सलीके से पालना, इस तरह बनाना, इतना सोच समझ के चलने वाली लड़की, बचपन में हमें क्या पता होता है? कुछ नहीं पता होता है। हमारी माएं होती है जो हमें
0: और उस जनरेशन के बच्चों को कुछ नहीं पता होता था।
1: हमारे पास टीवी नहीं, रेडियो
0: हाँ
1: नहीं, ये
0: जी।
1: हम सिर्फ अपनी माँ को सुनते थे,
0: हाँ
1: उसको देखते थे, उस जैसे बनना चाहते थे। बाल तुम्हारे लंबे हैं, मुझे भी बाल लंबे चाहिए, तुम ऐसी दे। मेरी माँ मेरी हीरोइन है, मेरा बाप मेरा हीरो है, हम यही थे ना उस
0: कई बार
1: जनरेशन के
0: ऐसा होता था,
1: बच्चे।
0: पूछते थे बड़े होके क्या बनना है, तो मम्मी बनना है।
1: मम्मी बनना है या टीचर बनना है।
0: जी
1: हमारी हमारी
0: जी
1: टीचर है भी हमारी बहुत बड़ी,
0: बिल्कुल,
1: आजकल वक्त बदल गया है, लेकिन हमारी टीचर है। हमारी पहली बात
0: रोल
1: होती थी,
0: मॉडल
1: हम
0: होती
1: टीचर
0: थी।
1: रोल मॉडल होती थी हमारी टीचर,
0: बिल्कुल।
1: हमारे सर, हमारे टीचर, हमारे ट्यूशन टीचर, यही होता था।
0: जी।
1: तो मैंने हमेशा सोचा था अम्मी को ले जाऊंगी और उनके हाथ में अवार्ड दूंगी और फिर उनको बोलूंगी मुझे अवार्ड दे। तो कई बार ऐसा भी हुआ, मैं पहुंची और मुझे अवार्ड नहीं मिला, किसी और को मिल गया। मैं स्पीच रेडी करके
0: नॉमिनेशंस में
1: गई,
0: आप गए।
1: नॉमिनेशंस में मैं थी, तो जब ये अवार्ड मिला, देखो कुदरत ने भी मेरे मैनिफेस्टेशन को कैसे हाँ किया। कहते ना, हम जो मानते हैं वो ही मिलता है कुदरत
0: मिलता है।
1: से। मैं मुंबई में हूँ नहीं, बैंगलोर में शूट कर रही हूँ, फोन आया आपको अवार्ड मिल रहा है, वो भी ओरिजिनल दादा साहब फाल्के अवार्ड।
0: क्या बात है।
1: या तो अम्मी को फोन, अम्मी बोले बेटा मैं जाने पर नहीं। मैंने अपने भाई को फोन किया, ऐसे बेटा व्हील चेयर पर ले जाना अम्मी को,
0: पर लेके
1: बट
0: जाना।
1: लेकर जाना, मैं चाहती हूँ अम्मी जाए। मेरी अम्मी गई, उन्होंने वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लिया और वहां पे उन्होंने बोला मेरी बेटी के लिए मैं ले रही हूँ। वो अवार्ड मेरी माँ को मिला है, कम से मेरा अवार्ड नहीं है वो।
0: जी
1: तो उस अवार्ड को मैं बहुत अलग नजर से देखती हूँ।
0: जी
1: उसके बाद पटाखा फिल्म के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन,
0: जी
1: उसके बाद मराठी फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड, मैंने मराठी फिल्में भी की
0: जी
1: है। उसके बाद बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ, कई सारे अवार्ड्स मिले।
0: अब अलमारियां भर चुकी हैं।
1: हाँ काफी कुछ काफी कुछ। अब तो खैर बहुत सारे अवार्ड्स हो चुके हैं,
0: जी
1: बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनके अभी भी फोन आते हैं और हम कभी जा पाते हैं कभी नहीं जा पाते। लेकिन जिसको मैं सराहती हूँ बहुत ज्यादा, फिल्म फेयर और दादा साहब फाल्के अवार्ड, अजीज सिने अवार्ड, और गदर भी, सारे गदर के
0: जी।

0: ने भी अवार्ड्स में थे,
1: जी
0: फिर एक नेशनल अवार्ड के लिए मैं 3 बार नॉमिनेशन में आई हूँ।
1: क्या बात,
0: देखो आपके सारे श्रोता मेरे लिए दुआ करें और मुझे नेशनल अवार्ड इस साल
1: हम
0: मिल
1: सबकी
0: जाए।
1: प्रार्थना है कि आपके हाथ में नेशनल अवार्ड आना
0: नेशनल
1: चाहिए,
0: अवार्ड आ
1: जिसने
0: जाए।
1: इतनी मेहनत की है, अपना पूरा जीवन दिया है और किरदारों को खुद के नजरिए से हम तक पहुंचाया है,
0: बिल्कुल
1: या कहें कि किरदारों के रूप में खुद हमारे सामने आई है, तो उसको मिलना तो चाहिए। तो हम सबकी दुआएं, हम सबकी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। तो कोई एक गाना जिसने आपको बड़ी खुशी दी हो, ऐसा मन किया हो कि हम खड़े हैं तो 3 फीट ऊपर उछल जाएं और थोड़ा नाच लें और थोड़ा नाच लें, ऐसा कोई गाना जिसको करने के बाद बड़ा मजा आया हो या करवाने के बाद?
0: ऐसा एक गाना है तो ज़रूर, हमारे लेजेंडरी मेगा स्टार सलमान खान का गाना है। उस गाने की हर लम्हा उसका मेरे लिए कीमती था, क्योंकि एक फीमेल कोरियोग्राफर को हुर हुर दबंग गाना देना
1: जी
0: पहली
1: सही
0: बात
1: बात है
0: अपने आप में बहुत।
1: जी।
0: वो गाना जब हम कोरियोग्राफी कर रहे थे तो मेरा जो मेल असिस्टेंट है, मेरा भाई शर्जिल, वो मेरा राइट हैंड है हमेशा से। जब हम
1: आपने
0: दोनों
1: बताया
0: नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि जमाना
1: अलग
0: कैरेक्टर को देख रहा है, एक
1: जी
0: लेवल अलग है। वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है।
1: जी
0: उसके बैक में प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि
1: अच्छा
0: उससे एक गाने पहले वो इंजर्ड हो गया था।
1: ओह
0: अब वो डांस कर नहीं पा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर है प्रभु देवा, जो मेरे गुरु रह चुके हैं।
1: जी
0: सलमान खान साहब ने इतना बड़ा गाना दिया है, तो मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई कि मैं फीमेल हूँ, हुरूर दबंग मुझे करना है और मैं चाहती थी कि शर्जिल के ऊपर किया जाए और वो इंजर्ड है, तो मैं क्या करूं। तो मैं जब रिहर्सल हॉल पे जाऊं तो अपने 20 लड़के जिनके साथ मैं कंपोज कर रही थी, मेरे अपने डांसर, उनमें से चुनती रहूं, ढूंढती रहूं कि कोई है जो ऐसा परफॉर्म कर
1: किससे
0: सके।
1: करवा दें?
0: क्योंकि वो गाना जब मैं कंपोज कर रही थी उसमें एक दबंग वाला एक वो था ऑरा, और वो गाना जो था इस बार वाला वो उस पावर से कनेक्टेड हमें करना था जो ऊपर से आता है,
1: जी
0: वैसा पावर चाहिए था।
1: हाँ
0: मुझे मिले ही ना, मिले ही ना। और मैं गाना कंपोज करती जा रही हूँ, डांसर लड़कों को सिखाती जा रही हूँ और ढूंढ रही हूँ कोई एक लड़का मिल जाए। और फिर तीसरे दिन मुझे सारे डांसर और मेरे अपने भाई ने बैठ के बोला कि यू परफॉर्म, यू शो इट टू प्रभु देवा, यू शो इट टू एवरीबडी।
1: ओके
0: लड़कों ने बोला, मैम देर इज नो अदर डांसर हु कैन डांस लाइक यू द वे यू आर डूइंग दैट सॉन्ग। तब प्रभु सर जब आए और मैंने सोचा यार सच में,
1: प्रभु देवा के सामने डांस
0: प्रभु
1: कर
0: देवा
1: रहे
0: के साथ
1: हो।
0: सामने जब वो आए बोले यू विल डू इट, वाई वाई वाई यू सर, एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद जब मैंने करके दिखाया, वो भूल गए कि मैं लड़की हूँ। प्रभु सर वो बस मुझसे डिस्कस करते रहे। फिर हम सेट पे पहुंचे, सलमान भाई वैसे ही रिहर्सल नहीं करते, सेट पे पहुंचे। हम कर रहे थे ये गाना शूट, हम इंदौर में कर रहे थे गाना, तो जैसे हमेशा की तरह सलमान भाई ने सोचा नहीं कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, कौन हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ। मुझे बोले चलो पूरा गाना करके दिखाओ। अब पूरा गांव वहां पे खड़ा है सेट पे, सलमान भाई आए तो पूरा गांव खड़ा
1: हाँ, वो
0: हुआ है
1: तो आ गई।
0: और मैं भी भूल गई कि मैं लड़की हूँ भाई, मैं तो कोरियोग्राफर हूँ। हमेशा की तरह दबंग अंदाज में मैंने वो गाना गांव के सामने किया, पूरा गांव शूट कर रहा था एंड दे ऑल क्लैप्ड। सलमान भाई बोले करवा लेना मुझसे तुम ऐसे बस। वो जो शूट होके आया और लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, मैं अपने आप में हैरान थी। मेरे सारे लड़कों ने मुझे ऊपर उठा लिया कि मैम व्हाट वाइब्स यू गेव। तो उस वक्त मैं तो कोरियोग्राफर थी ना, मैं लड़की थी नहीं। अच्छा अब शूटिंग शुरू होती है और मैं हर शॉट मैं करके दिखा रही हूँ, बिकॉज माय असिस्टेंट शर्जिल वाज ऑन सेट बट ही कुडंट डू इट। नाउ मुझे ही करना है, शॉट लगाऊं करके भी मैं दिखाऊं, भाई को भी सिखा रही हूँ कर भी रही। अब ये पूरा जो गाँव के लोग है वो खड़े रह के देख रहे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन,
1: वो समझ रहे उस
0: वो
1: चीज को।
0: देख रहे हैं मुझे, देख रहे हैं। अब मैं रोजों में थी, उस वक्त रमजान चल रहा था, मेरे रोजे भी चल रहे थे। अब ये गाना खत्म हुआ, जैसे ही सब हो गया, लास्ट शॉट एंड एवरीबडी स्टार्टेड टू लीव और मैं अपने होटल की तरफ ऊपर जा रही हूँ, एक मजमा सा मेरी तरफ भागता हुआ आया। और मुझे लगा ये लोग आके मुझे बोलना चाहते होंगे सलमान खान से फोटो दिलवा दो, ऐसे कुछ होगा। और मैं बोली अरे अरे अरे रुको रुको, मुझे जाने दो फिर चले जाओ मुझे। सर नहीं मैम, वी वॉन्ट टू, दे आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड गाँव के आसपास के लोग एंड दे सेड कि आपके साथ फोटो उतारना।
1: क्या बात,
0: एंड देन वो फोटो उतारे ऑटोग्राफ ले, मैं एकदम हैरान थी। उसमें से पूरे ग्रुप ने लास्ट में मुझे बोला मैम वी वॉन्ट टू गिव यू वन नेम टूडे, और लड़कियां थी उसमें 50 के करीब, आज के बाद हम जब भी आपका नाम ले आपका नाम दबंगिनी होगा, असली दबंग आप हो हमारे लिए। अगर
1: शबीना बन गई दबंगिनी।
0: तो उन्होंने मुझे ये खिताब दिया कि आप हमारी दबंगिनी हो।
1: जी
0: तो आज भी वो सारे लोग जो खड़े थे वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे है, मेरी पोस्ट देखते और मुझे पोस्ट बताते हैं कि आप दबंगिनी शबीना खान दबंगिनी। तो वो एक सिलसिला सोशल मीडिया पे उस वक्त शुरू हुआ था।
1: जी
0: तो ये इस तरह की अचीवमेंट्स भी होती है आपकी जिंदगी में कभी कभी,
1: जी
0: कि आप को नहीं।

0: पता, जाने अनजाने में आप किसी के हीरो बन जाते हो।
1: ये अचीवमेंट शायद आपके सच्चे मन, बच्चे जैसा दिल और अच्छा काम,
0: बिल्कुल
1: इसके कारण आपको ये सब मिली है जी।
0: रोटी की भूख खत्म ना हो पेट में जी। और नींद ना आए, बेचैनी से आप अपना काम करते रहो
1: जी। बड़ी खूबसूरत सी बातें आपके साथ चल रही हैं। तो दबंगनी शबीना खान हमारे बीच में है, तो दबंगनी शबीना खान को एक गीत तो सुनवाना बनता है, वो गीत हम आपको सुनवा देते हैं। और गीत के परे हम आपसे, हमारे उन्हीं बच्चों से कुछ कहलवाना चाहेंगे।

0: तो शबीना बोलूं या दबंगनी बोलूं? तो शबीना खान जी, आपका फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में बहुत प्यार से स्वागत है। और अब जो है हम चल रहे हैं हमारे, हालांकि बातें तो दो महिलाएं बैठी हैं तो खत्म नहीं हो सकती, और उसके बाद बात यह है कि आपके पास तो कितना सारा, कितना कुछ है आपके पास जिसे हम अगर चाहें तो शायद एक बार में खत्म नहीं होगा। तो विविध भारती आपसे चाहता है कि एक बार और आना, एक बार और कह के जाना अपने जो मन का है जितना है, लेकिन अभी जो है वो हम कहलवाना चाहते हैं आपसे कि जो जीवन जिया है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बड़ी, जो आप कह रही हैं इतनी देर से कि नदी बह रही है उसके साथ हम बहते जा रहे हैं, तो जब नदी के साथ बहते हैं तो बीच में चट्टाने, पत्थर, कांटे, बहुत कुछ आता है। ऐसा सबके जीवन में आता है, तो आपके जीवन में भी आया होगा। तो हम चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं में उन बच्चों को बताएं जो कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, जो डांसर बनना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश।
1: बिना तकलीफ के तो राहत कभी नहीं आती। तकलीफ है तभी हमें राहत का मजा पता चलता है। तो तकलीफें बहुत आई, अभी तो हमने सिर्फ सक्सेस की बातें की हैं।
0: जी
1: ऐसे कई लम्हात, कई दिन, कई महीने, कई साल गुजरे जब काम भी नहीं होता है आपके पास।
0: अच्छा
1: ऐसा भी होता है, क्योंकि जब आपका नाम होता है ना, वो अपने साथ एक बहुत बड़ी चीज लेकर आता है कि अरे सलमान खान की कोरियोग्राफर है, महंगी होगी,
0: हाँ
1: तो आपके पास लोग नहीं आते। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा मैं तो महंगी नहीं हूं, तो आओ तो सही, पता चलेगा क्या
0: पूछो तो।
1: ये एक चीज है। दूसरी चीज, एक लड़की होना,

0: एक लड़की होना, एक लड़की जो बचपन से आप कहें अल्हड़ उम्र के अंदर भी मैंने कदम यहीं पे रखा। मैं 15 साल की थी तो मैं 20 साल की भी यहीं हुई, 20 की हुई तो 22 की भी यहीं हुई, 25 की भी हुई है। तो ये जो एक दौर होता है जब आपको लोग अलग नजरिए से देखते हैं,
1: कैशव और पूरा जवानी सब यही
0: यहीं
1: निकली।
0: पे गुजरा, तो मैंने वो भी देखा। और एक वक्त था जब कुछ लोगों के साथ मैंने जुड़ना नहीं चाहा तो मैं घर बैठ गई। एक वक्त था जब मुझे घर बिठाया गया, ये नहीं करोगी तो ये होगा, मैं बैठ गई घर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि सब्र का दामन थामे रखो हमेशा, पेशेंस जिसे कहते हैं, सब्र रखो। ऊपर वाले ने जो आपको दो ताकतें मिली है, एक ये कि ऊपर वाले ने आपकी कुंडली लिख दी है, दूसरा ये कि आपकी अच्छी आदतें, आपकी अच्छी नीयत, सिर्फ वही चीज ऊपर वाले की लिखे को बदल सकती है।
1: जी
0: ये सारे चीजें यही कहती है
1: जी
0: कि आपका कर्म आपके आने वाले कदमों को अच्छा या बुरा बना सकता है। तो
1: जी
0: मैं यही कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि हड़बड़ाहट में, पानी की लालसा में, चाहत में अगले ही कदम गलत कर दोगे तो भी आपको थपेड़े तो मिलेगी ही मिलेगी। तो क्यों ना हम सब्र कर लें, थोड़ा बैठ लें, थोड़ा इंतजार कर लें, थोड़ा दुआओं की ताकत को आजमाएं,
1: थोड़ी एहतियात बरत
0: थोड़ी
1: लें।
0: एहतियात बरते, थोड़ा मंदिरों में जाके बैठ जाए, सुकून ले ले, और उसको बोले कि मैं तो मेहनत करने तैयार हूं बट
1: तू देख ले
0: रास्ते
1: तो
0: तू देख ले। लेकिन वो सब आप तब कर पाओगे जब आपके अंदर सबर होगा, संयम होगा। संयम रखो, भाग भाग के तकदीरों को खराब मत करो, संयम से काम लो और मेहनत और चाहत ऊंचे की। यू नो आई ऑलवेज से चिन अप प्रिंसेस,
1: आय है।
0: कीप योर चिन अप। तो आपकी डिग्निटी आपके सिवा कोई अपने ऊपर नहीं रख सकता। आपकी डिग्निटी आपको अपने हाथ में रखनी है, आपके माँ बाप की मर्यादा आपको अपने हाथ में रखनी है। और मर्यादा जब मैं कहती हूँ उसका मतलब ये है कि सबर तभी रख पाओगे जब आपके अंदर संयम हो, सबर हो। वो रखो और अपनी बनने की चाहत को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी खत्म मत करो। आज आप कुछ नहीं हो, लोग आपकी बात को बोलेंगे अरे क्या बोल रही है, हट, कहीं सुन लिया होगा। लेकिन यही बातें आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ही आगे बढ़ के सहारा देगा। अपने पे भरोसा करना कभी मत छोड़ो।
1: आपने शॉर्टकट पकड़ा होता तो शायद आपको आप आज यहाँ बैठ के बात नहीं कर
0: बिल्कुल
1: रही
0: नहीं कर
1: होती,
0: रही
1: और
0: होती।
1: आपने धीरता रखी, गंभीरता रखी, तो आज आप यहाँ बैठी हैं, और इतनी यहाँ नहीं बैठी हैं, आप कई सारे दिलों पे राज कर रही हैं, कई सारे गीतों के माध्यम से राज कर रही हैं। बहुत
0: बिल्कुल
1: बड़ी बात है शबीना
0: बिल्कुल
1: जी। तो आपसे जब बात की तो बहुत सारी शिक्षाएं निकली, छोटी छोटी बातें शिक्षाओं के रूप में निकली, और सबसे बड़ी शिक्षा निकली मर्यादा। और आपने एक शब्द बोले, अपने माता पिता के जो संस्कार हैं उनको
0: बिल्कुल,
1: ऊपर रखो और उनको बचा के रखो।
0: बहुत जरूरी है।
1: ये बहुत बड़ी बात आज के समय में, आज के काल में आपने बच्चों को बताई है, उसके लिए हम सभी बहुत धन्यवाद देते हैं। और विविध भारती परिवार, जिसमें हमारे श्रोता, हम सब और इसके पीछे काम करने वाले ढेर सारे लोग सब आते हैं, और सब आज आपको यहाँ वाकई बहुत खुश हैं यहां तक आप आई, आपने इतनी सारी बातें की। और ये बात हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो रह भी गई हैं, शायद आपको भी याद नहीं है, और यहां से निकलने के बाद लगेगा अरे ये बात और बता देनी
0: हाँ
1: थी। तो वो जो बातें रह जाएंगी वो हम चाहेंगे कि कभी और किसी और रोज हम
0: बिल्कुल
1: साथ में बैठें और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। लेकिन शबीना जी, यहां तक आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती परिवार का एक नया हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया कि विविध भारती को आपने अब तक उस शिखर पे रखा हुआ है।
1: जी
0: यहाँ पे आना, यहाँ के एहसास को जीना, यहाँ की सच्चाई जो मैंने आज फील की है, आई होप ये सच्चाई और ज्यादा से ज्यादा लोग जिए इसको। विविध भारती का शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए,
1: जी
0: और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर।
1: थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू
1: थैंक यू
0: सो
1: सो
0: मच फॉर
1: मच।
0: हैविंग मी।
1: आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।
2: जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

किया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा परिसर में राष्ट्रध्वज फहराया। उधर प्रमंडलीय मुख्यालयों में प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला मुख्यालयों में उपायुक्तों ने ध्वजारोहण किया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान सम विश्वविद्यालय में हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। संस्थान के कुलाधिपति अरुण कुमार झा ने रांची के हटिया स्थित कैंपस में ध्वजारोहण किया। गुमला और खूंटी समेत कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। वहीं कल सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और खूंटी में भारी बारिश के आसार हैं। 17 अगस्त को गुमला और सिमडेगा समेत कुछ अन्य जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं 18 अगस्त को हजारीबाग समेत कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

आ बैठे हैं उनकी महफिल में जिनके नाम से होती है सुबह शाम। जुबां की खामोशियों का क्या कहिए, लेती हैं अब नजरें भी बस उनका ही नाम। दुनिया की रस्मों रिवाज को भुला बैठे हैं सरेआम, कर दिया है अब ये ऐलान कि उसकी महफिल में आज बैठेंगे हम अपने इस दिल को थाम।

उनकी महफिल में आ ही गए तो अब क्या सोचना कि क्या होगा अंजाम। दिल से दिल की पाती थामी, नजरों से दिया दिल का पैगाम। कभी इनकार करते हैं, कभी इकरार करते हैं, इसे कारस्तानी में किया दिल को भी बदनाम। परवाह किसे इस जमाने की, गर्मों करें अपनी नजरें इस नजर के नाम।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। नजरों की नजरों से हुई बात, खिलने लगे तारे, मुस्कुराने लगी ये रात, रोशन हुई हमारे दिल की उम्मीदें, चमकने लगी है कायनात। जानते थे हम होगा यही जब मिलेंगे हमारे जज्बात।

0: बचने की बातें तो जमाने ने सिखाई हैं, उसी जमाने ने इश्क की कीमत भी समझाई है। क्या जाने किस मोड़ पर इस दिल के कदमों से उस दिल की आहट आई है। इश्क है तो जिंदगी है, ये जिंदगी इश्क की परछाई है।
1: जाने!

छाया गीत में आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार। छाया गीत में आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 5:35 पर आप सुनिएगा युवाओं को संबोधित कार्यक्रम ईवाणी। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज हम चर्चा करेंगे आज़ादी का महत्व, इस विषय पर। साथ ही आप आदिति चंद्रा की एक वार्ता भी सुनेंगे, विषय होगा राष्ट्र के विकास में युवाओं का योगदान। 6:02 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी और 6:30 पर होगा कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे समसामयिक कृषि कार्य। 7:00 आप सुनिएगा हमारे रांची केंद्र से झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का राज्य की जनता के नाम संदेश और देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक रंग आप उसके बाद सुनेंगे। 7:45 आप सुन सकेंगे विज्ञान जगत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे ई कचरा का सदुपयोग, संकलन एवं वाचन होगा मीनाक्षी कर्ण का। 8:00 होगा देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम और 8:15 पर आप सुनेंगे राज्य भर में स्वतंत्रता दिवस समारोहों पर आधारित राज्य स्तरीय समन्वित रेडियो रिपोर्ट। दस बजे हम आपको सुनवाएंगे राज्य के पलामू जिला में सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में स्वतंत्रता दिवस समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट, संकलन शेखर चट्टोपाध्याय का, संयोजन एवं प्रस्तुति प्रशांत गौरव का। 10:20 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का। हर रोज की तरह सभा की समाप्ति होगी 11:10 पर।

इवानी सुनने वाले तमाम दोस्तों को नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं एक प्यारे से देशभक्ति गीत के साथ।

दोस्तों ये तो बातें हुई, अब बातें होंगी दोस्तों चर्चा की, ये तो हुई गीत। और चलिए हम बातें करते हैं आज़ादी का महत्व पर। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी यानी स्वतंत्रता मानव जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति या समाज अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। आज़ादी हमें अपने विचारों को व्यक्त करने, समानता से जीने और देश के विकास में योगदान देने का अधिकार देती है, जिसकी रक्षा के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। दोस्तों, गुलामी में व्यक्ति की पहचान और सोच बंधक बन जाती है। आज़ादी हमें यह अधिकार देती है कि हम अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा, व्यवसाय और जीवन शैली का चुनाव कर सकें। सही मायनों में कहा जाए दोस्तों, तो स्वतंत्रता ही वह वातावरण है जहां रचनात्मकता, प्रतिभा और विचारों का स्वतंत्र रूप से विकास होता है। आज़ादी के बिना मानव अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। एक स्वतंत्र समाज में हर नागरिक को कानून के समक्ष समानता, जीवन की सुरक्षा और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जब नागरिक स्वतंत्र होते हैं, हम सभी स्वतंत्र होते हैं, तो वे पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब भारत ब्रिटिश शासन की जंजीरों से मुक्त हुआ, तभी से देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। दोस्तों, आज़ादी सिर्फ अधिकारों का नाम नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारियों का भी बोध कराती है। एक स्वतंत्र नागरिक तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों की आज़ादी का सम्मान दें, देश की संविधान का पालन करें और समाज में भाईचारा बनाए रखें। गौरतलब है दोस्तों कि आज़ादी हमें उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाती है, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महान विचारक कहते हैं कि सतर्कता ही स्वतंत्रता की कीमत है। हमें अपनी आज़ादी को संजो कर रखना है और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और अब सुनते हैं वार्ता आदिति चंद्रा की। विषय है राष्ट्र के विकास में युवाओं का योगदान।

हम सब जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और इस समय हमारे देश को स्मार्ट बनने की आवश्यकता है। स्मार्ट भारत का अर्थ है एक ऐसा देश जहां पर नागरिक तकनीकी रूप से सक्षम हो, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं सभी तक पहुंचे और जहां का प्रत्येक युवा अपने देश के विकास के महत्वपूर्ण योगदान दे सके। युवाओं को किसी भी राष्ट्र की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि युवा ही वो शक्ति है जो देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। आज की पीढ़ी न केवल तकनीकी रूप से सशक्त है, बल्कि वो बदलाव की भूखी भी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में युवा जानकारी और ज्ञान के महासागर में गोता लगा रहे हैं और ये जान ज्ञान ही उन्हें स्मार्ट भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रहा है। शिक्षा और तकनीकी कौशल। युवाओं का सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर युवा न केवल अपने करियर को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, बल्कि देश के विकास में भी अपना योगदान दे सकते हैं। आज के समय में डिजिटल इंडिया का सपना तभी साकार हो सकता है जब हमारे युवा तकनीकी रूप से सक्षम होंगे। नवाचार। स्मार्ट भारत के निर्माण में युवाओं की सोच में नवाचार की भावना होती है, जो नए नए विचारों और योजनाओं को जन्म देती है। स्टार्टअप्स के माध्यम से युवा नए अवसरों का सृजन कर रहे हैं, जिससे रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं और देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है। सामाजिक बदलाव। युवाओं की भूमिका केवल तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में ही सीमित नहीं है, बल्कि वे सामाजिक बदलाव के भी प्रमुख कर्णधार हैं। युवा सामाजिक समस्याओं

0: समस्याओं को समझते हैं और उन्हें हल करने के लिए नए नए उपाय ढूंढते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों में युवाओं की भागीदारी सराहनीय है। तकनीकी नेतृत्व स्मार्ट भारत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है तकनीकी नेतृत्व। आज का युवा पीढ़ी डिजिटल युग में भी जी रही है जहां स्मार्टफोन इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है। ऐसे में युवाओं को नवीनतम तकनीकों में निपुण होना चाहिए और नए आविष्कारों में योगदान देना चाहिए। जैसे जैसे भारत डिजिटल क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है वैसे वैसे युवाओं को इन क्षेत्रों में नेतृत्व करना चाहिए। युवा इंजीनियर्स प्रोग्रामर्स और इनोवेटर्स का एक मजबूत नेटवर्क भारत को दुनिया में अग्रणी बना सकता है। स्टार्टअप संस्कृति भारत में स्टार्टअप का उदय एक सकारात्मक संकेत है कि हमारे युवा रोजगार के सृजनकर्ता बन रहे हैं, न कि सिर्फ नौकरी चाहने वाले। स्टार्टअप संस्कृति में नवाचार, जोखिम उठाने की क्षमता और समाज की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में काम करने की इच्छा होती है। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान है जो स्मार्ट भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य भारत को स्मार्ट और प्रगतिशील बनाने के लिए युवाओं को वैश्विक परिप्रेक्ष्य को समझना और अपनाना होगा। उन्हें यह जानना होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और उन नवाचारों को भारत में लाने का प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और अनुभव प्राप्त कर वे भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। राजनीतिक जागरूकता राजनीतिक रूप से जागरूक युवा ही एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रख सकते हैं। स्मार्ट भारत के निर्माण में युवाओं का राजनीतिक रूप से जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना और देश की नीति निर्धारण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार निभाना युवाओं की जिम्मेदारी है। निष्कर्ष अतः ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्मार्ट भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका अनिवार्य है। आज के युवा ही कल के भारत के नए दिशा में होंगे। अगर हम सभी युवा अपने अपने क्षेत्रों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करें तो वह दिन दूर नहीं जब भारत वास्तव में एक स्मार्ट और विकसित देश बन सकता है। धन्यवाद।
1: दोस्तों अभी आपने सुना आदिति चंद्रा की वार्ता, विषय था राष्ट्र के विकास में युवाओं का योगदान। ये तो बातें हुई इस विषय पर, राष्ट्र के विकास में युवाओं का योगदान पर। और दोस्तों अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा फिर से एक देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। देश ने आज हर्षोल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की ताकि उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हो सके। झारखंड में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर ओर उमंग और उत्साह दिख रहा है। राज्य में मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद ध्वजारोहण किया। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के उपरांत ध्वजारोहण किया। इस मौके पर श्री गंगवार ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। रांची में आंदोलनरत कुछ छात्र अस्पताल में इलाजरत हैं। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने चिकित्सकों और पुलिस से आज आंदोलन स्थल जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। चतरा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 1000 किलोग्राम से अधिक डोडा लदे मालवाहक वाहन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक तस्कर फरार होने में सफल रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में अगले कुछ घंटों के दौरान गुमला और खूंटी जिले में बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने के आसार हैं, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी हमारे रांची केंद्र से।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा

0: बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: आज तो 15 अगस्त के तो सब वीर सपूत मन के नमन करते हमने मन किसान मानी कार्यक्रम के आगे बढ़ाईला।
3: एकदम सब वीर सपूत मन के नमन है और आज हमरे कर देश ले बहुत बड़ दिन है काले की आज हमरे कर देश कर स्वतंत्रता दिवस।
2: हाँ सब बड़ एकदम धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाल जाते। और मनीष भाई देखो हमरे कर किसान मन हूँ देखो हमरे कर देश ले बहुत बड़ योगदान देवत है और अगर अन्न उपजे तो भला कैसे देश आगे बढ़े। किसान मन के हूँ आज का दिन में बहुत बहुत उनके हमरे मन वंदन करेला नमन करेला।
3: एकदम काले की किसान भाई बहन मन रोज दिन अपन सांझ बिहान खेत में जाए के जे मेहनत करे ना संघर्ष करे ना उकरे फल है कि हमरे मन के अन्न भेटायला और हमरे मन खाई के ऊर्जा प्राप्त करीला का कहिला।
2: सही कहते देखो किसान मन अन्न उपजाबे खेती बाड़ी नहीं करब तो भला हमरे कर पेट कैसे चले और हमरे मन काम कैसे कर सकेला। तो देखो किसान मन रोज दिन रौरे कहले कि अपन खेत में जाए के काम करे ना। सही बात है खेत में जाए के चाहिए काल के खेती लगाई है तो अगर रोज दिन एक धौ जाब ने तो का बीमारी लागत है पानी मन कैसे आहे कि कौन बट सुखत है और कौन बट काहे से कर पता लागेला ने।
3: एकदम तो किसान भाई बहन मन हमरे मन के रोज सांझ बिहान अपन खेत में एक धाव जाए के चाहिए और जे फसल के देखे के चाहिए सब कोना कोना जाए के।
2: एकदम सुपट कहली मनीष भाई और रवरे तो कहली कोना कोना तो देखो आजकल तो कोना कोना बद्री मन घिर के लाए
3: मूर्ख नगद कहली रवरे सेले बद्री मन से हूँ बांचे के हमरे मन के।
2: बद्री से देखो ठनका मन हो सेबरा बांचे के और बद्री के आविक देखे पानी के नी।
3: हाँ हाँ
2: और देखो कहे नी की भंडार कोना से पानी बरसत है तो ये सब चीज हमरे कर गीत मन में भेटायला।
3: हाँ हाँ
2: और मनीष भाई देखो हमरे मन तो खेती बाड़ी करेला खेती बाड़ी कर संगे संगे बहुत एकन हमरे मन बाग बगीचा हूँ लगेला गच वृक्ष हूँ लगेला है नी।
3: एकदम उकर से हमरे मन के जे है आमदनियो होयला खेती बाड़ी फसल कर संगे संगे हमरे जे फल फूल मन कर गच मन लगेला उकर से हूँ फल फूल मन के बेच के हमरे और अपन आय के दुगना कर सकेला का कहे।
2: एकदम सही बात है इकर में का कहे है की इकर में ई कहे का है की जे किसान मन नहीं करें खाली खेती बाड़ी करें जे आयर आहे तनिक बाँचल ठाव है से मन में कोनो गच बुद्धा नहीं लगाना तो लगाए चाहिए
3: लगाए चाहिए। एकदम नगद कहली रे।
2: और मनीष भाई देखो आप तो खेती करे का तरीका बदल जाई है आज कल देखो असमेकित खेती जे कहें चाहे मिश्रित खेती उ केहू करल जाएला नहीं।
3: हाँ, हाँ।
2: खेती कर संगे संगे उकर संगे पशु पालन करल जाएला मछली पोसल जाएला गेड़े मुर्गी मन पोसें तो तनिक ठाव रहेला तो पपीता केरा मन केहू लगाए।
3: एकदम जे हमरे कर ठाव है खेत मन का आयर मन में उमन में पपीता मन केरा मन आंबा मन के लगाए चाहिए और उकर से फल होए लाऊ के बेच के हमरे मन दुगु कचिया हूँ कमाई सकीला।
2: हवा पानी हूँ बढ़िया शुद्ध रही बढ़िया कन आवी है नहीं।
3: हाँ हाँ
2: और उकर से हमरे कर जीव जहान बढ़िया रही और हमरे के कचिया हूँ भेटाई।
3: एकदम नगद कहली रहू रे। तो चलो आज कर बात में हमरे है विषय ऊपर कृषि वानिकी का है के और कृषि वानिकी से किसान मन कर जे आय में वृद्धि होत है कातिर होत है इकर बारे में जानीला ज्योतिष कुमार केरकेट्टा से और इनकर से गोठी आई हैं प्रभु शरण।
2: तो चलो सुन ले विला।
4: नमस्कार श्रोताओं आज हम कृषि वानिकी के बारे में बातचीत करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योतिष कुमार केरकेट्टा वानिकी वैज्ञानिक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची से। डॉक्टर साहब नमस्कार।
5: नमस्कार जोहार।
4: ने बताया कि आज हम कृषि वानिकी के बारे में बात करेंगे तो पहले इस टर्म की ही व्याख्या कर ली जाए कि कृषि वानिकी है क्या।
5: कृषि वानिकी को एक मिक्स्ड लैंड यूज सिस्टम हम कह सकते हैं इस रूप में इसको समझा जा सकता है जिसमें हम बारहमासी वृक्ष इसके अलावा झाड़ ताड़ और बांस इत्यादि को कृषि में सम्मिलित करते हैं जिसमें पशुपालन को भी सम्मिलित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने वृक्ष का नाम लिया तो वृक्ष में मुख्य रूप से आम लीची जामुन कटहल गमहार शीशम बकेन ये सब जो है झारखंड के लिए बहुत उपयुक्त हैं और इसमें कुछ फलीदार जो प्रजाति के पौधे होते हैं उनको लगाना अच्छा रहेगा और झाड़ के किस्म में बेर करौंदा नींबू प्रजाति शरीफा शहतूत इनको हम लगा सकते हैं और ताड़ प्रजाति में जो है सुपारी खजूर नारियल इत्यादि को हम लगा सकते हैं।
4: कृषि वानिकी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक प्रश्न ये भी उठता है जैसा कि अभी आपने बताया क्या कोई एक नई पद्धति है कृषि वानिकी या फिर ये पहले से भी प्रचलित थी और अगर ये पहले से एग्जिस्ट करती थी कृषि वानिकी तो अब इसमें ऐसा नया क्या आया है कि इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है।
5: कृषि वानिकी कोई नई चीज नहीं है यह आदिकाल से पूरे विश्व में प्रचलित है लेकिन वर्तमान के कुछ दशकों से

0: इसके बहुआयामी लाभ के चलते यह जोर पकड़ता जा रहा है, जैसे भोजन, जलावन, काष्ठ, चारा इत्यादि के साथ मिट्टी की गुणवत्ता और स्वास्थ्य, भूमिगत जल की बढ़ोतरी प्राकृतिक वनों पर दबाव को कम करता है। भारत सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति बनाया है, जिसका मूल उद्देश्य कृषि भूमि पर इस प्रकार वृक्षारोपण करना है कि यह फसलों और पशुधन दोनों के लिए लाभदायक हो, ताकि उत्पादन, रोजगार, आय और जीविकोपार्जन के अवसर में छोटे किसानों को सुधार हो सके।
1: कृषि वानिकी का अगर हम समझना चाहें उदाहरण के तौर पे, जैसे किन किन फसलों के साथ कैसे वृक्ष लगाए जा सकते हैं, अगर हम उदाहरण को समझना चाहें सरल भाषा में।
0: इसमें वृक्ष का चयन जो है कि वृक्ष में जो है कि आप अपने जरूरत के अनुसार जो है, जो स्थानीय जरूरत है उसके अनुसार ही इसका चयन किया जाना चाहिए। बारहमासी वृक्ष में आम का अगर जरूरत है, लीची का हो, जामुन का हो, जो भी जरूरत हो उसे, या तो अगर उसे कुछ बेर प्रजाति चाहिए, झाड़ प्रजाति चाहिए, तो बेर, करौंदा, नींबू, शरीफा, ये सब जो है शहतूत वगैरह को हम लगा सकते हैं, और इसके साथ हम कृषि फसल है उनको भी हम शामिल कर सकते हैं।
1: जैसे कृषि फसल की अगर बात चली तो झारखंड में मुख्य रूप से धान है, गेहूं है, या जो खरीफ और रबी की जो फसलें हैं, मक्का है, इन सब चीजों की खेती की जाती है प्राय, तो क्या इनके साथ भी वृक्ष लगाए जा सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल, इसमें आपको भूमि के अनुसार जो है कि प्रजाति का भी चयन करना होगा, वृक्ष प्रजाति का, जैसे है कि मेड़ पर भी ये जो है कि लग सकते हैं कृषि वानिकी के तहत। अगर जैसे है कि जो लो लैंड है हमारा, जो धान का खेत है, अगर उसमें भी अगर हम लगाना चाहें कृषि वानिकी के तहत, तो हम दो वृक्ष का हम जो चयन कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक हमारा अर्जुन आता है और दूसरा है कि जामुन, जो अत्यधिक पानी वाले स्थिति में भी वो है कि जिंदा रह सकते हैं। ऊपरी टाँड के लिए जो है हम बाकी जो हमने कहा आम, लीची, जामुन, कटहल, गमहार, शीशम, बकेन वगैरह जो है हम उनका चयन कर सकते हैं। काफी जो है कि जोर दिया जा रहा है कि बांस को भी आप ज्यादा से ज्यादा लगाएं, क्योंकि ये ग्रीन गोल्ड के रूप में भी देखा जा रहा है।
1: तो मुझे जो समझ में बात आ रही है वो कृषि वानिकी के दो फायदे हैं, एक तो कि जैसे कि आपने बताया कि अगर फसल के साथ वृक्ष लगाते हैं तो धीरे धीरे वो वृक्ष जब बड़े होंगे तो उसका भी फायदा होगा, और दूसरी चीज है एक जो हम लोग बात करते हैं पर्यावरण की दृष्टि से ग्रीन कवर वो होना चाहिए, तो उस लिहाज से भी ये फायदेमंद है। आपकी इस पर क्या राय है?
0: जो राष्ट्रीय वन नीति है
1: जी,
0: उसके अनुसार जो है हमारा जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो 328.74 मिलियन हेक्टेयर है, उसके कुल भूभाग का 33% क्षेत्र जो है वनों या वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 की हालिया रिपोर्ट को अगर हम देखें तो भारत में वनों का आच्छादन मात्र 21.76% है। इसमें वनों से बाहर के 3.41% वृक्षों को सम्मिलित कर लें तो यह 25.17 होता है, जो हमारे 33% के जरूरी आंकड़े को छूने में 7.83% कम है, जिसे वनों के बाहर के क्षेत्र को बढ़ाकर ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक वनों का क्षेत्रफल सीमित है और इस पर काफी दबाव है। हमारे देश का कुल फसल क्षेत्र लगभग 219 मिलियन हेक्टेयर है, अपने देश का बहुत विशाल कृषि क्षेत्र है जो अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 51-60% है, अतः कृषि वानिकी ही वृक्ष आच्छादन के 33% के लक्ष्य को पूरा करने हेतु एकमात्र विकल्प बचता है।
1: ये बहुत ही आपने एक अच्छी बात बताई, कई श्रोता जानते भी होंगे और नहीं तो जानना चाहिए कि भारत की स्थिति वन के आच्छादन से, जैसा कि आपने बताया वो लगभग 30-22% वन से आच्छादित है। अच्छा, अब जब प्राकृतिक वन है उसके अंदर जाकर तो आप पौधारोपण या वृक्षारोपण तो कर नहीं सकते, वो तो सीमित है, वो वहीं रहेंगे
0: जी।
1: तो बस जो कृषि योग्य भूमि है उसमें हम वृक्ष लगा सकते हैं, वो हमारे अख्तियार में है
0: जी, उसको तो हम बढ़ा सकते हैं।
1: तो वो भी अभी लगभग 7-8% कम है, तो उस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं अगर कृषि के साथ वानिकी की जाए तो। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति है वानिकी की?
0: झारखंड में हम कमोबेश अच्छी स्थिति में हैं, जहां वनों का आच्छादन 29.81% है, और इसमें हम वनों से बाहर के 4.57% वृक्षों को सम्मिलित कर ले 34.57% होता है, लेकिन भविष्य की जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए इसे और भी बढ़ाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जो हमारे पास उपलब्ध भूमि है उसका जिस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, तो ये

0: एक सतत प्रक्रिया है और ये चलती रहनी चाहिए। कृषि वानिकी की जब बात हुई है तो हम अपने कृषकों को इस संबंध में क्या सलाह दे सकते हैं, क्योंकि केवल वो इस दृष्टिकोण से नहीं सोचेंगे कितना वन से आच्छादित है हमारा देश या हमारा इलाका, वो देखते हैं कि इसमें क्या कोई अतिरिक्त आय है इससे संभव। तो अगर आमदनी के लिहाज से देखेंगे तो आप वानिकी को कैसे देखते हैं?
1: आमदनी की बात करें तो इससे पहले मैं चाहूंगा कृषि वानिकी से संबंधित कुछ अन्य फायदों को भी जरूर हमें जानना चाहिए। कृषि वानिकी कृषि में 4% की सतत वृद्धि हासिल करने में मदद करता है। कागज और पल्प के लिए यह 60% कच्चा माल जो है कृषि वानिकी से ही प्राप्त होते हैं। कृषि वानिकी हरे चारे पशुपालन के लिए 9 से 11% तक की जरूरत को पूरा करता है और यह कृषि वानिकी हमारे उत्पादन को कृषि उत्पादन को विशेषकर 51% तक बढ़ा सकता है। इसमें देखा जाए तो यह कृषि फसल की विफलता को भी कम करता है जिससे पोषण स्वास्थ्य और कृषकों की आय में सुधार होता है। कृषि फसल अगर नष्ट हो भी जाए तो वृक्ष फसल आय सुरक्षा की गारंटी हो सकते हैं।
0: हम अपनी बातचीत को समाप्त करने से पहले हम ये जरूर चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को कृषि वानिकी से संबंधित अगर कुछ और कहना चाहें।
1: अंत में मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि कृषि वानिकी जो है रोजगार सृजन, किसानों के अतिरिक्त आय और जीविकोपार्जन में सतत रूप से बढ़ोतरी कर सकता है। कृषि वानिकी जलवायु परिवर्तन की जोखिमों से लड़ने में सक्षम है, अतः इसे हम जलवायु परिवर्तन के दौर में स्मार्ट खेती कह सकते हैं और इसे किसानों को जरूर अपनाना चाहिए।
0: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस विषय पर और आपने ये भी बताया कि कृषि वानिकी के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। कृषि फसलों का भी जो अगर उससे जो आमदनी होती है वो भी बढ़ेगी और साथ ही जो आपने दिखाया इसका कि कॉमर्शियल तरीके से भी इससे फायदा लिया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि कृषि वानिकी के बारे में हमारे श्रोताओं को एक अच्छी खासी जानकारी मिली होगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को अच्छी जानकारी दी कृषि वानिकी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो मनीष भाई, अखन हमारे मन बहुत बढ़िया जानकारी कर ली है नी, जान ली कि कृषि वानिकी काके कहल जाएला और इकर से किसान मन कर जे आमदनी है जे कचिया है उकर में कातिर बढ़ोतरी हो सकेला। बढ़िया बतात रहे ज्योतिष कुमार क्रिकेटा और इनकर से गोठिया रहे प्रभु शरण। मनीष भाई देखो, आज 15 अगस्त थके तो कुछ गीत गोविंद हो जाए चाहिए।
3: एकदम, तो गीत गोविंद कर जुगाड़ तो राखी देखा था। गीत गोविंद
2: देखो नी, आए जी हमारे मन के देश कर जे वीर सपूत मन से मन के नमन करे कर दिन है, मन के याद करे कर दिन है और छुआ मन के हूँ प्रेरित करे का है कि देश आहे तबे हमारे आहे है नी।
3: एकदम, तो देश ले छुआ मन के हूँ तैयार करे के कि देश सबसे बड़ है।
2: हाँ, तो चलो हमारे मन अजीज अंसारी उनकर संगे आजाद अंसारी और संगे मन गाई है से गीत की सुन लेविला। ये नागपुरी में है।
3: चलो तब सुन लेविला।

0: तो भाई बहन मन एखन हमरे अजीज अंसारी और आजाद अंसारी कर गावली नागपुरी गीत के सुनली, बड़ा नगद गीत रहे करन भाई। तो
1: हाँ हाँ देखो ने, ये तो हमरे मन कर जे वीर सपूत है से मन कर ले समर्पित गीत रहे। और मनीष भाई, किसान मन हो अपन बहुत बढ़िया काम करत है। आजकल तो पढ़ल लिखल किसान मन खेती बाड़ी में घूरत है और उके बढ़िया एकदम व्यवसायिक स्तर में करत है और बढ़िया कचिया कमात है।
0: और ढेर एक नवा नवा जे फसल मन है उ मन के हो उगाई के बढ़िया एक कचिया हो कमात है और दूसर मन ले प्रेरणा हो बनत है।
1: और देखो प्रेरणा लेवे के चाहिए अगर केहू बढ़िया काम करत है तो। यही तो देखो पढ़ल लिखल जे दू गो नौजवान मना है ऐसे मन मशरूम कर खेती करत है और बढ़िया एकदम हाईटेक विधि जे के कहे ना उके अपनाई के करत है। बढ़िया पूंजी हो लगाई है और मशरूम के खन बढ़िया बाजार में बेचत है और बढ़िया कचिया कमात है
0: एकदम।
1: तो ई मन हके प्रभात रंजन महतो और राहुल शाह, इनकर से मनोज कुमार भेंट करिए। चलो तनिक सुन ले विला।
0: चलो तब सुन ले विला।
2: किसान भाइयों नमस्कार, आज हम जानेंगे मशरूम के खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है दो किसान हैं। भाई आप दोनों को नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: नमस्ते।
2: आपका अपना परिचय बताइए।
4: जी मेरा नाम प्रभात रंजन महतो है और मैं रांची झारखंड का ही रहने वाला हूँ।
2: और आपका?
3: मेरा नाम राहुल शाह है और मैं भी रांची का रहने वाला हूँ।
2: तो आप लोग दोनों क्या करते हैं?
4: मैं फैक्ट्री का मैनेजमेंट और प्रोडक्शन देखता हूँ और मेरा जो भाई है राहुल वो सारा मार्केटिंग का काम देखता है।
2: तो आप लोग मशरूम से जुड़े हुए हैं?
4: करीब आज से 4 साल पहले की बात है, मैंने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लिया है और वहां से मैंने ट्रेनिंग लिया, उसके बाद हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम लोग एक बटन मशरूम का प्लांट लगाते हैं। उसके लिए हम लोग काफी जगह विजिट कर चुके हैं, सोलन गए थे, हिमाचल गए थे, बिहार गए थे, अलग अलग प्लांट देखा हमने। उसके बाद फिर हमने अपने प्लांट पे काम स्टार्ट करवाया। उस प्लांट को करीब करीब रेडी होने में 2 साल लग गया और पिछले 2.5 महीने से हमारा मशरूम का प्रोडक्शन आ रहा है।
2: तो रांची में कहां पे लगाए हैं?
4: ठाकुर गांव में प्लांट लगा हुआ है हमारा। आप जैसे बटन मशरूम का प्रोडक्शन कीजिएगा तो उसमें आपको सबसे ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। हम बटन मशरूम के प्लांट में अगर डर्ट या फिर किसी भी तरह के बैक्टीरिया फंगस को ग्रो करने का सही टेम्परेचर दे रहे हैं और सही वातावरण दे रहे हैं तो बटन मशरूम के सिवाय और भी फंगस ग्रो कर सकता है अगर हम ध्यान ना रखें। दूसरा होता है कि मशरूम का जो साइज होता है वो ओवरनाइट डबल हो जाता है। आज अगर वो 1 सेंटीमीटर है तो कल आपका 1.8 या फिर 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर वो उससे छोटा रहता है तो भी लोग नहीं खरीदना चाहते हैं, उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है तो भी नहीं खरीदना चाहते।
2: मिनिमम साइज कितना होना चाहिए?
4: मिनिमम साइज आपका अराउंड 20 से 25 mm होना चाहिए। अगर आप उससे बड़ा मशरूम ग्रो कीजिएगा तो वो फिर बी ग्रेड कहलाता है और बी ग्रेड का आपको रेट नहीं मिलेगा मार्केट में।
2: तो शुरुआती दौर में जब आप इससे जुड़े तो कितना पूंजी लगाया आप?
4: ये हमारा करीब करीब पूंजी लगा था 50 लाख जैसा, बैंक से लोन लिया था हमने और ये 1 एकड़ में बना हुआ है हमारा प्लांट।
2: आपके साथ में राहुल जी है, तो राहुल जी आपका क्या इस विभाग है, क्या देखते हैं?
5: हमारा काम मार्केटिंग का है। मार्केटिंग का काम अपने पास रखने का मुख्य कारण यही रहा कि हमारा बाजार समिति में आज से 25 साल पहले से व्यापार चला आ रहा है और मैं आलू प्याज लहसुन के व्यापार से 15 साल से जुड़ा हुआ।

0: तो हमें एक चीज बेनिफिट मिला उसमें कि जो मशरूम का काम चालू करने के बाद जो सबसे बड़ी चैलेंजेस आती है वो मार्केटिंग की रहती है। जो अच्छे कस्टमर का जुड़ाव है वो हमारे पास पहले से जुड़े हुए थे, तो उसमें हमें प्लस पॉइंट मिला। एक हमारा माल प्लांट से और आउटलेट तक आने में एक जगह में पहुंच जाते हैं, तो 10 कस्टमर पास पहुंचने की जरूरत नहीं है, वो एक जगह हमारे आउटलेट पर आए और वहीं से सारे माल डिस्पैच हो जाते हैं। तो मार्केटिंग की हमारे पास सबसे बड़ी जो चैलेंजेस होती है वो नहीं रही और हम लोग आज के रेट में अच्छे से अच्छे रेट में अपने मशरूम को बेच पा रहे हैं।
1: तो शुरुआती दौर में कितना उत्पादन कर पाते थे आप लोग?
2: हमारे प्लांट का कैपेसिटी 3000 बैग का है और एक बैग से 2 kg मशरूम ऑन एन एवरेज निकलता है, तो हमारे पास 6 टन मशरूम होता है एक साइकिल में। इसका साइकिल का ये मतलब होता है ना कि हम जिस दिन से कंपोस्ट को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन से अराउंड 45th डे मेरा मशरूम निकलेगा। जो फ्लश निकलता है वो 7 दिन चलता है। जब मशरूम ग्रो करता है तो उसका साइज ओवरनाइट डबल कर रहा होता है। होता है कभी कोई मशरूम बड़ा हो गया ज्यादा जल्दी, कभी कोई दबा रह गया। जैसे पेड़ पौधा है, उगने वाला चीज है, नेचुरली ग्रो करता है, तो स्टार्टिंग में माल कम रहेगा आपके पास। तो मेरे पास पहला दिन माल रहता है अराउंड 5 से 6 पेटी, एक पेटी में 15 kg माल रहता है। फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट करता है। अगले दिन 10 पेटी माल हुआ, उसके अगले दिन 20 पेटी माल हुआ, उसके अगले दिन जब फ्लश करता है तो मेरे पास करीब करीब 800-900 किलो तक रहता है। कभी बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो 1000 kg 1100 kg तक भी माल रहता है। फिर जैसे ही हम उस मशरूम को कट कर लेते हैं वो फिर ग्रेजुअली कम होने लग जाता है। उसके बाद फिर दोबारा जब सेकंड फ्लश आता है तो पहले फ्लश से थोड़ा कम माल आता है उसमें, क्योंकि बैग से जो न्यूट्रिएंट्स था वो पहले ही जो मशरूम पहला लॉट में ग्रो किया वो उसको कंज्यूम कर चुका था। अब अगले फ्लश में जब माल आएगा, मेरे पास पहला फ्लश में अराउंड 3500 से 4000 kg माल रहता है, उसके अगले फ्लश में 2000 से 2500 माल रहता है। इस तरह से 6 टन माल मेरा एक रूम से निकलता है।
1: एक बार जब आप लगाते हैं मशरूम को, बीज लगाते हैं, तो कितने दिन के अंतराल में आप तोड़ते हैं उसको?
2: टूटता तो मशरूम डेली ही है, कम ज्यादा कुछ ना कुछ तो डेली
1: सब पार्ट पार्ट अलग अलग रहता है हिसाब से
2: जी।
1: एक बार हम बीज को लगाए तो कितने बार हम तोड़ते हैं उसको?
2: उसको 15 दिन तक तोड़ते हैं।
1: तो सबसे बड़ी बात है कि बेचने की समस्या आती है, क्योंकि बहुत सारे किसान उत्पादन करते हैं तो कहाँ बेचें, कैसे बेचें, उनको उतना आइडिया रहता नहीं है, तो आप लोग कहाँ पे इसको बेचते हैं?
0: देखिए, आज के डेट में मोबाइल का जमाना हो गया, इंटरनेट का जमाना हो गया, और आज के डेट में हर चीज बिकता है, बशर्ते उसका क्वालिटी होना चाहिए और क्वांटिटी होना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी और क्वांटिटी है तो मशरूम को बेचने के लिए दिक्कत नहीं है। मशरूम उगाना चैलेंजिंग है, बेचना बहुत आसान है। और रांची में इतना खपत है मशरूम का कि हमारा मैक्सिमम माल लोकल में ही खपत हो जाती है। और एक चीज और है मार्केटिंग में, जब आज के तौर पे मशरूम को लोग नॉनवेज का अल्टरनेटिव देखते हैं, तो मशरूम की बिक्री सबसे ज्यादा होती है जो सावन महीने आती।
3: तो भाई बहन मन, एखन हमरे मशरूम उत्पादक किसान प्रभात रंजन महतो और राहुल शाह से करल मनोज कुमार कर गोइट के सुन ली।
4: हाँ, बड़ा नगद जानकारी रहे। आसरा करीला की किसान भाई बहन मन खेती बाड़ी कर संगे जे बागवानी करें और ओकर अलावा पशु मन पोसे ना मवेशी पोसे ना, तो उकर संगे संगे मशरूम कर हुआ अगर मन खेती करे खोजे ना तो मशरूम बटवाई सके ना और कचिया कमाई सके ना।
3: एकदम नगद रवरे कहली कि मशरूम कर खेती करके हूँ कचिया कमाई सके ना, तो
4: और देखो कर... नहीं मशरूम कहते तो आजकल तो हमारे कर गांव घर में जे प्राकृतिक मशरूम है जैसे खुखड़ी कहल नहीं, बाप रे मुंह में पानी आवत
3: एकदम सुनते खुखड़ी करना मुंह में पानी आ जाए
4: लयर लयर एकदम कतना स्वाद खुखड़ी नहीं, तो कतना स्वाद हो है उकर से तीन हूँ भेटाएला कचिया हूँ देवेला, तो भाई खुखड़ी का तो कमाले चीज हके है नहीं
3: एकदम।
4: अपन स्वास्थ्य को बढ़िया रखेला और कचिया हूँ देवे तो इकर से बढ़िया का हो सकेला।
5: अरे अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
6: पुतला बोल रहे?
5: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
6: मतलब
5: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
6: परम तो सभी डाले हैं।
5: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
6: सच
5: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
6: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
7: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: मनीष भाई, हमने गुठियाते देखो बेरा के, तो देखते न कि अब तो बेरा हो ही जाते जाकर
3: एकदम। तो भाई बहन मन बताए खोजिला, ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
4: और किसान वाणी कार्यक्रम कर प्रस्तुत

0: दी रहे आकाशवाणी रांची कर। तो मनीष भाई चलो तब हमारे मन किसान वाणी कार्यक्रम से विदा ले विला। तो राउर मनक रेडियो संगी करण भाई और
1: मनीष भाई के देव विदा
0: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हमारे रांची केंद्र से। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब लीजिए प्रस्तुत है कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा।

कृषकों को संबोधित आज की इस ग्रामीण सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को कल्याण कुमार का नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप जानेंगे समसामयिक कृषि कर और आज की बात का विषय है बरसात के दिनों में फसल की देखरेख। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हुए ये जानते हैं समसामयिक कृषि कर। जी हाँ श्रोताओं, फसल की अवस्था, मौसम और स्थानीय परिस्थिति के अनुसार जो कृषि कार्य है वो प्रायः बदलते रहते हैं। अगस्त माह में खरीफ फसल की देखरेख, खरपतवार का नियंत्रण, कीट और रोग प्रबंधन के साथ साथ जल निकास जैसे कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो श्रोताओं, यदि इन चीज़ों की देखरेख अगर इन बरसात के दिनों में अगस्त माह में ना की जाए तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। श्रोताओं, इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो खरपतवार जो होते हैं वो फसल के पोषक तत्व, पानी और प्रकाश का प्रायः उपयोग करते हैं। और इसका होता क्या श्रोताओं कि इससे जो हम फसल लगाते हैं कहीं ना कहीं उसका उत्पादन जो है वो घटते चला जाता है। इसलिए फसल के जो शुरुआती अवस्था होती है उसी समय निराई और गुड़ाई करना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आवश्यकता पड़ने पर जो भी अनुशंसित जो खरपतवार नाशी हैं उसका सुरक्षित और निर्धारित मात्रा में प्रयोग कर खरपतवार को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ मिट्टी और उसके जो पोषण के प्रबंधन की बात आती है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए जैविक खाद, कंपोस्ट के साथ साथ हरी खाद का उपयोग करना भी आवश्यक है। रासायनिक उर्वरक का उपयोग जब भी करें श्रोताओं तो मिट्टी की जांच और फसल की आवश्यकता के अनुसार ही करें। संतुलित पोषण से पौधों की वृद्धि और उत्पादन जो है वो काफ़ी बेहतर होते चली जाती है। और हम बात करते हैं श्रोताओं जल प्रबंधन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल जमाव से फसल को नुकसान होता है, वहीं धान की फसल के लिए जल की उपलब्धता भी जरूरी है। तो श्रोताओं, जल प्रबंधन की जब हम बात कर ही रहे हैं तो इसमें बरसात के समय खेत में पानी का जमा होने से जड़ों को नुकसान हो सकता है। इसलिए खेतों में नालियां बनाकर जो भी अतिरिक्त पानी हो उसे निकाल दें। जहां वर्षा कम हो, जहां पर कि पानी की उपलब्धता नहीं हो, वहां पर उस पानी का उपयोग करें और नमी के संरक्षण करने का उपाय करें। कीट और रोग प्रबंधन की बात हम करते हैं श्रोताओं, तो खेत का नियमित रूप से हमेशा परीक्षण या निरीक्षण करते रहें। प्रारंभिक अवस्था में ही कीट या रोग की पहचान हो जाने से जो कीट का जो नियंत्रण है वो काफ़ी आसान हो जाता है। अनावश्यक रूप से कीटनाशकों का प्रयोग बिल्कुल ही न करें और जब भी उपयोग करें तो अनुशंसित जो भी मात्रा होती है वो भी समय पर और सभी प्रकार की सुरक्षा सावधानियों को रखते हुए ही कीटनाशी दवा का उपयोग करें। श्रोताओं, तैयार फसल की कटाई भी उचित समय पर होना आवश्यक होता है। अनाज को अच्छे तरीके से सुखाकर ही सुरक्षित स्थान पर रखें। भंडारण स्थल साफ सुथरा और कीटरोधी होना भी आवश्यक है। तो श्रोताओं, इस तरह से देखा जाए तो समसामयिक कृषि कार्य को हमें समय पर पूरा करने से फसल की वृद्धि भी अच्छी होती है, उत्पादन लागत भी कम होता है और आय बढ़ाने में भी ये काफ़ी सहायता हमें प्रदान करती है। और श्रोताओं, यदि हम वैज्ञानिक तकनीक को अपनाएं, वैज्ञानिक कृषि तकनीक को माने, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर हम

किसान का कार्य करे तो फसलों को भी अधिक सुरक्षित और हम इससे लाभकारी लाभ ले सकते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें समसामयिक कृषि कार्य की, और अब आइए आज की बात में। हम जानते हैं बरसात के दिनों में फसलों की देखरेख। जी हाँ श्रोताओं, बरसात का जो मौसम है वो खरीफ फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय पर्याप्त वर्षा से फसलों की वृद्धि काफ़ी बेहतर होती है, जबकि ज़्यादा वर्षा होने से जल भराव, खरपतवार, कीट और रोगों के कारण फसल को नुकसान भी हो सकता है। जरूरी है श्रोताओं कि हम समय पर खेत की निगरानी करें और उचित प्रबंधन करना सुनिश्चित करें। श्रोताओं, सबसे पहले जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। खेत में अधिक पानी जमा होने से पौधों की जो जड़ों को ऑक्सीजन प्रायः नहीं मिल पाती है। इस कारण से पौधे जो हैं वो प्रायः पीले पड़कर कमजोर हो जाते हैं। इसलिए श्रोताओं, खेत में नालियां बनाकर अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें और निचले क्षेत्रों में विशेष सावधानी रखें। बरसात के दिनों में श्रोताओं, खरपतवार भी काफ़ी तेजी से बढ़ते हैं। खरपतवार फसल के साथ पानी, पोषक तत्वों और प्रकाश के प्रति, एक तरह से कहा जा श्रोताओं तो प्रतियोगिता करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो जरूरी हो जाता है श्रोताओं कि समय पर हम निराई गुराई करें, खरपतवार को नियंत्रित करें और आवश्यकता अनुसार किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर जो भी अनुशंसित जो खरपतवार नाशी है उसका प्रयोग करें। श्रोताओं, इस बरसात के मौसम में कीट और रोगों का भी प्रकोप प्रायः काफ़ी बढ़ जाता है। धान की फसल हो, मक्का हो, अरहर हो, सब्जी हो, इन सभी फसलों को नियमित रूप से इसकी देखभाल जरूरी हो जाती है, पौधों की जांच जरूरी हो जाती है। इस बात को ख्याल रखें कि पत्तियों पर धब्बे हो, छेद हो, पत्तियों का मुड़ना हो या कोई भी कीट दिखाई दे तो तुरंत उसकी पहचान करें और पहचान के पास उचित नियंत्रण अपनाएं। श्रोताओं, अनावश्यक कीटनाशकों का उपयोग न करें, इस बात का जरूर ख्याल रखें। साथ ही साथ उर्वरक की भी हम बात करते हैं तो उर्वरक का भी प्रबंधन जो है वो काफ़ी सावधानी पूर्वक करना श्रोताओं काफ़ी लाजमी हो जाता है। तेज बारिश की संभावना होने पर उर्वरक डालने से बचें, क्योंकि पोषक तत्व बह जाते हैं और मिट्टी की जांच और फसल के आवश्यकता के अनुसार ही संतुलित उर्वरक का उपयोग करें श्रोताओं। श्रोताओं, बरसात के दौरान खेत में मेड़ जो है उसे मजबूत रखें। कटाव रोकने के लिए घास या जो भी उपयुक्त उपाय है वो उसे अपनाएं। श्रोताओं, सब्जियों में सहारा देना भी जरूरी हो जाता है बरसात के इन दिनों में। रोगग्रस्त जो भी पत्तियां हों उसे हटाएं और समय पर निराई उड़ाई तो करते ही साथ साथ तुड़ाई पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि बरसात के दिनों में जो फल हैं वो काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करने लगते हैं। तो इस बात को भी सुनिश्चित कर लें कि हम समय पर ही इसकी तुड़ाई कर लें। तो श्रोताओं, इस तरह से देखा जाए तो मौसम के पूर्वानुमान से ही हम फसल की नियमित निगरानी करें, समय पर जल निकास की व्यवस्था रखें और हमेशा अपने फसल की देखभाल करें। खरपतवार को निश्चित रूप से नियंत्रित करें, क्योंकि यह पोषक तत्वों को ले लेता है जिससे फसल को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से खरपतवार पर जरूर नियंत्रण रखें। कीट रोग का भी प्रबंधन करें, कीटों की पहचान करें, पहचान के पश्चात सुनिश्चित करें और उसके बाद उसका कीटनाशी का उपाय करें श्रोताओं। और साथ ही साथ संतुलित पोषण अपनाएं तो बरसात के मौसम में भी हम फसल को काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, इस तरह से हम बरसात के दिनों में भी फसल की देखरेख कर अपने फसल को सुरक्षित रखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें आज की बात, और अब इसी बात के साथ आज की इस ग्रामीण सभा से हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण सभा, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा कर...

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को किया संबोधित। विकसित भारत के लिए सप्तधारा की घोषणा। युवाओं को संसाधनों की नहीं होने दी जाएगी कमी। राज्य भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शान से लहराया तिरंगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर दिया जोर। जश्न आजादी पर समूचे राज्य में दिखा देशभक्ति का जोश और जज्बा। विधानसभा, राजनीतिक दलों के कार्यालयों समेत कई स्थानों पर ध्वजारोहण। रांची में आंदोलनरत छात्रों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। न्याय के आवास की बुलंद, गड़बड़ियों के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। और गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज और कल भारी बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी। और अब समाचार विस्तार से। देश ने आज हर्ष और उल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक के दौरान देश की उपलब्धियों और विकसित भारत निर्माण की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। उन्होंने विकसित भारत के लिए सप्तधारा का रोडमैप भी प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने का आह्वान करते हुए उन्हें संसाधनों और योग की कमी नहीं होने देने का आश्वासन दिया।
1: गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 6 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय करते हुए कहा कि इससे महिलाओं की मजबूती के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के अपने लक्ष्य को पहले ही पार कर चुकी है।
2: बेटियां जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई, ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है। आज 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
0: झारखंड में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर ओर उमंग और उत्साह दिख रहा है। मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद ध्वजारोहण किया। परेड में पहली बार ओडिशा की टुकड़ी भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के सुधारात्मक कार्यों का भी जिक्र किया। श्री सोरेन ने राज्य में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। उन्होंने विकसित झारखंड के निर्माण के सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया।
3: मेरे युवा साथियों, रोजगार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमारा उद्देश्य केवल रिक्त पद भरना नहीं, हमारा लक्ष्य ऐसे झारखंड बनाना है जहां सरकारी सेवा के साथ साथ उद्योग, एमएसएमई, कृषि, डेयरी, मत्स्य, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप के क्षेत्रों में भी लाखों नए अवसर तैयार हों।
0: उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के उपरांत ध्वजारोहण किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर राज्यपाल ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक और अनियमितताएं स्वीकार नहीं की जा सकती। श्री गंगवार ने परीक्षा प्रणाली की कमियों की समीक्षा कर उन्हें दूर करने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया।
4: परीक्षा व्यवस्था में प्रश्न पत्र लीक, कदाचार अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं मेहनत और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों के मनोबल और भविष्य को प्रभावित करती है। मैं अपेक्षा करता हूं कि राज्य सरकार परीक्षा प्रणाली की कमियों की गहन समीक्षा कर उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
0: स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के अलग अलग जिलों में मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चायबासा में मंत्री दीपक बिरवा ने झंडोत्तोलन किया, जबकि लोहरदगा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

0: बांदा में मंत्री इरफान अंसारी और बोकारो में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। गिरिडीह में मंत्री सुदिव्य कुमार जबकि रामगढ़ में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देवघर में मंत्री हफीजुल हसन और पलामू में मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने ध्वजारोहण किया और राज्य में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी साझा की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और इस बात पर जोर दिया कि देश हमेशा उनके विचारों और कार्यों से प्रेरणा लेता रहेगा। जश्न आजादी पर समूचे राज्य में देशभक्ति का जोश और जज्बा देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर विधानसभा के अधिकारी और कर्मी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान श्री महतो ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया।
1: झारखंड की धरती पर स्वतंत्रता का स्मरण करते हैं तो हम बाबा तिलका मांझी ने 1784 में अंग्रेजों के सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध का बिगुल बजाया। सिद्धो कानो, चांद भैरव, फूलो झानो ने 1855 में संथाल हुल के नेतृत्व दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा ने औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती किया।
0: स्वतंत्रता दिवस पर हजारीबाग के कर्जन ग्राउंड में प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं से प्रमंडल के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में उपायुक्तों ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों समेत अन्य जगहों पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया। रांची में छात्रों का आंदोलन आज 22वें दिन भी जारी रहा। राज्य सरकार तक संदेश पहुंचाने के लिए छात्रों और अभ्यर्थियों ने आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। तिरंगा यात्रा में शामिल युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। राज्य के कई इलाकों में 18 अगस्त तक भारी बारिश के आसार हैं। आज गुमला और खूंटी समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं कल सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और खूंटी में भारी बारिश की संभावना है। 17 अगस्त को गुमला और सिमडेगा समेत कुछ अन्य जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं 18 अगस्त को हजारीबाग समेत कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को किया संबोधित। विकसित भारत के लिए सप्तधारा की घोषणा। युवाओं को संसाधनों की नहीं होने दी जाएगी कमी। राज्य भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शान से लहराया तिरंगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर दिया जोर। जश्न आजादी पर समूचे राज्य में दिखा देशभक्ति का जोश और जज्बा। विधानसभा राजनीतिक दलों के कार्यालयों समेत कई स्थानों पर ध्वजारोहण। रांची में आंदोलनरत छात्रों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। न्याय की आवाज की बुलंद। गड़बड़ियों के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। और गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज और कल भारी बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता।
1: राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। गोड्डा के गांधी मैदान में श्रम एवं नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव जी ने तिरंगा फहराया। मंत्री श्री यादव ने परेड की सलामी लेकर जिले वासियों को संबोधित कर जिला सहित राज्य में विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराया है।
2: स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारा सराया खेल खोसा ये प्रत्येक नागरिक को बेहतर और पूरा स्वास्थ्य सदाएं दे स्वास्थ्य एवं ये सुसवा सेवा लजनुम क्या ध्यान धर ले संसार असन एवं पूर्ण एकांजान ले चले प्रगति हुए थे।
1: गोड्डा महागामा नए रेल मार्ग के साथ गोड्डा में बन रहे वासिंग पिट का निरीक्षण करने डीआरएम मनीष गुप्ता गोड्डा पहुंचे। गत दिनों निरीक्षण के दौरान डीआरएम श्री गुप्ता ने भागलपुर गोड्डा रेल मार्ग से सेफ्टी से जुड़ी मामले का निरीक्षण किया।
3: प्राइमरीली तो आज विजिट जो है हमारी भागलपुर गोड्डा वाला सेक्शन में सेफ्टी को लेकर है। ट्रैक SMT TRD और बाकी जो हम लोगों के इक्विपमेंट्स हैं, हम लोगों के एसेट्स हैं, उनके रखरखाव से रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है।
1: वहीं मानसून के गतिशील होने के साथ किसान खेती कार्य में लगे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरज किशोर।
0: अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब आइए सुनते हैं झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का राज्य की जनता के नाम संदेश।
1: जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं और अनेक अनेक बधाइयां। आज हम उस महान भारत के स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं जिसके लिए असंख्य वीरों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर, उन सभी महान विभूतियों को जिनके त्याग और संघर्ष ने भारत को स्वतंत्रता का एक अमूल्य उपहार दिया। झारखंड के इस पवित्र धरती ने भी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और न्याय के लिए अनेक महान योद्धा देश को दिए, जिनमें से हमारे राज्य के भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी, फूलो जानू, नीलाम्बर पीताम्बर, शेख भिखारी और हमारे सभी अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। साथ ही मैं दिसोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी को भी सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने जल जंगल जमीन, आदिवासी अस्मिता और झारखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष को समर्पित किया। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि अधिकार संघर्ष से मिलते हैं और विकास तभी सार्थक होता है जब उसमें समाज के अंतिम व्यक्ति भी सहभागी बने। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आज़ादी का नाम नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर युवा को सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिले, हर किसान को समृद्धि मिले, हर महिला आत्मनिर्भर बने, हर झारखंडी अपना भाषा, संस्कृति, परंपरा पर गर्व के साथ आगे बढ़े और सभी को समान अवसर मिले, समान सम्मान और न्याय के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। आज भारत अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में है और झारखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर एक नए पड़ाव पर खड़ा है। हमारे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त केवल इतिहास का एक तिथि ही नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया और झारखंड के महान जननायक ने हमें स्वाभिमान, प्रकृति के प्रति सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। इसलिए आज जब हम स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं तब सबसे पहले उस विरासत को नमन करना हमारा कर्तव्य है जिसने झारखंड की आत्मा को आकार दिया। हमारे लिए संस्कृति केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन भी है। जल जंगल और जमीन के साथ संतुलित जीवन जीने की जो जीवन दृष्टि हमारे पूर्वजों ने हमें दी है आज पूरा विश्व उसी दिशा में समाधान खोज रहा है। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की बात कर रही है तब हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी सभ्यता सदियों से इन्हीं मूल्यों पर आधारित है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानू और हमारे सभी महान नायकों ने केवल अन्याय के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया बल्कि एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां सम्मान, समानता, सामुदायिक सहभागिता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता जीवन का आधार हो। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां राज्य का हर युवा आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और उद्यमिता में अग्रणी हो, जहां हमारी सभी भाषाएं, साहित्य के लोक कला, संस्कृति, संगीत, विरासत नई पीढ़ी तक सम्मानपूर्वक पहुंच सके, जहां लाह, तसर, बांस, मिलेट, औषधीय पौधे और लघु वनोपज केवल पारंपरिक आजीविका न रहे बल्कि वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और बाजार से जुड़कर लाखों परिवारों की आय का आधार बने, जहां ग्राम सभा, स्थानीय ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करे, जहां विकास का अर्थ केवल खनिज का दोहन नहीं बल्कि मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक विरासत तीनों का संतुलन विकसित हो। झारखंड केवल भारत का एक राज्य नहीं है, यह भारत की आदिवासी

चेतना का केंद्र है और हमारा प्रयास है कि झारखंड की पहचान केवल खनिज संपदा से नहीं बल्कि पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति, समृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और सामाजिक न्याय पर आधारित विकास मॉडल से बने। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में झारखंड पूरे देश को यह दिखाएगा कि विकास और प्राकृतिक, आधुनिकता और परंपरा, उद्योग और पर्यावरण के बीच टकराव नहीं बल्कि संतुलन स्थापित किया जा सकता है। मेरे युवा साथियों, हमारे विरासत हमें पहचान देती है, लेकिन हमारे युवा उस पहचान को भविष्य देती है। यदि हमें अगले 25 वर्षों का झारखंड बनाना है तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति हमारे युवा होंगे। आपका शिक्षा, आपका कौशल, आत्मविश्वास और आपके सपने ही विकसित झारखंड की असली पूंजी है। मैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर विशेष रूप से आपसे संवाद करना चाहता हूं। झारखंड के लाखों युवा आज अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके माता पिता अपनी क्षमता से बढ़कर उन्हें पढ़ा रहे हैं। इसलिए यह हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है कि उनकी मेहनत का सम्मान हो, उनके प्रतिभा को न्याय मिले। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठे हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होता बल्कि पूरी एक पीढ़ी का विश्वास प्रभावित होता है। मैं आज इस ऐतिहासिक मंच में झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके मेहनत को किसी भी माफिया, किसी भी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। देश के अनेक राज्यों और कई राष्ट्रीय परीक्षाओं में भी प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा संबंध गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। यह पूरे देश के सामने एक गंभीर चुनौती है, लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि दूसरे राज्यों में क्या हुआ उससे झारखंड की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण झारखंड का युवा है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका भविष्य है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका विश्वास है। इसलिए केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है। जांच पूरी निष्पक्षता से होगी, जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि उसके संलिप्तता सिद्ध होती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही हम बिना प्रमाण के किसी को दोषी ठहराने की भी राजनीति नहीं करेंगे। न्याय होगा और निष्पक्ष होगा। साथियों, सिर्फ दोषियों को पकड़ना ही समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे भविष्य में कोई भी युवाओं के सपने के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य है समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित होना, पारदर्शी और तकनीकी सुरक्षित परीक्षा प्रणाली, उत्तर कुंजी एवं OMR की समयबद्ध उपलब्धता, परीक्षा प्रक्रिया में बहुस्तरीय जवाबदेही और ऐसी व्यवस्था जिसमें पारदर्शिता अपवाद नहीं बल्कि एक नियम हो। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं सरकार के साथ आपकी सहभागिता चाहते हैं। इसलिए हमने छात्रों की बात छात्रों के साथ अभियान प्रारंभ किया है। मैं चाहता हूँ कि झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक शिक्षाविद और प्रत्येक अभिभावक परीक्षा सुधार में इस अभियान का सहभागी बने। हम उनके सुझाव सुनेंगे, विशेषज्ञों के साथ उनका अध्ययन करेंगे और जहाँ संभव होगा उन्हें नियमों एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लागू करेंगे, क्योंकि मेरा विश्वास है सबसे अच्छी परीक्षा व्यवस्था वही होगी जिसमें बनाने वाले विद्यार्थियों के भी भागीदारी हो। मेरे युवा साथियों, रोजगार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। हमारा उद्देश्य केवल रिक्त पद भरना नहीं, हमारा लक्ष्य ऐसा झारखंड बनाना है जहां सरकारी सेवा के साथ साथ उद्यमी, MSME, कृषि, डेयरी, मत्स्य, पर्यटन, डिजिटल सेवाएं और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी लाखों नए अवसर तैयार हों। इसलिए आने वाले समय में JPSC, JSSC तथा अन्य भर्ती एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में नियुक्ति प्रक्रियाएं समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाई जाएंगी ताकि युवाओं को अवसर भी मिले और व्यवस्था पर विश्वास

विश्वास भी मजबूत हो। मैं आज झारखंड के प्रत्येक युवा से केवल एक आग्रह करना चाहता हूँ, अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखिए, अपना परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके सपनों का रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरा व्यक्तिगत दायित्व भी है। मैं झारखंड के युवाओं से केवल धैर्य नहीं मांगता, मैं उनका विश्वास भी मांगता हूँ और उस विश्वास को बनाए रखना मेरी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम ऐसी परीक्षा व्यवस्था बनाएंगे जिस पर अभ्यर्थी को भरोसा हो, समाज को विश्वास हो और देश झारखंड का उदाहरण दे। मैं किसानों से भी कुछ कहना चाहता हूँ। झारखंड की आत्मा उसके खेतों में बसती है। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत नींव है। हमने किसानों को सिंचाई, बीज समर्थन मूल्य, कृषि यांत्रिकरण और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मजबूत करने का प्रयास किया है। राज्य में कृषि और बागवानी के क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास किया गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत राज्य के लगभग 2,15,000 एकड़ जमीन पर वृक्षारोपण किया गया है और लगभग 3,00,000 परिवारों को आजीविका के नए माध्यम से जोड़ा गया है। इनके द्वारा उत्पादित आम विदेशों में भी सफलतापूर्वक निर्यात भी किया गया है। हमारा लक्ष्य केवल खेती को सहारा देना नहीं बल्कि खेती को लाभकारी बनाना है। आने वाले वर्षों में हमारा प्रयास होगा कि झारखंड का किसान केवल धान उत्पादक बनकर ना रहे बल्कि कृषि उद्यमी बने। हम फल, सब्जी, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, कुकुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, लाह, तसर, मिलेट, औषधि पौधों और लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को भी नई गति देंगे। साथियों, किसी भी राज्य की आर्थिक शक्ति केवल बड़े उद्योग से ही नहीं बल्कि लाखों छोटे उद्यमियों से बनती है। झारखंड के युवा, कारीगर, बुनकर, महिला स्वयं सहायता समूह, हस्तशिल्पी और छोटे उद्यमी हमारे अर्थव्यवस्था की वास्तविक ताकत है। एमएसएमई क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी भूमिका निभाता है, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है। वर्तमान में झारखंड में 16,00,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी एमएसएमई हैं। इनमें 8,00,000 से अधिक सूक्ष्म इकाइयां शामिल हैं जो 60,00,000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। हमारा लक्ष्य एक ऐसे औद्योगिक वातावरण तैयार करने का है जहां स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे। हर जिले में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग विकसित हों, स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहन मिले और युवा को अपने ही जिले में सम्मानजनक रोजगार मिले। हाल ही में हमारी सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन राज्य के विकास को दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही है। इस राष्ट्र मंच पर उद्योग जगत, निवेशकों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के साथ उद्योग, पर्यटन, आईटी, एआई, आधारभूत संरचना और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। सरकार के प्रयासों के कारण कंसल्टेशन में प्रमुख कॉरपोरेट समूह के साथ साथ लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 10 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इन निवेश प्रस्तावों से राज्य के 22,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा देश भर में हो रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 3 वर्षों से लगातार हमारी बहनों, दीदियों के चेहरे पर मुस्कान की गारंटी बन गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सुधार हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 2,500 रुपये प्रति माह नियमित वित्तीय सहायता से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं और अपनी
उद्यमशीलता का विकास करने में

में ज्यादा सक्षम हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपया का आर्थिक लाभ सीधे लाभुकों के खाते में उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन हमारा अगला लक्ष्य इससे भी बड़ा है। हम चाहते हैं कि झारखंड की महिलाएं न केवल योजनाओं की लाभार्थी रहे बल्कि किसान उत्पादक संगठन की नेता बने, उद्यमी बने, निर्यातक बने, डिजिटल अर्थव्यवस्था की सहभागी बने, झारखंड की नई विकास यात्रा का अग्रदूत बने। ग्रामीण महिलाएं सखी मंडल के माध्यम से संगठित होकर स्वावलंबन एवं आर्थिक आत्मनिर्भर की मिसाल बन रही हैं। सखी मंडल की दीदियों द्वारा निर्मित प्लास ब्रांड अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 3.25 लाख से अधिक सखी मंडल का गठन कर 35 लाख परिवारों को सखी मंडल में जोड़ा जा चुका है। इन सखी मंडलों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए की राशि चक्रीय निधि एवं सामुदायिक निवेश निधि के रूप में तथा 20,000 करोड़ रुपए बैंकों से क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण महिलाओं के हाथों से संचालित गुमला जिले का जोहार रागी मिशन एक आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। महज 10 महिलाओं के साथ वर्ष 2022 से शुरू हुआ रागी मिशन और बाजरा प्रोसेसिंग आज 35,000 से अधिक किसानों और 500 से अधिक महिला शेयर धारकों की आजीविका का सशक्त साधन तथा ग्रामोदय से भारत का उदय का एक प्रेरक मिसाल बन गया है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गांव देहात में रहने वाली माताएं बहनें झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने में अग्रसर है। साथियों, स्वास्थ्य केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता का आधार है। हमारा उद्देश्य ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करना है जो शहर और गांव दोनों के नागरिकों को समान चिकित्सा सुविधा दे। हम आधुनिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, टेलीमेडिसिन और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। पंचायतों में दवा दुकान खोलने के वादे को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमारी सरकार राज्य के सभी पंचायत को डेडिकेटेड एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका संचालन स्थानीय ग्राम एवं पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सुपर स्पेशलिस्ट रिम्स 2 का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा 6 नए चिकित्सा महाविद्यालय पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, धनबाद में भी निर्माण कार्य किए। ग्रासरूट लेवल पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कराने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तथा चिकित्सा महाविद्यालयों को आधुनिक बनाने का कार्य किया जाएगा। हम बीमारी के इलाज से अधिक रोकथाम, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य जागरूकता पर बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड का प्रत्येक नागरिक यह विश्वास करे कि कठिन से कठिन बीमारी के समय भी उसकी सरकार उसके साथ खड़ी है। हमारा लक्ष्य केवल बेहतर अस्पताल बनाना नहीं बल्कि एक स्वास्थ्य सक्षम और आत्मविश्वासी झारखंड का निर्माण करना है। प्यारे झारखंड वासियों, आज जब हम स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहे हैं और झारखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा एक नए पड़ाव पर खड़ा है, तब यह समय केवल उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का नहीं बल्कि आने वाले 25 वर्षों का दिशा तय करने का है। हमारा सपना ऐसा झारखंड है जहां विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जहां झारखंड अस्मिता और आधुनिक प्रगति के साथ आगे बढ़े, जहां किसान सम्मान के साथ समृद्धि का जीवन जिए, जहां महिलाएं विकास की सहभागी ही नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बने, जहां हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाए, जहां हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले और जहां प्राकृतिक संसाधनों का लाभ सबसे पहले झारखंड के लोगों को मिले। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां विकास की पहचान केवल ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि ऊंचे अवसरों से हो, जहां हमारी प्रगति केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों के जीवन में दिखाई दे। मुझे झारखंड की जनता
पर पूरा विश्वास है, मुझे अपने किसानों पर विश्वास।

0: चांद भैरव, शेख भिखारी, नीलांबर पीतांबर, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो और दिसोम गुरु शिबू सोरेन जैसे महान व्यक्तियों के संघर्ष को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय झारखंड, जय हिंद, जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का राज्य की जनता के नाम संदेश। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक रंग। जी हाँ श्रोताओं, आ जाइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में कुछ देशभक्ति फिल्मी गीत।

उपकार फिल्म का गीत अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। गीत के बोल गुलशन बावरा के थे, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। अब आइए सुनते हैं पूरब और पश्चिम इस फिल्म से। आवाज़ें महेंद्र कपूर और साथियों की है, गीत के बोल इंदिवर के हैं, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

पूरब और पश्चिम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, और अब आइए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में ही।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं जागृति फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर, आदिनाथ मंगेशकर और साथियों ने। गीत के बोल प्रदीप के हैं, संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

0: हम एक रंग में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आप लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में ई कचरा का सदुपयोग, संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण का।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम विज्ञान जगत में। और इस कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भारी ई कचरा। श्रोताओं, विज्ञान के अनेकों देन हैं और इसके इतने चमत्कार हैं जिनका उपयोग करके मानव जीवन बड़ा ही सरल और सुगम हो गया है। हम अपने दैनिक जीवन में विज्ञान के कई उपकरणों जो विज्ञान की देन है उनका उपयोग करते हैं और अपने जीवन को सरल बनाते हैं। कितने ही तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन श्रोताओं, विज्ञान के ये देन खतरा बनकर आज मंडरा रहे हैं जीव जगत पर, पर्यावरण पर। श्रोताओं, जब ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं या किसी काम में आने लायक नहीं रहते हैं तो वे कूड़े का ढेर बन जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है, जब वो जमा हो जाता है तो पूरे पर्यावरण के लिए एक विषाक्त माहौल पैदा कर देता है। और आज के समय में, आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जिसे हम ई कचरा कहते हैं, दुनिया भर के विकसित और विकासशील देशों में उभरती समस्याओं में से एक है। श्रोताओं, इसके कई तरह के घटक होते हैं जिनमें मूल्यवान सामग्री होती है, तो कुछ में जहरीले पदार्थ होते हैं जो मानव स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। श्रोताओं, अध्ययनों से पता चला है कि भारत में 2010 में 0.4 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न हुआ था, जो कि 2021 में 5 मिलियन टन ई कचरा बढ़कर हो गया है, और जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और चीन से कम है। तो श्रोताओं, ई कचरा के निपटान और पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, नहीं तो इनके खतरों से भविष्य अंधकार में हो सकता है। इनके निपटान और पुनर्चक्रण यानी कि मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग के लिए उचित बुनियादी सुविधाओं और प्रक्रियाओं की कमी के साथ साथ भारत में ई कचरा प्रबंधन महत्वपूर्ण विषय हो गया है। सामान्यतः ई कचरे के पुनर्चक्र और दूसरे देशों से ई कचरे के पुनर्चक्रण साथ ही कचरे को डंप करने से उत्पन्न होता है। इनमें से ज़्यादा कचरा डंपिंग यार्ड या पुनर्चक्रण केंद्रों में जा रहा है, जो पर्यावरण और नीति निर्माताओं के लिए चुनौती पेश कर रहा है। सामान्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारे जीवन को खुशहाल और सरल बनाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो मौजूद विषाक्तता है उसके कारण इनका निपटान और पुनर्चक्रण अगर सही तरीके से ना हुआ तो ये स्वास्थ्य के लिए एक बुरा स्वप्न बनकर रह जाएगा, और इसका खामियाजा हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। अधिकांश उपयोगकर्ता, हम जैसे उपयोगकर्ता हैं, वो कंप्यूटर, मॉनिटर या टीवी के तेजी से बढ़ते उपयोग के प्रभावित नकारात्मक प्रभाव से अनजान हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और अगर वो खराब हो जाता है उसे कूड़े के ढेर में तब्दील कर देते हैं, लेकिन उससे उत्पन्न जो खतरा है उससे हम अनजान होते हैं। अगर इनका ठीक से प्रबंधन ना किया जाए तो ये बहुत बड़ी कठिनाई साबित होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स संचार का भविष्य हैं। ये जितने उपकरण हैं ये और आने वाले समय में भी कई अन्य गैजेट्स का उत्पादन या निर्माण किया जाएगा, लेकिन विभिन्न उपकरणों के कम जीवन काल के कारण उन्हें कचरा बनते देर नहीं लगती और

0: पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है जब इनका निपटान सही तरीके से नहीं होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लाखों बच्चे, किशोरों, गर्भवती माताओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी और तत्काल समुचित कार्रवाई की आवश्यकता है, जिनका स्वास्थ्य बेकार पड़े विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अनौपचारिक प्रसंस्करण के कारण खतरे में पड़ गया है। ई कचरे की मात्रा वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। हर देश, हर व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आज कर रहे हैं। ई कचरे के प्रबंधन के लिए भारत में 2011 से कानून लागू है, लेकिन जब तक ई कचरे के प्रबंधन से संबंधित जागरूकता की कमी रहेगी तो समस्या बरकरार रहेगी। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए, ई कचरे से उत्पन्न हानियों के बारे में उन्हें समझाया जाए। श्रोताओं, जैसे जैसे हमारी दुनिया अधिक से अधिक डिजिटल होती जा रही है, ये समस्या जो है वो बड़ी बनती जा रही है। ये सिर्फ पर्यावरणीय चिंता का मामला नहीं है, बल्कि इसका मानव स्वास्थ्य पर गंभीर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, तंत्रिका संबंधी विकार शामिल हैं, और इसके साथ साथ ये कैंसर को भी जन्म देता है। ये संपूर्ण जीव जगत को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है, और जब इसका उचित तरीके से निपटान नहीं होता है तो ये लैंडफिल में समा सकता है, जहां इसे नष्ट होने में सालों लग सकते हैं। और इस दौरान ई कचरे में मौजूद जहरीले पदार्थ आसपास के वातावरण में पहुंच सकते हैं, मिट्टी, हवा, पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। इसलिए इन उपकरणों का निपटान बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक करना महत्वपूर्ण है। और अगर किसी उपभोक्ता को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वह उसे दान कर सकता है, ताकि किसी और के द्वारा उसका उपयोग किया जा सके। जिस इलेक्ट्रॉनिक सामान को रखने की ज़रूरत नहीं है उसे वापस कंपनियों को दिया जा सकता है, और वे उस उत्पाद के बदले में विनिमय सेवा प्रदान करने की पेशकश करती हैं। श्रोताओं, हर देश की सरकार ई कचरा प्रबंधन पर अब जागरूक हो उठी है, काम कर रही है, और वैज्ञानिक तरीकों से इसका पुनर्नवीनीकरण किया जाने लगा है, या फिर औपचारिक क्षेत्र में छोटे छोटे भागों में या समग्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाने लगा है। अगर इसे सही तरीके से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है तो खतरे की संभावना कुछ कम हो जाती है। भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अब इलेक्ट्रॉनिक कचरे को इकट्ठा करना और रिसाइकल करना शुरू कर दिया है, और अपनी जो समावेशन नीतियां हैं, उनकी कार्य करने की जो शैली है, पद्धतियां हैं, उसकी सहायता से जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे हैं उनका रिसाइकलिंग कर जो हमारे लक्ष्य हैं विकास के, उन्हें पूरा करने में सहायता कर रही हैं, और इस क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित बना रही हैं। और इसके साथ साथ ज़रूरत है, जैसा हमने कहा, कि लोग बाग जागरूक हों, लोग समझें कि इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का क्या हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होगा जब ये वेस्ट के रूप में मौजूद होगा हमारे आसपास। तो श्रोताओं, जागरूकता से हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, और साथ ही साथ इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग भी बखूबी कर सकते हैं। तो आज हमने आपसे बातें की स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भारी ई कचरा कार्यक्रम विज्ञान जगत के तहत, और इसके साथ ही हमें दीजिए कार्यक्रम विज्ञान जगत से इजाज़त अगले अंक तक के लिए। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे ई कचरा का सदुपयोग, संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण का था। इसी के साथ विज्ञान जगत कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। आकाशवाणी

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

सुनिए, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये चौथा और अंतिम सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्ष सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तथा अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर

भारी हंगामा किया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने इन मुद्दों पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण बैठक एक मिनट के अंदर ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही फिर आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच ही विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने को भी तैयार है। इस बीच विधि एवं न्याय मंत्री मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। सदन में व्यवस्था न बनते देख हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक फिर शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 का उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। मंत्री के जवाब के बाद कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात विशेष उल्लेख के जरिए सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामा देखते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कुछ देर बाद ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार

राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इस दौरान शोरगुल जारी था और हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हो गया और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सदन में वही नजारा दिखा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वहीं कुछ देर बाद विपक्ष के कई दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। सदन ने चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी और विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया जिसमें कई सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कुछ मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा, नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। 2 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और द्रमुक ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी। नियम अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति वर्ष 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने बिना चर्चा के विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास ने कहा कि भाजपा की एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति से अनुरोध किया कि वे संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कृत सदस्यों को

0: टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत न हो। सभापति ने कहा कि वे संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में हंगामा देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होने पर भाजपा सदस्य सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। इसके बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। उसके बाद सदन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा का सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन ने विधेयक विपक्ष द्वारा पेश संशोधन को खारिज कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे आरंभ होने पर अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वे अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम की सभी 6 अंतरों के गायन के रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता तथा सदस्य सदन में मौजूद थे। उधर राज्यसभा भी बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये राज्यसभा का 271वां सत्र था। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। श्री खड़गे ने मांग की कि मंच का शुद्धिकरण करने वाले के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। सभापति राधाकृष्णन तथा सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस घटना की निंदा की। सदन के नेता ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामलों में राज्यों के अधिकार बरकरार रखेंगे। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। सदन ने विधेयक को राज्यसभा के प्रवर समिति के पास भेजने के लिए द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश संशोधन को विध्वनिमत से खारिज कर दिया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले सभापति ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39.17% रही। हालांकि विधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अभी आप संसद में हुई सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब लीजिए प्रस्तुत है राज्य भर में स्वतंत्रता दिवस समारोहों पर आधारित राज्य स्तरीय समन्वित रेडियो रिपोर्ट।

0: झारखंड में पारंपरिक रूप से मनाया गया। मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में संपन्न हुआ। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली।
1: समीक्षा क्रम में मध्य से
0: उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन,
2: जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं और अनेक अनेक बधाइयां। हमारे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त केवल इतिहास की एक तिथि नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्र भारत दिया और झारखंड के महान जननायकों ने हमें स्वाभिमान, प्रकृति के प्रति सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां राज्य का हर युवा आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और उद्यमी में अग्रणी हो, जहाँ हमारी भाषाएं, साहित्य, लोककला, संगीत और सांस्कृतिक विरासत नई पीढ़ी तक सम्मानपूर्वक पहुंच सके, जहाँ ग्राम सभा, स्थानीय ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करें, जहाँ विकास का अर्थ केवल खनिज का दोहन नहीं बल्कि मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक विरासत तीनों का संतुलित विकास हो। मेरे प्यारे युवा साथियों, हमारी विरासत हमें पहचान देती है लेकिन हमारे युवा उस पहचान को भविष्य देते हैं। यदि हमें अगले 25 वर्ष का झारखंड बनाना है तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति हमारे युवा होंगे। झारखंड के लाखों युवा आज अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए यह हमारा सर्वोच्च जिम्मेदारी है उनकी मेहनत का सम्मान हो और उनकी प्रतिभा को न्याय मिले। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठे हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का विकास प्रभावित होता है। मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत को किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। देश के अनेक राज्यों और कई राष्ट्रीय परीक्षाओं में भी प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा संबंधित गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। ये पूरे देश के सामने गंभीर चुनौती है, लेकिन मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि दूसरे राज्यों में क्या हुआ उससे झारखंड की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण झारखंड का युवा है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका भविष्य है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका विश्वास है। इसलिए केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है। मैं किसानों से भी कुछ कहना चाहता हूँ। झारखंड की आत्मा उसके खेतों में बसती है। हमारे किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत नींव भी है। राज्य की कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों में को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास किया जा रहा है। हम फल, सब्जी, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, लाह, तसर, मिलेट, औषधि पौधों और लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे। हाल में ही हमारी सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस राष्ट्रीय मंच पर उद्योग जगत, निवेशकों, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों तथा उद्योग, पर्यटन, आईटी, एआई, आधारभूत संरचना और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। सरकार के प्रयास के कारण कंसल्टेशन में प्रमुख कॉरपोरेट समूह के साथ लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 10 MOU हस्ताक्षर किए गए हैं। मेरी माताओं।

बहनों और बेटियों, किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं।

0: बहनों दीदियों के चेहरे पर मुस्कान की गारंटी बन गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 2,500 रुपये प्रतिमाह नियमित वित्तीय सहायता से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं।
1: उधर उपराजधानी दुमका में माननीय राज्यपाल झारखंड श्री संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली परेड की सलामी ली और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।
2: आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन है। 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान, संघर्ष, त्याग और स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये पावन अवसर उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और बलिदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का दिन है, जिनके संघर्षों ने हमें स्वतंत्र भारत का नागरिक कहलाने का गौरव प्रदान किया। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई तथा सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। हमारे झारखंड की धरती ने देश के स्वतंत्रता संग्राम तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, तिलका मांझी, नीलांबर, पीतांबर तथा अनेक ज्ञात अज्ञात वीरों ने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए स्वाभिमान और अधिकार की रक्षा का संदेश दिया। प्रिय साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आत्मविश्वास और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवाओं, किसानों तथा वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए युवाओं से ड्रग्स तथा सभी प्रकार के नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया है। मैं आप सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप स्वयं नशा मुक्त रहें, अपने साथियों को जागरूक करें तथा अपने शिक्षण संस्थानों और समाज में नशा मुक्त के संदेश वाहक बनें।
1: इधर झारखंड विधानसभा में माननीय अध्यक्ष श्री रविन्द्रनाथ महतो ने ध्वजारोहण किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।
3: आज हम सब भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं और तिरंगे को सलाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये एक उत्सव नहीं बल्कि हमने इतिहास के उस पन्नों को स्मरण कर रहे हैं जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का कुर्बानी, बलिदान, सारा चीज लिखित है। साथ ही भारत की स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति या एक संस्था या एक समुदाय का काम नहीं है, क्षेत्र के संघर्ष का परिणाम, एक सब लोगों के मिलकर जो संघर्ष का परिणाम था उसी का फलस्वरूप हम लोग इस देश को आजाद कर पाए हैं। और इसमें हमारे देश के जो अगुवा नेता थे महात्मा गांधी, जिनके सत्य और अहिंसा का जो मार्ग था इसको अपनाकर देश को आजाद करने का हमें एक शक्ति, एक ताकत मिला था। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने आधुनिक भारत को निर्माण करने के क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के लिए अदम्य साहस और पूर्ण समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया, इसी तरह भारत की धरती ने भी स्वतंत्रता संग्राम को असाधारण बलिदान दिए, जैसे खुदीराम बोस जो कम उम्र में फांसी के मंच तक चढ़ने में द्विधाबोध नहीं किए और हमारे युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बना। और जब हम झारखंड की धरती पर स्वतंत्रता

0: तो हमारी अपनी गौरवशाली परंपरा हमारे सामने आती है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, बाबा तिलका मांझी ने 1784 में अंग्रेजों के सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध का बिगुल बजाया। सिद्धो कानो, चांद भैरव, फूलो झानो ने 1855 में संथाल हुल के नेतृत्व दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा ने औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने के साथ साथ अपने समाज के अधिकार, आत्मसम्मान और अस्तित्व की आवाज को भी मजबूत किया।
1: झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति श्री महेश शरद चंद्र सोनाक ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों और जन समुदाय के समक्ष ध्वजारोहण किया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर से हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट।
2: रिमझिम फुहारों और सुहावने मौसम में आज पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां जिले का स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। पूर्वी सिंहभूम का मुख्य समारोह जमशेदपुर स्थित गोपाल मैदान बिष्टुपुर में संपन्न हुआ, जहां पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने मिली जुली परेड की

0: ध्वजारोहण कर उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा,
1: देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों, भारत के महापुरुषों, वीर शहीदों तथा राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सभी महान विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। झारखंड और विशेषकर पूर्वी सिंहभूम की धरती वीरता, संघर्ष, त्याग और जन भागीदारी की समृद्ध परंपरा की साक्षी रही है। यह पावन दिवस हमें उन महान बलिदानों को स्मरण करने के साथ साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करने की प्रेरणा देता है। विकास की इस यात्रा में समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुँचे, प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे, युवाओं को अवसर मिले, महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता बढ़े तथा हमारा जिला समावेशी और सशक्त बने। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हुए एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लें। झारखंड में प्रथम सिकल सेल एनीमिया प्रयोगशाला का शुभारंभ सदर अस्पताल पूर्वी सिंहभूम में टाटा फाउंडेशन एवं CCMB भारत सरकार के सहयोग से किया गया है। दिनांक 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 पूर्वी सिंहभूम के सभी ग्रामीण इलाकों में लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना प्रखंड डुमरिया अंतर्गत कंटासोल में 2 एकड़ में कृषि उत्पादन के प्रसंस्करण एवं वनोपज के विपणन हेतु MEZ संरचना का निर्माण किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 5 अगस्त को पूर्वी सिंहभूम जिले की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। जिला प्रशासन जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कटिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जिले का प्रत्येक वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़े। जय हिंद, जय झारखंड।
0: सरायकेला खरसवां जिले का मुख्य समारोह बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां जिले के कई गणमान्य लोग, स्कूली बच्चे और आम जनमानस उपस्थित थे। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने मिलीजुली परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के पश्चात उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने जनमानस को संबोधित कर कहा,
2: आज का यह ऐतिहासिक दिन और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र नायकों और अमर शहीदों को नमन करने का दिन, जिनके अतुलनीय त्याग और बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत की हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे यह सरायकेला खरसावां की पावन धरा क्रांति और संस्कृति की अद्भुत स्थली रही है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, शान भैरव और अमर सिंह फोटो हो जैसे वीरों के पर चिन्हों पर चलते हुए इस क्षेत्र ने आजादी की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। खरसावां का इतिहास हमें सिखाता है कि अपनी माटी, अधिकार और स्वाभिमान के लिए कैसे अडिग रहा जाता है। सरायकेला की विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य शैली हमारी सांस्कृतिक आत्मा है।

0: जिला प्रशासन इस कला और इसके कलाकारों के संरक्षण एवं वैश्विक पंचमुख प्रोत्साहन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन वर्ष 2026 में सरायकेला कलाकारों को समृद्धि और सशक्तिकरण की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य सरकार की दूरगामी योजनाओं तथा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना को जिले के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुँचाया जा रहा है। श्री मनोज वर्गीय जी भारतीय पुलिस सेवा पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावा के मार्गदर्शन निर्देशानुसार जिलों को अपराध बनाने की एवं सभी को सुरक्षा का माहौल प्रदान करने में जिला पुलिस प्रशासन बेहतर कार्य कर रही है। सबसे हर्ष की बात है कि बीते दिनों में कुछ दिन पहले यहाँ से कुछ नक्सलियों को जिला प्रशासन ने बिल्कुल अपनी निशानदेही पे बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद के लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे हमारा जिला अब पूर्णतः नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। आइए आज के इस अवसर पर हम अपने अमर शहीदों के सपनों को झारखंड को एक समृद्ध आत्मनिर्भर विकसित सरायकेला खरसावां के निर्माण का संकल्प दोहराए। पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस के पुनीत अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय
1: झारखंड। इस तरह 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। जमशेदपुर से विवेक कुमार आदित्य, राजीव रंजन तिवारी, जितेंद्र कुमार मांझी और कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार राय के साथ मैं निमिषा बिरूली।
2: उधर कोल्हान प्रमंडल के मुख्यालय चाईबासा में हुए झंडोत्तोलन की रिपोर्ट आकाशवाणी चाईबासा के प्रतिनिधि द्वारा।
3: हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 80वीं स्वतंत्रता दिवस पश्चिम सिंहभूम में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी गैर सरकारी संस्थानों स्कूल कॉलेजों में झंडोत्तोलन किया गया। पश्चिम सिंहभूम में मुख्य समारोह स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में आयोजित हुआ, जहां झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरवा ने परेड की सलामी ली, तत्पश्चात झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर मंत्री दीपक बिरवा ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा,
4: प्यारे देशवासियों, यह दिन हम सबके लिए अत्यंत हर्ष एवं उल्लास का दिन है। हम सब अपनी आजादी का 80वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए प्राधीनता से मुक्ति का त्यौहार है। कई पीढ़ियों के ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमारी आज़ादी का सपना साकार हुआ था। उन सभी ने त्याग और बलिदान के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके शौर्य और पराक्रम के बल पर ही आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। मैं उन सभी अमर सेनानियों की पवन स्मृतियों को श्रद्धापूर्ण समन करता हूँ।
3: मंत्री दीपक बिरवा ने विकास योजनाओं पर जानकारी देते हुए कहा,
4: वर्तमान में हमारी सरकार देश एवं जिला के विकास कार्यों को गति देने के लिए कृत संकल्प है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबू आवास योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत कुल 21,030 परिवारों के लिए 420 करोड़ 60 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई, जिसमें से 1,141 आवासों को का निर्माण पूर्ण कर लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वित्तीय वर्ष 2024-25 कुल 18,938 परिवारों के लिए 227,25,60,000 की वित्तीय स्वीकृति दी गई। पश्चिमी सिंहभूम जिला ने विकसित भारत जी राम जी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिरसा हरित ग्राम योजनाओं के क्रियान्वयन में अपार सफलता पाई है। इस चालू वर्ष में सभी प्रखंडों के किसान भाइयों ने प्रखंड में लगाए गए आम स्टॉलों एवं अन्य माध्यमों से आम एवं अन्य फलों उत्पादन की बिक्री कर 1,30,00,000 की शानदार आय अर्जित किया है।
3: और इस तरह पूरे पश्चिमी सिंहभूम में 80वीं स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रस्तुतकर्ता प्रदीप कुमार, प्रस्तुति स्वर सुनीता हांसदा, बाह्य ध्वनि अंकन सह संपादन रमेश दास और सहायक संजीत राणा और देवजीत बोस।
2: उत्तरी छोटा नागपुर के मुख्यालय हजारीबाग में झंडोत्तोलन की रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधि द्वारा।

0: उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के मुख्यालय हजारीबाग में 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह करजन ग्राउंड स्टेडियम में आयोजित किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त श्री विजय कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त श्री गुप्ता ने जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी।
1: सर्वप्रथम मैं अपने उद्भाषण में सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 49 वर्ष की उम्र की सभी महिलाओं को दिसंबर से लेकर हर महीने 2500 रुपए की सम्मान राशि बैंक खाते के माध्यम से दिया जा रहा है। जुलाई 2026 में कुल 282,641 महिला बहनों को सम्मानित किया जा चुका है। सावित्री देवी फूले शक्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में सावित्री देवी फूले किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को ई विद्यावाहिनी पोर्टल एवं 18-19 वर्ष की किशोरियों को सावित्री देवी फूले किशोरी समृद्धि योजना के पोर्टल के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु 13,43,09,000 रुपए का आवंटन उपलब्ध कराया गया है, जिसे सुयोग्य लाभुकों के बीच वितरण किया जाना है। निःशुल्क साइकिल योजना उन्नति का पहिया के तहत द्वितीय वर्ष 2026-27 में हजारीबाग जिला अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 के अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़े जाति के 17,322 छात्र छात्राओं को साइकिल का वितरण किया जा रहा है। जिला में विभिन्न पेंशन योजनाओं में कुल 243,691 लाभुकों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है। पिछले 6 महीने में 14,481 नए लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा गया है।
0: इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों और वीर गति प्राप्त शहीदों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। साथ ही परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टुकड़ियों, सरकारी विभाग तथा समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। इसी तरह हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विभिन्न महाविद्यालयों, विद्यालयों, स्काउट एवं गाइड भवन, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। अपने सहयोगी विक्रम कुमार रंजन, अभिषेक कुमार, सैयद मासूम अहमद और सुनील कुमार के साथ हजारीबाग से मैं राजीव कुमार।
2: पलामू जिला का मुख्य समारोह डाल्टनगंज स्थित पुलिस स्टेडियम में मनाया गया। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के पलामू जिला के सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अदम्य उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह स्थानीय पुलिस स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां माननीय वित्त मंत्री, वाणिज्य कर योजना एवं विकास तथा संसदीय कार्य विभाग झारखंड सरकार श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा ध्वजारोहण किया गया और मिलीजुली परेड की सलामी भी ली गई। इस स्वर्णिम अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर,
4: हार्दिक मुबारकबाद पेश करते मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर पलामू के सर्वांगीण विकास का संकल्प लें। मैं बहुत ही संक्षेप में ये बताना चाहूँगा, यहाँ के जंगलों में कीमती जड़ी बूटी, लाह कथा और केंदु पत्ता जैसे वन संपदा और वन प्राणियों से भरा पड़ा है। हमें गर्व है कि प्रकृति ने पलामू को अनुपम उपहार प्रदान किया। पलामू के गरीबी को मैंने बहुत करीब से देखा है, इसलिए पलामू के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना प्राथमिक। जिले की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, अबुआ आवास योजना, पीएम जनमन योजना, कृषि और संबद्ध कृषि के क्षेत्र में पशुपालन, गव्य और मत्स्य पालन आदि प्रक्षेत्रों में सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। समाज कल्याण की यदि बात करूं तो सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, विधवा पुनर्विवाह योजना, दिव्यांग जनों के लिए विशेष यंत्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। पलामू जिले में मैया सम्मान योजना से 3,45,211 लाभुकों के खाते में 1,035,63,30,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। मैं 15 अगस्त के अवसर पर जिले के किसानों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च कर 2012 में अमानत बराज का निर्माण कराया गया था, लेकिन कतिपय कारणों से किसानों के खेतों में पानी कभी नहीं पहुंचा। ये योजना लगभग

0: खत्म हो चुकी थी, लेकिन मेरे अथक प्रयास से अमानत बराज योजना को पुनर्जीवित करते हुए 947 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस साल का स्वाधीनता दिवस बहुत ही खास, युवा शक्ति जागृत हो रही है, वह अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति जागरूक हो चुकी है। मैं उनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार फिर आपसे हम आशीर्वाद और स्नेह मांगते हैं कि इसी जज्बा के साथ पलामू के विकास के लिए हम काम कर सके। ये शक्ति आप हम सबको दीजिए, हमारी सरकार को दीजिए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।
1: इस प्रकार राज्य के पलामू प्रमंडल में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अदम्य उत्साह के साथ संपन्न हुआ। आकाशवाणी डाल्टनगंज से कार्यक्रम प्रमुख प्रशांत गौरव के साथ मैं संतोष कुमार।
2: इस प्रकार देश के प्रति पूर्ण आस्था, समर्पण एवं देश की उन्नति में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी का संकल्प लिए 80वां स्वतंत्रता दिवस सामाजिक, शैक्षणिक, सरकारी, गैर सरकारी सहित विभिन्न संस्थानों में हर्षोल्लास के साथ संपन्न

आप सुन रहे थे राज्य भर में स्वतंत्रता दिवस समारोहों पर आधारित राज्य स्तरीय समन्वित रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूप

0: रेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के

0: जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इजरायल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इजरायल की सेना ने कहा है कि इजरायली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह

0: 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आजादी का जश्न मनाने में मुल्क की क्यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वो एक मजबूत और खुद कफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वजीर आजम ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने की खातिर नौजवानों की कुव्वत को बरूएकार लाने के मकसद से सप्त धारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम आजादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश

0: नहीं किया जा सका था।
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से

0: कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके।
0: पेश है लाल किले पर यौम आजादी की तकरीबात के सिलसिले में हमारे नामा निगार की यह रिपोर्ट।
2: आज यौम आजादी की तकरीबात के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने का जश्न भी मनाया गया। पहली मरतबा लाल किले पर इन तकरीबात के दौरान वंदे मातरम गाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिफा के वजीर ममलकत संजय सेठ और महकमे दिफा के सेक्रेटरी राजेश सिंह ने लाल किले पहुँचने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। वजीर आजम को पेश किए गए गार्ड ऑफ ऑनर के दस्ते में एक अफसर और फौज, बहरिया, फजाइया और दिल्ली पुलिस से ताल्लुक रखने वाले 24 अहलकार शामिल थे। वजीर आजम ने कौमी परचम लहराया और इसके साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। तकरीब के मकाम पर भारतीय फजाइया के MI-17 तर्ज के 2 हेलीकॉप्टरों के जरिए फूल बरसाए गए। फौज के बैंड ने वंदे मातरम की धुन बजाई और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने कौमी गीत गाया। इसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। इस साल लाल किले पर यौम आजादी की तकरीब के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5,000 खुसूसी मेहमानों को मदऊ किया गया था। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आलमी रहनुमाओं और गैर मुल्की मिशनों ने भारत के 80वें यौम आजादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरासत और इलाकाई नीज आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत और अमरीका के दरमियान मुस्तहकम कलीदी साझेदारी को उजागर किया, जबकि सिंगापुर के सदर थर्मन शनमुगारत्नम ने हुनरमंदी के फरोग, डिजिटल शक्ल दिए जाने, पायदार निजाम और जदीद तर्ज की मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बढ़ते हुए ताउन की अहमियत उजागर की। फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने भी 80वें यौम आजादी पर भारत के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसराइल के सदर आइजक हर्ट्ज़ोग ने अपना पैगाम हिंदी में भी शेयर करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारत के आवाम को मुबारकबाद पेश की। नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह ने भी मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि लातविया की वजारत खारजा ने भारत की लगातार पेशरफ्त, इत्तेहाद और खुशहाली के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उधर इसराइल के सफीर, अर्जेंटीना के सफीर, श्रीलंका के हाई कमिश्नर, नीज नेपाल और फ्रांस के सिफारतखाने, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी हाई कमिश्नर और कनाडा के हाई कमीशन की जानिब से भी मुबारकबाद के पैगाम मौसूल हुए हैं। इनमें भारत के विरसे और गुनागुनियत, इक्तिसादी सलाहियत और फरोग पाते हुए बामी ताल्लुकात को उजागर किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने यौम आजादी के मौके पर मुबारकबाद दी। इनमें फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों और मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो शामिल हैं। नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह की मुबारकबाद के पैगाम के जवाब में जना मोदी ने कहा कि वो दोनों मुल्कों के अवाम की बहबूद और बाहमी खुशहाली के लिए भारत और नेपाल के दरमियान कसीर रुखी और सदियों पुराने तहजीबी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर मिलकर काम करने के पाबंद हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भूटान के वजीर आजम शेरिंग तोबगे के पैगाम के लिए उनके शुक्रिया अदा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ खुसूसी और पायदार साझेदारी को बहुत कद्र की निगाह से देखता है, जो लगातार मजबूत होती जा रही है। स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी के पैगाम के जवाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भारत और स्लोवाकिया के दरमियान जामे साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाए जाने के मुतमन्नी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन का तहरीर करदा एक मजमून शेयर किया है, जिसमें मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों और 2047 तक विकसित भारत की तामीर के अज़्म को उजागर किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस मजमून में नायब सदर जमहूरिया के अंडमान और निकोबार जजायर के हालिया दौरे का तस्करा किया गया है। उनका यह दौरा ऐसे वक्त हुआ जब भारत अपना 80वां यौम आजादी मना रहा है और पूरे मुल्क में मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वाली एक पोस्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी यौम आजादी पर 5,000 रुपए की नकद ग्रांट दे रहे हैं और इसके लिए लोगों के बैंक खाते की तफसीलात मांगी जा रही हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के हकायक का पता लगाने वाली यूनिट ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। PIB ने कहा है कि वजीर आजम ने यौम आजादी पर इस तरह की किसी भी नकद ग्रांट की कोई तायद नहीं की है। उसने लोगों को खबरदार किया है कि इस तरह के पैगामात के जरिए अक्सर जाति या

0: माली जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है। पीआईबी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो चौकस रहें और इस तरह के पैगाम पर भरोसा करने या उन्हें दूसरों तक पहुंचाने से पहले सरकारी वसीलों से इस तरह के दावों की तस्दीक कर लें। इंडोनेशिया के फ्लोरेस जजीरे के करीब आज 7.7 शिद्दत का जलजला आया है। इस वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 47 हो गई है। इस जबरदस्त जलजले के बाद कई झटके महसूस किए गए, जबकि राहत टीमों ने बुरी तरह मुतासर होने वाले इलाकों में पहुंचने की कोशिश जारी रखी। मुल्क के कई हिस्सों में कम से कम 1-1 मीटर सुनामी की लहरों की भी इत्तला है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला जारी रखने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी अगले 2-3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में स्टेशन रोड पर वाकई आज एक इमारत में आग लग गई। आग लगने के बाद कई लोगों का दम घुटने लगा। हुक्काम के मुताबिक मुतासिर लोगों को एक अस्पताल में ले जाया गया। बताया जाता है कि उनकी हालत मुस्तहकम है। हुक्काम का कहना है कि आग बुझाने वाले महकमे ने आग पर काबू पा लिया है। ये वाकया बांद्रा के एमके चेंबूर इलाके में पेश आया। भारत ने नीदरलैंड्स के आमस्टेलवेन में एफआईएच हॉकी आलमी कप के ग्रुप डी के एक मैच में वेल्स को 1-3 गोल से हरा दिया। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। संजय राणा ने 1 गोल किया। वेल्स की तरफ से सैम वेल्श ने 1 गोल किया। गाले में मेजबान श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो देवदत्त पडिक्कल ने 131 रन बना लिए थे, जबकि ऋषभ पंत 27 रन पर खेल रहे थे। इससे कबल यशस्वी जायसवाल ने 32 और कप्तान शुभमन गिल ने 16 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आजादी का जश्न मनाने में मुल्क की क्यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वे एक मजबूत और खुद कफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वजीर अजम ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और खवातीन को बाख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने की खातिर नौजवानों की कुत को बरूएकार लाने के मकसद से सप्तधारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम आजादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रखने की पेशगोई की गई है। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की अनगिनत बधाइयां। आज के फनकार कार्यक्रम में आज उन फिल्मों की बातें जिनमें युद्ध दिखाया गया है या जिनमें हीरो का ताल्लुक फौज से है।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम।

दावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं देखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा

हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते थे, जो 1962 में वही सन 65 और वही 71। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों

आजादी के बाद बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने अपने समाज और समय से प्रेरणा ली। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद भारत को पड़ोसियों की चालों का और उनके हमलों का सामना करना पड़ा, कुछ युद्धों का सामना करना पड़ा और इसीलिए सिनेमा ने भी इसे अपनी कहानियों का विषय बनाया। सन 1961 फिल्म हम दोनों, देव आनंद इस फिल्म में एक फौजी होते हैं और जिंदगी का साथ निभाते चले जाने की बात करते हैं।

लेकिन भारत की पहली बड़ी युद्ध फिल्म मानी जाती है चेतन आनंद की फिल्म हकीकत, जो सन 1964 में आई। ये सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के अंतर्गत हुई रिजांद ला की लड़ाई पर आधारित थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, बलराज साहनी, संजय खान और विजय आनंद वगैरह। एक बाकायदा युद्ध फिल्म हकीकत आज भी सिनेमा के इतिहास की एक

साथियों। सन 1973 में चेतन आनंद लेकर आए हिंदुस्तान की कसम। ये फिल्म भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुए ऑपरेशन कैक्टस लिली पर आधारित थी और इस फिल्म के हीरो थे राजकुमार।

जाहिर है कि फौज और युद्ध को भारतीय सिनेमा ने अपना विषय लगातार बनाया। सन 1975 में आई फिल्म आक्रमण, जिसके मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, अशोक कुमार और राजेश खन्ना। फिल्म की पृष्ठभूमि में युद्ध तो है, लेकिन इस फिल्म की कहानी रोमानियत के इर्द गिर्द बुनी गई है।

0: दरवाजे पर बैठे थे सब, जब मैं पहुंचा घर पे कसकर पूरे जोर से, फिर मैंने सलूट जो मारा सबकी छुट्टी हो गई, फिर मैंने बूट से बूट जो मारा, फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में।
1: गणतंत्र दिवस एक ऐसा मौका है जब हम शान से अपने देश के शौर्य और उसकी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लाल किले की प्राचीर से जब निकलती हैं फौजी टुकड़ियां तो देश गर्व से भर उठता है। यही परिदृश्य दिखाया गया है हमारी फिल्मों में। सन 1970 में देव आनंद लेकर आए अपनी फिल्म प्रेम पुजारी।

सन 1972 निर्देशक रामानंद सागर ने अपनी फिल्म बनाई ललकार। मुख्य सितारे थे राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और माला सिन्हा। ये फिल्म भारत और जापान के बीच युद्ध की एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया तो सन 1967 में मनोज कुमार लेकर आए अपनी फिल्म उपका

सन 1982 में निर्माता शशि कपूर और निर्देशक गोविंद निहलानी फौज पर आधारित अपनी फिल्म लेकर आए विजेता। मुख्य कलाकार थे शशि कपूर, रेखा, अमरीश पुरी, कुणाल और सुप्रिया पाठक। इस फिल्म में संगीत अजीत वर्मन का था और आशा भोसले का गाया ये गाना आज भी हमारे मन को आनंद से भर देता है।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी फिल्मों की बातें जिनमें आपको नजर आए हैं फौजी या युद्ध। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह हमारी विशेष पेशकश है। सन 1991 नाना पाटेकर ने बनाई फिल्म प्रहार।

सन 1995 अशोक कौल लेकर आए अपनी देशभक्ति फिल्म परमवीर चक्र। ये फिल्म भी फौज और उसके संघर्ष पर आधारित थी। साल 1997 में निर्माता निर्देशक जेपी दत्ता लेकर आए अपनी फिल्म बॉर्डर। इसके सितारे थे सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, पूजा बत्रा और श्रावणी वगैरह। ये फिल्म सन 1971 में हुई लुंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी। चूंकि बात जेपी दत्ता की चली है तो आइए उनकी एक और फिल्म की बात करते हैं। साल 2003 में कारगिल युद्ध पर वो लेकर आए अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म एलओसी कारगिल।

0: पुकारे सिपाही।
1: जेपी दत्ता ने एक के बाद एक कई ऐसी फिल्में बनाई जिनकी पृष्ठभूमि युद्ध है। साल 2018 में उन्होंने बनाई फिल्म पलटन। ये 1962 के हमले के बाद सन 1967 में हुई नाथूला और चूला की लड़ाइयों पर आधारित फिल्म थी। साल 2004 निर्देशक फरहान अख्तर ने बनाई फिल्म लक्ष्य। ये फिल्म कारगिल की लड़ाई के परिदृश्य पर आधारित थी और इस फिल्म में संगीत था शंकर एहसान और लॉय का। जावेद अख्तर का लिखा ये गीत हमारी शिराओं में जोश भर देता है।

साल 2007 में अमृत सागर ने युद्धबंदी फौजियों की कहानी पर बनाई अपनी फिल्म 1971। इस फिल्म के हीरो थे मनोज बाजपेयी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है।

साल 2004 में युद्धबंदियों के परिदृश्य पर ही मिलन लुथरिया लेकर आए अपनी फिल्म दीवार। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन।

साल 2004 में निर्देशक अनिल शर्मा ने बनाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मुख्य कलाकार थे अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और बॉबी देओल।

साल 2005 में आई फिल्म टेंगो चार्ली। ये फिल्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के संघर्ष पर आधारित है जो उत्तर पूर्वी भारत में चल रही आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ लड़ाई छेड़ देती है। इस फिल्म के मुख्य सितारे थे अजय देवगन, बॉबी देओल, संजय दत्त और सुनील शेट्टी वगैरह।

साल 2019 में आदित्य धर ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी फिल्म बनाई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। मुख्य सितारे थे विकी कौशल और यामी गौतम।

साल 2021 में निर्देशक विष्णु वर्धन लेकर आए कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन और उनके संघर्ष की कहानी शेरशाह। इस फिल्म के मुख्य सितारे थे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी। साल 2020 में भारत की पहली महिला फौजी पायलट के जीवन पर शरण शर्मा ने एक फिल्म बनाई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। इस फिल्म में गुंजन सक्सेना की भूमिका निभाई थी जानवी कपूर ने। साल 2021 में एक फिल्म आई भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। सन 1971 के युद्ध में भुज में इंडियन एयरफोर्स की एयरस्ट्रिप को 72 घंटों में 300 स्थानीय महिलाओं के जरिए तैयार करने के करिश्मे पर आधारित थी ये फिल्म।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज उन फिल्मों की बातें हमने की जिनमें हीरो को फौजी दिखाया गया है या ऐसा कथानक है जिसका ताल्लुक भारत की सीमाओं और उसकी रक्षा से है, युद्ध से है। ऐसी फिल्मों का सिलसिला बहुत लंबा है और आज के इस कार्यक्रम में हमने मुख्य फिल्मों का जिक्र किया और उनके गाने आपको सुनवाए।

0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है राज्य के पलामू जिला में सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संकलन सैकत चट्टोपाध्याय का, संयोजन प्रशांत गौरव का।
1: नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आज की हमारी सायंकालीन सभा में। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आप सभी का रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट सैकत चैटर्जी। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे पलामू में धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। मुख्य झंडोत्तोलन समारोह पुलिस लाइन स्टेडियम में किया गया, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के माननीय वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर मौजूद थे। उनके साथ जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, कमिश्नर सहित तमाम वरीय पदाधिकारी और अन्य आम जनता भी मौजूद थे। इस अवसर पर मेयर भी मौजूद थी, अन्य कई राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले लोग और उस दलों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। हम आपसे बात करेंगे, बताएंगे सारी बातों को, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की ये संदेश।
2: समस्त पलामू जिला वासियों को स्वतंत्रता दिवस 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आज इस पावन अवसर पर सभी पलामू जिला वासियों से ये अपील

करता हूं कि देश के भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए अपना योगदान जिला प्रशासन को दे। जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि एक विकसित भारत का सपना जो हर एक पलामू वासी देख रहा है उसको हम लोग साकार करें। जय हिंद।

0: सुरक्षा बल के कर्मी हैं, वो गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए भी प्रस्तुत है।
1: साधन सलाम बगल
0: और श्रोताओं, सिर्फ सरकारी महकमे में ही नहीं बल्कि स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में भी झंडोत्तोलन का काम पूरे जोशों खरोस के साथ हो रहा है। और अभी अभी शहर थाना के नज़दीक बंगाली समिति के कार्यालय में भी झंडोत्तोलन किया जा रहा है। इस अवसर पर बंगाली समिति के वरीय सदस्य श्री दिव्येंदु गुप्ता हमारे साथ है, आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं।
2: बंगाली समिति के तरफ से तमाम शहरवासियों को, तमाम देशवासियों को 70वें स्वाधीनता दिवस पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद सबको।
0: श्रोताओं, सिर्फ यही नहीं कि सामाजिक संगठनों में या प्रशासनिक महकमे में आज का ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है, बल्कि हम यहाँ चमुहान पे खड़े हैं और आसपास काफ़ी संख्या में बच्चे खास करके काफ़ी उत्साहित है और जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उस पर भी झंडे तिरंगा बंधा हुआ है। और अभी हमारे साथ मौजूद है टेम्पू चालक भाई रमेश तिवारी, जो रेड़मा के रहने वाले हैं, काफ़ी युवा हैं और अपने टेम्पू को काफ़ी खूबसूरत ढंग से सजाया है इन्होंने तिरंगा से, आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। रमेश भाई, क्या कहना चाहेंगे आप?
3: आज बहुत खुशी की बात है, आज हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और हमको भी बहुत खुशी है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आपके FM के माध्यम से कुछ बोल सक रहे हैं। आज बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था आज ही के दिन, और मेरा तो पेशा है टेम्पू चलाना, तो ज़्यादा हम कहीं किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाएंगे या चाहे कहीं नहीं देख पाएंगे, कहे कि अगर कहीं भी हम जाएंगे तो हमारा परिवार का खाएगा, इसलिए हमको टेम्पू चलाना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हम अपना टेम्पू में आज तिरंगा झंडा लगा के जो है सो कि टेम्पू चला रहे हैं और इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और आज हम अपने तरफ से सभी अपने टेम्पू चालक भाइयों को और पूरे डाल्टनगंज में जितना भी लोग हैं सबको स्वतंत्रता दिवस के बधाई देना चाहेंगे।
0: आकाशवाणी की ओर से आपको भी बहुत बहुत बधाई। आइए श्रोताओं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और किस तरह से यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। श्रोताओं, अभी हम लोग मौजूद हैं अंबेडकर पार्क में और यहां अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा के द्वारा झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया गया है। आइए हम मिलते हैं उनके पदाधिकारियों से और जानते हैं उनके विचार।
4: स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है, वीर सपूतों का बलिदान का परिणाम है, जो भी इस देश में वीर सपूत हुए उनके जो बलिदान था उसका आज हमें परिणाम ये तिरंगा है।
0: श्रोताओं, यही नहीं कि सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोग झंडोत्तोलन कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, बल्कि कई संस्थाएं शहर में ऐसी भी है जो इस पावन मौके पर पुनित कार्य करके समाज को एक सशक्त संदेश देना चाहते हैं और वो संदेश है रक्तदान का। जी हां, अभी हम मौजूद हैं गणपति धर्मशाला में और यहां पर मरवाड़ी युवा मंच के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बताते चले श्रोताओं कि ये हर वर्ष ऐसा

0: आयोजन करते हैं और इसके बारे में बताने के लिए मारवाड़ युवा मंच जो समाज के लिए काम करते हैं उसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंच के वरीय सदस्य श्री अनिल गर्ग जी। आइए हम लोग उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि मारवाड़ युवा मंच की तरफ से आज क्या क्या किया गया।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन का प्रोग्राम हुआ और उसमें मारवाड़ी युवा मंच के सभी महिलाएं बच्चे सभी सदस्य उपस्थित थे। और अभी 11 बजे से हम लोगों का ब्लड कैंप का प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम चल रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। लगता है कि कम से कम इसमें 30-35 जन का ब्लड डोनेशन होगा।
0: श्रोताओं, अभी हम मौजूद हैं मासूम आर्ट ग्रुप के कार्यालय में और यहाँ पर अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इनके कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद कोषाध्यक्ष श्रीमती मुनमुन चक्रवर्ती, आइए हम उनसे मिलकर जानते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। मुनमुन जी,
2: मासूम आर्ट ग्रुप की ओर से पलामू जिला के निवासियों की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा रंग कर्मियों की ओर से जिले के सभी कलाकारों को सीमा पर तैतान हमारे फौजी भाइयों को भी विशेष बधाई देती हूँ।
0: धन्यवाद। और श्रोताओं, इस तरह से जिले भर में तमाम सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में आज झंडोत्तोलन किया गया। उनके पदाधिकारियों ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों में खास करके विशेष उत्साह देखा गया और सड़कों पर उनकी आवाजाही काफी रही। यहाँ तक कि छोटी छोटी वाहनों में भी आज तिरंगे शान से लहराते पाए गए और तमाम जिले में जो भी संगठन है, राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन भी है, उनके कार्यालयों में भी उनके पदाधिकारियों द्वारा झंडोत्तोलन किया गया।
3: आइए दोस्तों, अब चलते हैं मुख्य झंडोत्तोलन समारोह यानी कि पुलिस लाइन स्टेडियम में। यहां पर काफी रंगारंग माहौल है, काफी खुशनुमा माहौल है और काफी संख्या में आम जनता यहां अपने बच्चों के साथ मौजूद है। महिलाओं की भी भारी तादाद है जो झंडोत्तोलन समारोह को देखने के लिए आए हैं। और जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं कि यहां मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के माननीय वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर मौजूद हैं। उनके साथ जिले के तमाम वरीय पदाधिकारीगण, जिले के आयुक्त, उपायुक्त, आरक्षी अधीक्षक, आरक्षी उप महानिरीक्षक सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद हैं। और अभी अभी मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है। वो एक खूबसूरत उजले रथ पर सवार हैं और परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस पूरे समारोह स्थल की जो कमेंट्री की जा रही है उसको लाइव सुनते हैं हम।
4: जैसा कि हम सुन रहे हैं, बीसीसी मिशन बालिका मुक्ति विद्यालय बेजू नगर बैंड पार्टी की तैयार और नेतृत्व करता संजय कुमार त्रिपाठी और धीरे धीरे ये निरीक्षण हमारे मुख्य अतिथि को साथ में लेकर प्लाटो निरीक्षण के लिए जाते हुआ और सबसे पहले धीरे धीरे निरीक्षण वाहन प्लाटून नंबर 1 की प्लाटून नंबर 1 जिला सशस्त्र बल जिनके प्लाटून कमांडर है पुलिस भवन निरीक्षक सुमोल कुमार हमारे मुख्य अतिथि निरीक्षण करते हुए प्लाटून। इसके साथ ही धीरे धीरे निरीक्षण वाहन प्लाटून नंबर 2 की ओर जिला सशस्त्र बल जिनके प्लाटून कमांडर है पुलिस भवन निरीक्षक राहुल कुमार प्लाटून नंबर 3 जिला सशस्त्र बल जिनके प्लाटून कमांडर है महिला पुलिस भवन निरीक्षक पार्वती कुमारी प्लाटून नंबर 4 गृह रक्षा वाहिनी जिनके प्लाटून कमांडर है कंपनी कमांडर मोहम्मद जावेद इकबाल अंसारी और प्लाटून नंबर 5 झारखंड सहायक पुलिस जिनके प्लाटून कमांडर है पुलिस भवन निरीक्षक पुलिस प्लाटून नंबर 6 ब्राह्मण उच्च विद्यालय एनसीसी मेदी नगर चलामू जिनके प्लाटून कमांडर है भास्कर अग्रवाल प्लाटून नंबर 7 गिरवर उच्च विद्यालय एनसीसी मेदी नगर चलामू प्लाटून कमांडर कमरा खान प्लाटून नंबर 8 बीसीसी मिशन बालिका उच्च विद्यालय निरीक्षण के साथ हमारे मुख्य अतिथि उच्च विद्यालय पलामू जिनकी प्लाटून कमांडर है अंजनी कुमारी प्लाटून नंबर 9 की ओर अग्रसर निरीक्षण वाहन संजीवियन एकेडमी स्कूल दानालोटा मेदिनी नगर पलामू साक्षी कुमारी प्लाटून कमांडर प्लाटून नंबर 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सदन मेहंदी नगर पलामू।

दोस्तों, इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में खास बात यह रही कि पहली बार राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम गाया गया और कार्यक्रम समापन के पश्चात भी फिर से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। तो आइए सुनते हैं इस खास मौके पे पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में कैसे ये दोनों गीत गाए गए और किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया।

0: इसी के साथ दोस्तों, सलामी होने के बाद, झंडोत्तोलन के बाद मुख्य अतिथि माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार राधा कृष्ण किशोर ने समारोह को संबोधित किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: पावन अवसर पर मैं अपनी ओर से और झारखंड सरकार की ओर से

हार्दिक मुबारकबाद पेश करते हैं। मुझे इस बात का गर्व होता है कि पलामू वासियों के आशीर्वाद और स्नेह के कारण मुझे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का ये तीसरा अवसर प्राप्त हुआ है। मैं मंच पर बैठे हुए पलामू जिले के उपायुक्त, पलामू जिले के डीआईजी, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के सम्मानित नेता और कार्यकर्तागण इस अवसर पर यहां उपस्थित, जिले के आदरणीय अभिभावकगण और स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर परेड निरीक्षण में भाग ले रहे हमारे पुलिस के जवान, हमारे स्कूल की छात्राएं, आप सबों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी यह कोशिश होगी कि हम स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर पलामू के सर्वांगीण विकास का संकल्प लें। मैं बहुत ही संक्षेप में ये बताना चाहूंगा कि देश की आजादी के बाद हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह 1947 के उस ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक है जब हमारा देश अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ। हमारी स्वतंत्रता अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के अंत और राष्ट्र के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक। याद रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली। पूज्य महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अशफाकउल्लाह खां, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बानो बेगम जैसे अन्य कई महान सेनानियों के त्याग और बलिदान से हमें ये आजादी प्राप्त हुई। आज स्वतंत्रता दिवस के 80वें वर्ष पर हम सभी अपने महान सेनानियों के श्री चरणों में आदर सम्मान के साथ नमन अर्पित करते हैं। इस पवित्र आजादी को बचाकर रखना सभी देशवासियों की जिम्मेवारी है। क्या आप जानते हैं, देश की आजादी के लिए महान स्वतंत्रता सेनानियों के मन में क्या भावनाएं थी? उन सभी के मन में यह दो पंक्तियां हिलोरे मार रही थी, ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, अरे तूफान भी थम जाएगा जब आजादी का लक्ष्य होगा सीने में। झारखंड क्षेत्र की बलिदानियों ने भी आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई। अपनी संस्कृति, अधिकारों व स्वतंत्रता में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करने वाले जनजातियों ने अंग्रेजी शासन में एक के बाद एक विद्रोह करते गए। तमार विद्रोह, केरो विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमि विद्रोह, संथाल विद्रोह व बिरसा मुंडा के गुलाम सहित अनेक विद्रोहों की घड़ी से अंग्रेजी शासन की चूले हिल गई थी। कोल विद्रोह के प्रणेता बुद्धू भगत सिंह राय व दुर्गा मुंडा एवं भूमि विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण के प्रति श्रद्धा सुमन हम आज अर्पित करते हैं। संथाल विद्रोह के नेतृत्व देने वाले भोगना जी के मांझी के चार योद्धा पुत्र सिद्धो, कानू, चांद और भैरव अंग्रेजों के लिए साक्षात्कार बन गए थे। उनके युद्ध उद्घोष के नारे, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेजों को

महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पलामू जिला वीरों और बलिदानियों की भूमि है। आजादी के इस अवसर पर पलामू के वीर क्रांतिकारी अमर शहीद नीलांबर पीतांबर को हम हृदय से नमन करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। यदुवंत सहाय, गणेश प्रसाद वर्मा, अमिया कुमार घोष उर्फ गोपा बाबू, कीतूराम पूरनचंद, यदुनंदन तिवारी, लक्ष्मी प्रसाद, गौरी शंकर गुप्ता, तीरथ प्रकाश, वेद प्रकाश, भसीन जैसे महान आजादी की लड़ाई की ज्योति को मध्य नहीं पड़ने दिया। हम इनका भी कोटि कोटि नमन करते हैं। आदरणीय पलामू वासियों, पलामू पिछले 500 वर्षों में कितने संघर्ष के रास्ते को झेला है शायद कम ही जानकारी हम सबों को होगी। मुगल काल में लुटेरों ने पलामू को रौंदा, फिर अंग्रेजों ने। अब तक हम अपने पलामू को पलास, लाह और महुआ वाले क्षेत्र के रूप में जानते रहे हैं, पर मैंने पलामू के शाब्दिक अर्थ को बदला है। प अक्षर से प्यार, ल से लक्ष्य और म से महान। पलामू में प्यार भी है, यहाँ के लोगों के पास लक्ष्य भी है, और तभी हमारा पलामू सबसे महान है। पलामू इसलिए महान है कि यहाँ हर जाति और धर्म के लोग प्रेम और मोहब्बत के साथ रहते। मैं इस अवसर पर एक राजनीतिक व्यक्ति और 45 वर्षों के संसदीय अनुभव रखने के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सत्ता तक लोगों का दिल जीत करके पहुंचे। धर्म और जाति में लोगों को बांट कर सत्ता पाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये बात उदय शंकर सिंह जी की चार पंक्तियों से भी स्पष्ट हो जाती है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो मिलेगी, जो मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती, जो मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती। महासागर बनाने में एहसान सबका है। पलामू की इसी महानता को मैं चार पंक्तियों में पिरोना चाहता। अब तो एक ऐसा वरक मेरा तेरा ईमान हो, अब तो एक ऐसा वरक मेरा तेरा ईमान हो, एक तरफ गीता हो दूसरी तरफ कुरान हो, काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, मेरे घर में उपवास हो जब तेरे घर में रमजान। आदरणीय पलामू वासियों, पलामू के वन तपदाओं, अरंगा अमानत और कोयल की धाराओं को रौंद कर अंग्रेजों ने पलामू का शोषण किया। यहाँ के जंगलों में कीमती जड़ी बूटी, लाह कत्था और केंदू पत्ता जैसे वन संपदा और वन प्राणियों से भरा पड़ा है। हमें गर्व है कि प्रकृति ने पलामू को अनुपम उपहार प्रदान किया है। नदियां, झरने, नेत्रहाट, बेतला, सुखलदरी एवं सरोवर पहाड़ इसके प्रमाण है। आजादी का उद्देश्य केवल राजनीतिक रूप से अंग्रेजों या विदेशी शासन से मुक्त होना नहीं था, बल्कि एक न्याय संगत, समतावादी और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करना था। इस लिहाज से राजनीतिक स्वतंत्रता का लक्ष्य तो पूरा हो गया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता के कई उद्देश्य अभी भी पूरे होने बाकी है। हमें अपने आप में चिंतन करने की जरूरत है। क्या आजादी के 80वें वर्ष में सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सके हैं? ये दिमाग का और समीक्षा की आवश्यकता है। वैसे तो आजादी के बाद से पलामू परमंडल के कई माननीय बिहार और झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सभी लोगों ने अपने समय और काल में बेहतर ही प्रदर्शन किया है। मैं किसी से तुलना नहीं करना चाहता, परंतु मैं अपने दायित्व को भली भांति समझता हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन लगभग 5 दशक का हो चुका है। इस बीच मेरे जीवन में कई बड़े दायित्व और पदों को संभालने का अवसर मिला है। वर्तमान समय में मैं जिस पद और जिन दायित्वों का निर्वाह कर रहा हूँ वह उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे जो कुछ भी मिला है उसमें पलामू की सौंध की मिट्टी और यहाँ के हवा पानी का प्रभाव रहा है, जिसने मुझे न तो कभी टूटने दिया न ही कभी मुझे झुकने दिया। इस मिट्टी का ऐसा प्रभाव है कि सत्ता में आने पर मैं कभी न तो अहंकार से ग्रसित हुआ और न राज सत्ता से अलग होने पर कभी दुखित हुआ। उसका

0: एक ही मूल कारण है, जनता का प्यार मुझे सदैव मिला है। इससे बड़ा कोई दूसरा इनाम, इससे दूसरा कोई बड़ा पद हो ही नहीं सकता है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है उस कर्ज को चुकाना। यदि थोड़ा भी मैं पलाहू से मिले स्नेह और प्यार का कर्ज चुका सका तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी सफलता होगी। आदरणीय पलाहू वासियों, 50 वर्षों के राजनीतिक जीवन में पलाहू के गरीबों गरीबी को मैंने बहुत करीब से देखा है। नन्हे मुन्ने बच्चों के आंखों में आंसू और जंगल से लकड़ियां चुनकर बाजार में बेचकर दो वक्त के भोजन का जुगाड़ करने वाले परिवारों को भी बहुत करीब से देखा है। इसलिए पलामू के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना श्री हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता है। मैं भी अपने इस दायित्व बोध से वाकिफ हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ पलामू जिले के लोगों को प्रति व्यक्ति आय औसतन 60,000 रुपया से प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। यहाँ के लोगों की क्रय शक्ति बहुत ही कमजोर है। जिले की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, अब वो आवास योजना, पीएम जनमन योजना, कृषि और संबद्ध कृषि के क्षेत्र में पशुपालन, गव्य और मत्स्य पालन आदि प्रक्षेत्रों में श्री हेमंत सोरेन सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। समाज कल्याण की यदि बात करूं तो सावित्री बाई फूले की दोहरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, विधवा पुनर्विवाह योजना, दिव्यांगजनों के लिए विशेष यंत्र, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है।
1: और इसी के साथ आप सैकत को भी दीजिए इस कार्यक्रम से विदा। अगले बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां।

आप सुन रहे थे राज्य के पलामू जिला में सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट, संकलनता शेखर चट्टोपाध्याय का संयोजन प्रशांत गौरव। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। श्रोताओं आ जाइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ देशभक्ति फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों इस फिल्म के गीत से। आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक, सोनू निगम और कैलाश खेर। गीत के बोल समीर के, संगीत दिया है अन्नू मल्लिक ने।

अब आइए सुनते हैं शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में समीर की रचना, आवाज़ी उदित नारायण, शंकर महादेवन, महालक्ष्मी अय्यर और डोमिनिक की है।

गरिमा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज़ों में। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये देशभक्ति।

लता मंगेशकर के गए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक

पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कई प्रभावित इलाकों में अब भी लोगों के इमारतों के भीतर फंसे होने की आशंका है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र और उत्तराखंड में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

53 मिनट पर पहली सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद। जय हिंद।